मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। आज रविवार है, शक संवत 1948 की वैशाख मास की 27वीं तिथि, तदनुसार 17 मई 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:56 और 53 सेकंड्स हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार जिन्हें हम रिले कर रहे हैं अपने दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच

0: मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे। इसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। दोनों प्रधानमंत्री के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन भी यूरोपीय उद्योग जगत के गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करेंगी। यह यूरोपीय उद्योगपतियों का एक प्रमुख मंच है। इस वर्ष जनवरी में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यूरोप की यह पहली यात्रा है। यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करना और तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों का समाधान तलाशना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
1: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
2: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
0: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
3: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा। उन्होंने कहा कि दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान भी करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कर रही है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस 4 विकेट पर 218 रन ही बना सकी। सुनील नरेन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वहीं दिल्ली में शाम 7:30 बजे डेल्ही कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेटो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में मलेशिया के गो सी फेई और नूरिजुद्दीन को हराया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर।

प्रातःकालीन ईश वंदन मन में असीम उत्साह, उमंग और ऊर्जा का संचार कर देता है। इसीलिए सभी को प्रभु का नाम स्मरण करना चाहिए, जप करना चाहिए। भक्ति करें तो कल्याण अवश्य होगा। मन के अंधियारे मिट जाते हैं और जीवन में नव विहान का आगमन

आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। भक्ति और श्रद्धा के इस पावन वातावरण में आइए हम डूब जाते हैं और मर्यादा, करुणा, सत्य और धर्म के प्रतीक प्रभु श्री राम का स्मरण करते हैं, जिनके नाम मात्र से मन को शांति और जीवन को नई दिशा मिलती है, ऐसा माना जाता है। सुनते हैं प्रभु श्री राम की महिमा का गुणगान करता ये मधुर भजन।

भक्ति केवल पूजा या आराधना नहीं होती है श्रोताओं, बल्कि आत्मा को आत्मा से जोड़ने का एक सुंदर माध्यम है। भक्ति मन को शांति देती है।

जब एक व्यक्ति, एक भक्त मन से प्रभु का स्मरण करता है तो उसके भीतर धैर्य, सहनशीलता और विश्वास बढ़ने लगता है। भक्ति हमें कठिन परिस्थितियों में भी टूटने नहीं देती है, बल्कि साहस के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।

और श्रोताओं, भक्ति की बात करें तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि ये मन के विकारों, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और भय को कम कर देती है। प्रभु के नाम का जप करना, मन को एकाग्र करना आत्मिक आनंद प्रदान करता है। मीरा की भक्ति ने उन्हें अमर बना दिया। हनुमान जी की भक्ति ने उन्हें अतुल शक्ति और सम्मान दिया। सच्ची श्रद्धा से की गई भक्ति जीवन को सरल, सुंदर और आकर्षक होने के साथ साथ सार्थक बना देती है। कहा भी गया है कि भक्ति में बड़ी शक्ति होती है जो असंभव को भी संभव बना देती है। और इन्हीं विचारों के साथ अब देते हैं आज के कार्यक्रम, भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना को विराम।

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरव ग्रंथों से। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं साम वेद से कुछ छंद।
1: भारतीय आर्य यज्ञ में जिन प्रिय वचनों को मधुर स्वर में गा गा कर दैवी शक्ति को संतुष्ट व प्रसन्न करते थे, वे सब सामवेद में संग्रहित हैं। इस वेद के मंत्रों के गायन में सात स्वरों का प्रयोग किया जाता रहा है। कहते हैं कि इसी वेद से गांधर्व वेद का उद्भव हुआ, जिससे हमें संगीत शास्त्र की विभिन्न राग रागनियों का परिचय प्राप्त होता है। लीजिए, प्रस्तुत है इस वेद के गीतात्मक कुछ मंत्र।
2: अगस्त्य

गौरव ग्रंथों से इसमें अभी आप सुन रहे थे सामवेद से कुछ छंद। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई आज सुने डॉक्टर अमित कुमार मौर्य से राकेश कुमार मौर्य की बातचीत। बातचीत का विषय है स्टीविया की खेती कैसे करें।
1: किसान भाई खेती किसानी में लगा बाटे ना उन आज जो

0: उन बातचीत के विषय बा उ स्टीविया के बारे में है को जानकारी दे खातिर आज कार्यक्रम आए बाटन डॉक्टर अमित कुमार मौर्य जी जौन की इस सब के जानकार बाटन। डॉक्टर अमित कुमार मौर्य जी आप बताएं हमारे किसान भाई की स्टीविया जौन हो तो ओकर अगर खेती करे चाहते हैं किसान भाई तो वैज्ञानिक विधि के हिसाब से कैसे करें बताएं आप।
1: स्टीविया एक औषधीय पौधा है
0: जी,
1: मीठी तुलसी कहा जाता है।
0: अच्छा, मीठी तुलसी।
1: मीठी तुलसी होता है, विकल्प बनता जा रहा है चीनी का। और इतना ही नहीं, जैसे उच्च रक्तचाप है, निम्न रक्तचाप है, इसको बैलेंस करता है, हमारे हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर को, और इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी वायरल और इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टी होने के कारण।
0: अच्छा,
1: इसमें क्या है कि दांतों और मसूड़ों के लिए बहुत फायदेमंद है।
0: ये तो बहुत नीक बात बात है,
1: तो इनके लिए भी है। इतना ही नहीं, औषधीय गुण तो है ही है इसमें, लेकिन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसका व्यावसायिक व्यापार भी बहुत अच्छे से फल फूल रहा है। और
0: अच्छा,
1: ये बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है,
0: यानी अगर किसान भाई अगर खेती कर रही तो फायदा ज्यादा हो सकता
1: जी।
0: तब करे बारे में बताओ भैया कि अगर खेती करे चाहते हैं तो कैसे करे, का का तरीका अपनाओ बताओ आप।
1: ये अपने भारत देश में पूर्णतया तो मूलतया चीन, जापान, कोरिया में पाया जाता है, लेकिन अपने भारत में अभी इसकी खेती पंजाब, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश किया जा रहा है प्रमुखता से।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: और इसके लिए जो जलवायु है, इसके लिए समशीतोष्ण जलवायु की जरूरत होती है।
0: अच्छा,
1: या यूं कहें अर्ध उष्ण जलवायु की जरूरत होती है। 5 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है इसके लिए उपयुक्त माना जाता है।
0: अच्छा अच्छा।
1: और इसकी खेती के लिए समुचित जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। और इसकी जो सबसे खास बात है, जिस तरह हम मिंट, पेपरमिंट को लगाते हैं,
0: हाँ हाँ,
1: बंड या मेढ़ों पे ही इसको हमें रोपाई करनी है,
0: मतलब डोड़ो ही बना,
1: डोड़ो ही बना के। काहे वे
0: कि
1: अगर मेढ़ पे नहीं लगाएंगे तो बरसात के पानी हो या जल सिंचाई का पानी हो, इससे जल भराव होने से इसकी जड़ें गल सकती हैं और किसान भाइयों को नुकसान हो सकता है।
0: तो भैया ये का पेड़ लगावा जाता है, बेहन डाला जाता है, कैसे बिया से हो था कुछ बतावे करे।
1: एक जड़ होते है, जड़ का नर्सरी में तैयार करते हैं,
0: दूसरा जड़ कहूं से ले आओ एक बार।
1: जी जी, जैसे अच्छा, पुदीना है और मिंट है, वैसे ही इसकी जड़ें होती हैं। और आजकल टिश्यू कल्चर का टाइम चल रहा है,
0: जी जी,
1: तो
0: जी,
1: किसान भाई ऐसे जगह से ले आए जहां टिश्यू कल्चर से इसको उत्पन्न किया जा रहा हो।
0: अच्छा अच्छा।
1: और अब तक की, और इसके लिए अच्छी भुरभुरी मिट्टी बनाना है खेत को अच्छे से, और उसका पीएच जो है 6 से 7 के बीच में होना जरूरी है।
0: तो खेत की तैयारी के बारे में कुछ बताएं
1: जी। पहले किस्मों के बारे में बता देते हैं।
0: हाँ, हाँ,
1: इसकी करीब 90 प्रजातियां हैं जो खोजी
0: अच्छा,
1: जा चुकी हैं।
0: अच्छा,
1: लेकिन उनमें से 3 प्रजातियां हैं मुख्य जिसे प्रमुखता से उपयोग में लाया जाता है।
0: अपने यहाँ कौन से प्रजाति ज्यादा चलन में बांटी?
1: यहाँ पे जो है SRB 128 जो सबसे अच्छी पाई जाती है, इसमें ग्लूकोसाइड्स की मात्रा 12% होती है।
0: अच्छा,
1: जो इसका
0: अच्छा।
1: कहा जाए कि जो रासायनिक तत्व पाया जाता है जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, सबसे ज्यादा पाया जाता है। और ये साल भर में 5 कटाई की जाती है इसकी।
0: अच्छा, कटाई भी की जाती है भैया?
1: जी।
0: अब पाती वही काटी जाती है?
1: जी जी।
0: अच्छा,
1: अब खेत की तैयारी के बारे में, ये 5 वर्षीय पौधा है, एक बार लगाइए 5 सालों तक इसमें आप उसका उत्पादन लेते रहे।
0: यानी काटत जाते हैं, फिर वो हमें निकलता हुआ
1: निकलता हुआ जाते।
0: अच्छा,
1: तो
0: अच्छा।
1: पहली बार एक बार क्या करेंगे कि जब खेत की तैयारी कर रहे होते हैं उसी समय अच्छी गहरी जुताई और प्लस जुताई के साथ साथ 3 टन केचुआ के खाद,
0: वर्मी कंपोस्ट,
1: 6 टन कंपोस्ट खाद, उसके साथ ही साथ 120 किलोग्राम पाम जैविक खाद आता है।
0: अच्छा,
1: इनको अच्छे से मिला लेना चाहिए। लेकिन किसान भाई एक चीज और ध्यान रखें कि अगर उनमें खेत में दीमक का प्रकोप ज्यादा है,
0: अच्छा,
1: तो दीमक के लिए बचने के लिए 150 से 2 किलोग्राम खली को पीस करके मिला देने से, नीम की खली।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो उससे क्या है कि दीमक से बच सकते हैं,
0: यानी दीमक ना लगे,
1: दीमक ना लगे। अच्छे से तैयारी करने के बाद जो मेढ़ बनाए, करीब 1 से 1.5 फीट ऊंचा मेढ़ बंडा जो बनाए, और उसकी जो चौड़ाई हो करीब 2 फीट हो।
0: अच्छा, मेढ़ के,
1: मेढ़ की
0: जोने पे लगावे
1: की जोने से दोनों साइड में
0: फैले, भाई
1: हाँ फैल नहीं, दोनों तरफ पौधा लगाना है।
0: अच्छा।
1: जिससे वो अच्छे से फैल सके।
0: हुँ।
1: अब आता है इसमें रोपाई की बात। तो जैसा कि हमने बताया है कि बंडों पे, मेढ़ों पे इसकी रोपाई करनी है, तो इससे पौध से पौध की दूरी 6 से 9 सेंटीमीटर, कतार से कतार की दूरी 40 सेंटीमीटर रखना।
0: अच्छा अच्छा।
1: करीब 1 एकड़ में 30 से 40 हजार पौधे लगाए जाते हैं।
0: अच्छा,
1: किसान भाई ये चीज ध्यान रखें, जब बहुत गर्मी होती है, अप्रैल

0: और मई का महीना, तब इसकी रोपाई नहीं करते, या जब बहुत सर्दी होती है दिसंबर और जनवरी का महीना, उसको छोड़ करके बाकी पूरे वर्ष इसका रोपाई की जा
1: यानी
0: सकती।
1: बहुत गर्मी बहुत ठंडी छोड़ के बाकी बीच में
0: कभी लगाएं, जैसे सितंबर से नवंबर का महीना तथा फरवरी से अप्रैल का महीना सबसे अच्छा माना जाता है।
1: अच्छा
0: और इसमें अब सिंचाई की बात आती है, तो सिंचाई पूरे वर्ष भर की जाती है फसल को। और ध्यान रखना चाहिए कि इसमें जो प्रचलित है, हालांकि स्प्रिंकलर से पुराने जमाने से लेकर के अभी जब से प्रचलन में आया
1: हाँ
0: किया जाता है, लेकिन ड्रिप इरिगेशन बहुत अच्छा होता है। अगर ड्रिप
1: अच्छा
0: इरिगेशन करें तो
1: टपक विधि जो
0: हाँ,
1: होता।
0: टपक सिंचाई से।
1: अच्छा अच्छा
0: और साथ ही साथ निराई गुड़ाई जहाँ तक की बात है, इसमें
1: हाँ
0: किसी भी प्रकार का मशीनरी नहीं यूज करना है।
1: अच्छा
0: साधारण विधि से खरपतवार नियंत्रण करना है हाथों से, और उसके बाद में किसी भी प्रकार का रासायनिक उपयोग नहीं करना है। अब
1: अच्छा
0: खाद
1: अच्छा
0: और उर्वरक की बात है, तो इसमें जो खाद शुरुआत में डाली जाती है उतनी डाली जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे कि जितनी बार कटाई करेंगे हर फसल के बाद,
1: कितना दिन बाद कटाई करे पड़त हो
0: जो पहली कटाई है

0: सिंचाई पूरे वर्ष भर की जाती है फसल को। और ध्यान रखना चाहिए कि इसमें जो प्रचलित है, हालांकि स्प्रिंकलर से पुराने जमाने से लेकर के अभी जब से प्रचलन में आया किया जाता है, लेकिन ड्रिप इरिगेशन बहुत अच्छा होता है। अगर ड्रिप इरिगेशन के
1: टपक विधि जो
0: टपक सिंचाई से
1: अच्छा।
0: और साथ ही साथ निराई गुड़ाई जहां तक की बात है, इसमें किसी भी प्रकार का मशीनरी नहीं यूज करना है।
1: अच्छा,
0: साधारण विधि से खरपतवार नियंत्रण करना है हाथों से, और उसके बाद में किसी भी प्रकार का रासायनिक उपयोग नहीं करना है।
1: अच्छा,
0: अब खाद
1: अच्छा।
0: और उर्वरक की बात है, तो इसमें जो खाद शुरुआत में डाली जाती है उतनी डाली जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे कि जितनी बार कटाई करेंगे हर फसल के बाद,
1: कितना दिन बाद कटाई करे पड़ता
0: है, जो पहली कटाई है रोपाई के 4 महीने बाद की जाती है।
1: अच्छा,
0: लेकिन
1: अच्छा।
0: सबसे जो खास बात है वो यहीं पर है कि 4 महीने बाद कटाई होती है, लेकिन वो भी फूल आने से पहले करना है।
1: अच्छा,
0: अगर फूल आ गया तो हमारा जो गुणवत्ता है पत्तियों का वो कम हो जाएगा, और जो हमारा मार्केट वैल्यू है वो भी कम हो जाएगा,
1: मिठास कम हो जाएगी,
0: मिठास कम हो जाएगी, बिकने में अच्छा पैसा नहीं
1: तो
0: मिलेगा।
1: पाती बिक जाता है, कुछ बनावट
0: नहीं,
1: पड़ता है।
0: पाती ही बिकता है, किसान भाई डायरेक्ट पाती बेचते हैं।
1: अच्छा अच्छा
0: और एक साल में करीब 5 कटाई की जाती है, प्रथम कटाई 4 महीने के उपरांत
1: जी,
0: और प्रथम कटाई के बाद 500 किलोग्राम केचुआ का खाद, 30-30 किलोग्राम पाम जैविक और कंपोस्ट खाद दोनों को मिलाना होता है,
1: अच्छा,
0: जिससे
1: अच्छा।
0: कि उसकी जो शक्ति है उर्वरा शक्ति बनी रहे और अच्छा हमारा क्रॉप मिले।
1: अच्छा अच्छा कौनो रोग व्याधि भी लागत भैया?
0: नहीं, इसमें रोग व्याधि बहुत कम आती हैं। अगर हम ध्यान देते हैं तो इसमें रोग व्याधि की जरूरत बहुत ही कम आने की चांसेज होते हैं।
1: अच्छा अच्छा और भैया कौन बात पे विशेष ध्यान?
0: अब विशेष ध्यान ये है कि पत्तियों को तोड़िए, तोड़ करके 3 से 4 दिन तक छाए में सुखाना है।
1: अच्छा,
0: जब पूर्णतया इसका नमी रहित हो जाए तो बोरों में भर के बिक्री के लिए ले जा सकते हैं।
1: अच्छा,
0: लेकिन
1: अच्छा।
0: दूसरा इसमें एक और भी है कि जो किसान भाई बहुत जागरूक हैं, जिनके पास संसाधन हैं, तो इसका पाउडर बना करके,
1: अच्छा अच्छा
0: पाउडर के रूप में, दूसरा है इसका एक्सट्रैक्ट बना करके, मतलब इसको उसका वो निकाल करके,
1: मैंने उसमें जो
0: रस निकाल के,
1: रस अलग निकाल के, रस अलग निकाल,
0: रस निकाल के
1: मशीन हो जाए,
0: मशीन हो चाहिए। और ज्यादातर जो सबसे ज्यादा किसान भाई हमारे सूखी पत्ती ही बेचते हैं।
1: हाँ, आसान रहा था
0: वो, आसान है। और उपज तक की, जो उपज की बात है, ये जैसा कि हमने पहले बताया कि ये बहुवर्षीय फसल है, एक बार आप लगाइए 5 सालों तक इसकी कटाई करते रहते हैं।
1: कितना हमें लागत लाभ हो जाता है कुछ के बारे में?
0: देखिए, लागत इसमें बहुत ज्यादा नहीं है। अब आप बहुवर्षीय है, जो भी लागत है आपके एक बार लगेगा पौधे के।
1: अच्छा।
0: और जो आपका खाद है, केचुआ का खाद है, रासायनिक खाद का प्रयोग करना नहीं है बिल्कुल, तो पूरा ये जैविक तरीके से ही इसका खेती की जाती है। अब इसमें अगर अच्छे समय पर इसकी कटाई की जाए, अच्छी किस्म लगाई जाए और समय समय पर इसका रख रखाव ठीक से किया जाए, तो करीब 2 से लेकर 4 टन सूखी पत्ती प्राप्त होती है।
1: बढ़ के 4 बीघा हम भैया
0: एक साल में।
1: अच्छा,
0: एक हेक्टेयर में।
1: अच्छा अच्छा।
0: और उसके बाद में क्या है कि एक अगर औसतन देखा जाए, तो औसतन यह है कि करीब 2.5 से 3 क्विंटल जो पत्ता है, 2.5 से 3 टन जो पत्ता है वो प्राप्त होता है एवरेज हर साल।
1: अच्छा अच्छा।
0: तो
1: ये पत्ता बेच के भैया लाभ ले सकते हैं। भैया डॉक्टर अमित कुमार जी, आप आएं और इस स्टीबिया के वैज्ञानिक विधि से खेती कैसे किसान भाई करें, आपका जानकारी देने खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
2: स्टीविया की खेती कैसे करें, इस विषय पर अभी आपने सुनी डॉक्टर अमित कुमार मौर्य से राकेश कुमार मौर्य की बातचीत। कार्यक्रम था स्वास्थ्य चर्चा। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। बस कुछ ही पलों में आपको सुनवाएंगे हमारे आज किसान।

0: श्रोताओं, कृषि जगत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे स्टीविया की खेती कैसे करें, इस विषय पर डॉक्टर अमित कुमार मौर्य से राकेश कुमार मौर्य की बातचीत। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए डॉक्टर हर्षवर्धन श्रीवास्तव की वार्ता, पैर की नसों में होने वाला खिंचाव।
1: पैर की नसों में होने वाला खिंचाव, गैस्ट्रोइंटराइटिस, स्टमक और आंत इंटेस्टाइन दोनों में एक साथ इन्फेक्शन हो जाता है तो गैस्ट्रोइंटराइटिस कहते हैं। इसमें वोमिटिंग और वाटरी स्टूल फ्रिक्वेंसी यानी जल्दी जल्दी डिस्चार्ज होने लगता है। जब पानी एवं बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा निकल जाता है तो इस कंडीशन को डिहाइड्रेशन कहते हैं। इस स्थिति में पैर के कॉफ मसल्स में खिंचाव यानी क्रैमनेस उत्पन्न हो जाता है। इसमें तुरंत ORS सॉल्यूशन का घोल पिलाते हैं जिससे क्रैमनेस में कमी आती है। साथ में एंटीबायोटिक दवा देते हैं जिससे इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है, मरीज को आराम मिल जाता है। डायरिया, इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग, पेट में एलर्जिक रिएक्शन, पेट की गर्मी से एवं मौसम के बदलाव से डायरिया होता है। जब आवश्यकता से अधिक पानी निकल जाता है तो डिहाइड्रेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे स्थिति में पैरों की नसों में खिंचाव होने लगता है। इस स्थिति में तुरंत ORS सॉल्यूशन का घोल बनाकर पिलाते हैं जिसमें चीनी, नमक और नींबू रस का घोल बनाकर चम्मच चम्मच पिलाते हैं। इससे नसों का खिंचाव तुरंत कम हो जाता है। क्रॉनिक अमीबिक डिसेंट्री कोलाइटिस, ये प्रोटोजुअल इन्फेक्शन के कारण होता है जो अमीबा प्रोटोजुअंस के कारण होता है। इसमें पेट में बहुत तेजी से मरोड़ उत्पन्न होता है और तुरंत पतली स्टूल यानी मल निकलता है जो मिनट्स में बारों बार रिपीट होता है। 15-20 मिनट रिपीटेशन के बाद पैरों के नसों में खिंचाव होने लगता है। इस स्थिति में तुरंत ORS सॉल्यूशन का घोल एवं साथ में मेट्रोजिल का टेबलेट देने से आराम आ जाता है। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, इसमें पैरों की नसों में कमजोरी होने लगती है, मोटी दिखने लगती है, हरी हरी गुच्छेदार दिखने लगती है एवं नसों के अंदर वाल कमजोर हो जाता है जिससे नसें कमजोर होने लगती हैं। इसके अटैक्स या इन्फेक्शन होने से पैरों के नीचे नसों में खिंचाव उत्पन्न हो जाता है जिसे हम थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कहते हैं। इसमें पैर को ऊँचा रखते हुए क्रेप बैंडेज बांधते हैं, दर्द निवारण क्रीम मलते हैं। इसके करने से नसों के खिंचाव में आराम मिलता है। विटामिन और डी की कमी से भी पैरों के नसों में खिंचाव उत्पन्न हो जाता है। विटामिन ई और विटामिन डी के देने से तुरंत पैरों के खिंचाव में आराम मिलने लगता है। हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म हार्मोन डिसऑर्डर के कारण होता है जब TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है और T3 और T4 हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है तो इस कंडीशन में हाइपोथायरॉयडिज्म रोग कहते हैं। ये नेक के ग्वाइटर में होता है, शरीर का वेट इसमें बढ़ जाता है, पूरे शरीर में सूजन आ जाती है। पैर के कॉफ में म्यूशिन मटेरियल जमा होने के कारण वह कड़ा हो जाता है और वहाँ सूजन दिखती है। रात में पैर मोड़ने में काफ़ी खिंचाव होता है। उपचार, थायरेक्सिन हार्मोन की दवा देने से इसमें तुरंत आराम मिलता है। अनुलोम विलोम एक्सरसाइज कराते हैं, बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, इससे शरीर एक्टिव हो जाता है।
0: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर हर्षवर्धन श्रीवास्तव की वार्ता, पैर की नसों में होने वाला खिंचाव।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अब श्रोताओं, वक्त हो चला है हमारे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को सुनने का। तो आइए आपको जानकारी दे दें आज के कार्यक्रमों की।

गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशां। रात 8:30 पर सुनेगा रेणुका जोशी की लिखी झलकी स्टोर रूम का चोर। कार्यक्रम होगा आज इतवार है। चिट्ठी आई है ये कार्यक्रम जो आपके पत्रों पर आधारित पत्रोत्तर कार्यक्रम होता है, सुनिएगा रात 8:00। आकाशवाणी के 90 साल और यादों का कारवां ये कार्यक्रम सुनवाएंगे शाम 7:31 पर प्रख्यात अभिनेता फैजल खान से अभिनव प्रज्ञा पांडे और सुंदरम तिवारी की बातचीत होगी।

सुबह 7 बजे से आनंद लीजिएगा श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ का। फिल्मों से भजन कार्यक्रम का समय होगा सुबह 7:10। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित डीके दातार का वायलिन वादन सुनिएगा सुबह 7:30 पर। दोपहर 12:15 पर सुनाएंगे पंडित अनोखे लाल का तबला वादन। सुबह 9:50 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार होंगे अमृता मालवीय। दोपहर 12:30 पर फिल्म संगीत कार्यक्रम सुनिएगा। सुबह 10:30 पर, सुबह 9 बजे और रात 8:15 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम फिल्म संगीत। दोपहर 1:15 पर अपने फोन कॉल्स पर आधारित फिल्मी गानों का कार्यक्रम सुनिएगा हेलो अनुरोध। प्रस्तुति होगी मधु कुमार की।

लोक गीतों के कार्यक्रम लोकमाथुरी में सुबह 10:05 पर सुनिएगा संगीता मिश्रा के गाए गीत भजन, माफ कीजिएगा लोकगीत, और दोपहर 2:30 पर सूर्य प्रकाश पटेल और साथी प्रीति मिश्रा और नन्हे लाल बिंद और साथियों से लोकगीत सुनवाएंगे। दिन में 11:15 पर बच्चे सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम बाल संघ।

शाम 5 बजे बाल गोपाल कार्यक्रम में ग्रामीण अंचल के बच्चे सुनेंगे अंजू यादव की वार्ता, पर्यावरण और हमारे वन्य जीव। युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युवाणी होगा शाम 5:15 पर। शाम 6:23 पर पंचायत घर कार्यक्रम में मिफ्ताहुद्दीन सैफी की वार्ता सुनिएगा, ग्राम्य अर्थव्यवस्था में सहकारी समितियों का योगदान। साथ ही तेरसलाल और साथियों के स्वर में लोकगीत होंगे। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में 6:55 होने को हैं और अब समय हो चला है संस्कृत में समाचार का। रिले कर रहे हैं दिल्ली केंद्र से।

ये है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब आनंद लेते हैं श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ का।

देवाधिदेव महादेव उन महिमामय की प्रशस्ति कर रहे हैं जो हाथों में धनुष बाण धारण कर रघुकुल भूषण के रूप में प्रकट हुए हैं।

अभी आपने आनंद लिया श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ का, स्वरता भूपेंद्र सिंह का और संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का था। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्मों से भजन।

सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म से आपने भजन सुना था, मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। पंडित नरेंद्र शर्मा ने लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। और अब आप सुन रहे हैं मिस मैरी फिल्म से भजन, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं, गीत और संगीत हेमंत कुमार का है।

श्रद्धा अभी आप सुन रहे थे फिल्मों से भजन। आखिर में आपने सुना था खानदान फिल्म से भजन, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ें थीं, राजेंद्र कृष्ण की शब्द रचना, रवि का संगीत था। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। 7:20 हुए हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, रिले कर रहे हैं लखनऊ केंद्र से।

0: गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का किया भूमि पूजन और शिलान्यास। कहा, प्रदेश में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे रही है सरकार। डिजिटल

0: जनगणना के पहले चरण में मुख्यमंत्री ने भी पूरी की स्वगणना की प्रक्रिया। सभी नागरिकों से जनगणना में सहभागिता दर्ज कराने का किया आह्वान। CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन किया अनिवार्य। 3 में से 2 भाषाएं भारतीय मूल की होंगी। और प्रदेश में 18 जून को गोरखपुर के रास्ते दस्तक देगा मानसून। सिंचाई और जल संसाधन विभाग ने सभी 18 मंडलों में 31 मई तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का दिया निर्देश। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में वाराणसी राजमार्ग पर स्थित तालनदौर में करीब 393 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के बगल में 60 एकड़ भूमि पर नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए हर गांव में खेल का मैदान बनाया जा रहा है।
1: हर गांव में हम खेल का मैदान बना रहे हैं, हर विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम और हर जिले में एक स्टेडियम बने, इस पर कार्य प्रारंभ हुआ है। 18 कमिश्नरी हैं, हर कमिश्नरी स्तर पर एक स्पोर्ट्स कॉलेज बने, प्रदेश में अपना एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो, इसके लिए मेजर ध्यानचंद के नाम पे मेरठ में हम लोग स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण कर रहे हैं। इसी सत्र में हम उसका उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। वाराणसी में BCCI की मदद से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार और भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से गोरखपुर में भी एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनने से पूर्वी उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए खेलकूद गतिविधियों को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से देश में नई खेल संस्कृति आगे बढ़ी है।
1: प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देशवासियों से एक बात कही थी, खेलो इंडिया खेलो के एक स्लोगन दिया था। फिर उन्होंने फिट इंडिया मूवमेंट की बात कही थी, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने की बात कही थी। देश के अंदर इनके माध्यम से एक नई खेल संस्कृति आगे बढ़ी।
0: श्री योगी ने कहा कि ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप तथा नेशनल चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम निर्माण के लिए CSR फंड से 100 करोड़ रुपए देने के लिए पेट्रोलियम मंत्री, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के प्रति आभार व्यक्त किया। शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश सुशासन, निवेश और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जाना जाता है। राज्य में कानून व्यवस्था में आए सुधार ने आम नागरिकों से लेकर उद्योग जगत तक नया विश्वास पैदा किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस स्टेडियम से प्रशिक्षण लेकर ऐसे खिलाड़ी निकलेंगे जो देश का नाम दुनिया भर में रोशन करेंगे। शिलान्यास समारोह में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। गोरखपुर में 46 एकड़ में बनने वाले इस स्टेडियम की दर्शक क्षमता 30,000 होगी। प्रदेश में जारी डिजिटल जनगणना के पहले चरण के अंतर्गत स्वगणना की प्रक्रिया 7 मई से जारी है। 21 मई तक चलने वाली इस प्रक्रिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कल गोरखपुर में स्वगणना का डिजिटल प्रपत्र भरा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी नागरिकों से इस प्रक्रिया में सहभागिता दर्ज कराने की अपील करते हुए कहा है कि ये देश की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है। इसका मुख्य उद्देश्य सटीक आंकड़े जुटाकर देश के विकास और कल्याणकारी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करना है। अंशकालिक अनुदेशकों के बढ़े हुए मानदेय वितरण को लेकर आज प्रदेश भर में उनके सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लखनऊ के लोकभवन में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंशकालिक अनुदेशकों के सम्मान और बढ़े हुए मानदेय वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सरकार द्वारा पूर्व में जारी शासनादेश के तहत अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 9,000 रूपये से बढ़ाकर 17,000 रूपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया था। बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल से प्रभावी किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और X हैंडल AIR News_G

0: केपी पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित तथा आंतरिक होगा। सपा नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खां को एक विवादित बयान के मामले में कल रामपुर की MP MLA कोर्ट ने 2 वर्ष की कैद और 20,000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। उन पर वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान थाना भोट क्षेत्र में एक सभा के दौरान तत्कालीन जिलाधिकारी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने का आरोप था। भदोही में काशी नरेश विश्वविद्यालय की प्रथम नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव ने कल अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत में प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव ने कहा कि विश्वविद्यालय में शोध कार्यों और गुणवत्तापूर्ण पठन पाठन सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता होगी।
1: बहुत पुराना कॉलेज है आजादी के बाद का पहला और अब ये यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया है। इसमें रिसर्च वगैरह भी अब शुरू हो जाएगी या हो रही होगी, लेकिन अब क्या है कि रिसर्च बहुत पुरजोर तरीके से की जाएगी सबके साथ, तो फिर हाई क्वालिटी रिसर्च हो, स्टूडेंट्स रिसर्च ओरिएंटेड हो, कैंपस का माहौल बहुत अच्छा हो और इसमें मेरा प्रयास रहेगा।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कल मिर्जापुर में ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की तरफ से तैयार किए गए विंध्य प्रसादम गिफ्ट बॉक्स का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि ये पहल वोकल फॉर लोकल और महिला सशक्तिकरण का जीवंत उदाहरण है। विंध्याचल में आने वाले दर्शनार्थियों के लिए विंध्य प्रसादम में चुनरी से लेकर पूजा की सामग्री और प्रसाद उपलब्ध है। प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कल वाराणसी में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को बारिश से पहले नालों की सफाई, शहर की स्वच्छता और बिजली आपूर्ति दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बैठक में राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा भी मौजूद रहे। चित्रकूट नगर पालिका क्षेत्र में 90 करोड़ रूपये की लागत से विभिन्न विकास कार्य कराए जाएंगे। कल नगरपालिका परिषद की बैठक के बाद अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता ने बताया कि नगर में बुनियादी सुविधाओं का विकास करने के साथ ही इसे सुंदर बनाया जा रहा है।
2: उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर चित्रकूट के विकास के लिए चित्रकूट नगर में 90 करोड़ के आसपास का बजट प्रस्तुत किया गया है। इसमें सड़कों का निर्माण, नालियों का निर्माण और नगर के सुंदरीकरण, नगर के चमुखी विकास के लिए 26 और 27 इसका क्रियान्वयन किया जाएगा।
0: मथुरा सहित समूचे ब्रजमंडल में 1 माह तक चलने वाला पुरुषोत्तम मास मेला आज से शुरू हो गया है। श्रद्धालुओं की भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने गोवर्धन और वृंदावन समेत पूरे ब्रज क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मानसून 18 जून को गोरखपुर के रास्ते प्रदेश में दस्तक देगा। इस वर्ष मानसूनी सीजन में सामान्य से कम वर्षा की संभावना है। सिंचाई और जल संसाधन विभाग की ओर से प्रदेश के सभी 18 मंडलों में 31 मई तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। बाढ़ और प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी के लिए ये कक्ष 15 जून से 15 अक्टूबर तक 24 घंटे सक्रिय रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का किया भूमि पूजन और शिलान्यास। कहा, प्रदेश में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे रही है सरकार। डिजिटल जनगणना के पहले चरण में मुख्यमंत्री ने भी पूरी की स्वगणना की प्रक्रिया। सभी नागरिकों से जनगणना में सहभागिता दर्ज कराने का किया आह्वान। CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन किया अनिवार्य। 3 में से 2 भाषाएं भारतीय मूल की होंगी। और प्रदेश में 18 जून को गोरखपुर के रास्ते दस्तक देगा मानसून। सिंचाई और जल संसाधन विभाग ने सभी 18 मंडलों में 31 मई तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का दिया निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार आपसे थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित डीके दातार का वायलिन वादन। राग है अहीर भैरव। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं नयन घोष। तो लीजिए सुनिए पंडित डीके दातार का वायलिन पर बजाया राग अहीर भैरव।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित डी के दातार का वायलिन वादन, और उसके बाद आपने सुना वाद्य वृंद रचना। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में 8 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात, रिले कर रहे हैं दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी दो दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टरबाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच हेग में व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों ने

0: ता उन्हें व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत के स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। ये यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
4: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
5: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
4: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली और भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य पार्टी के नेताओं ने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि कई राज्यों की यात्रा के दौरान समिति आपत्तियां और सुझाव एकत्रित कर रही है। इससे जुड़ी चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा और दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान करना पड़ेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News Hindi को फॉलो

0: कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि भोजशाला एक मंदिर होने के साथ साथ संस्कृत भाषा, व्याकरण और साहित्य के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र भी है। हिंदू समाज को प्राचीन परंपरा के अनुसार माँ देवी सरस्वती की पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए इस परिसर में बिना किसी रोक टोक के आने का अधिकार होगा। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उस 7 अप्रैल 2003 के आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें मुस्लिम समुदाय हर शुक्रवार भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग जमीन के आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एक अन्य अभियुक्त प्रोफेसर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया है। वे पुणे के एक कॉलेज में वनस्पति शास्त्र के अध्यापक हैं। सीबीआई के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मंधारे को परीक्षा प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। इससे पहले सीबीआई ने 14 मई को पुणे से ही मनीषा वाघमारे को गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल में आरजीकर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय राय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अध्यादेश 2026 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने की मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया है। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से मणि हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: जी लवलीन, खेल खबरों में सबसे पहले बात बैडमिंटन की। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। और अगर बात करें टेनिस की तो भारत के सिद्धांत बंथिया और बुल्गारिया के अलेक्जेंडर डोंस्की की जोड़ी ने पुर्तगाल में ओइरास 4 ATP चैलेंजर 100 टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। और टेनिस में ही इटली ओपन टूर्नामेंट में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज सिनर का सामना कैस्पर रूड से होगा। उधर बेंगलुरु में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले टीम की तैयारियों पर जोर दिया है। भारतीय टीम 26 से 30 मई के बीच पर्थ हॉकी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैच खेलेगी। और अगर बात करें क्रिकेट की तो IPL में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा और 7:30 बजे से दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।

0: मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान द्वीप समूह के कई हिस्सों और पूरे निकोबार द्वीप समूह में आगे बढ़ चुका है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 26 मई को केरलम तक पहुंचने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमालय के तराई क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माही और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दशक को आपदाओं का दशक बताते हुए इस स्थिति को बदलने की अपील की है। लोक सत्य की सुर्खी है, मानवता के सामने कई बड़ी चुनौतियां, हालात नहीं बदले तो गरीबी के दलदल में फंसेगी दुनिया। प्रधानमंत्री की चेतावनी शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है, एक ऐसे समय जब भारत पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों लोगों को गरीबी से उबारने में सफल हुआ है, तब इससे अधिक चिंता की बात कोई और नहीं हो सकती कि फिर से न सिर्फ भारतीयों के बल्कि पूरी दुनिया के सामने आर्थिक संकट तेजी से बढ़ रहा है। भोजशाला में अब बिना रोक टोक के 365 दिन हो सकेगी पूजा। दैनिक जागरण ने इसे पहली खबर बनाते हुए लिखा है, प्रवेश और पूजा की नई व्यवस्था, भोजशाला में लौटा आस्था का उल्लास। नीट यूजी पेपर लीक मामले में दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रक्षक ही भक्षक। पत्र के अनुसार एनटीए ने 4 नए अफसरों की नियुक्ति हुई, कथित सरगना कुलकर्णी को 10 दिन की हिरासत में भेजा। नवभारत टाइम्स की खबर है, जुलाई से सीबीएसई के अंतर्गत 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी पढ़ेंगे तीसरी भाषा, इनमें 2 भारतीय भाषाएं अनिवार्य होंगी। पत्र के अनुसार नए नियम 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे। आज विश्व दूर संचार दिवस पर राजस्थान पत्रिका लिखता है, धरती के संसाधनों को निचोड़ रहा आपके फोन में पड़ा डार्क डेटा। पत्र के अनुसार हर दिन अनावश्यक फाइल और चैट से बढ़ रहा है डार्क डेटा, जिसे संभालने में खर्च हो रही है बिजली और पानी। मॉनसून के अंडमान पहुंचने की खबर हिंदुस्तान में है। पत्र के अनुसार अगले हफ्ते दक्षिण पूर्वी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के आसार।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टर्बाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस, इंडिया एंड द नेदरलैंड्स एलिवेट देयर टाइज टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉलोइंग टॉक्स बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज डच काउंटर पार्ट रॉब येटन। प्राइम मिनिस्टर मोदी टू रीच गोथेनबर्ग टुडे ऑन अ 2-डे विजिट टू स्वीडन to hold talks with his Swedish counterpart, Ulf Kristersson. Archaeological Survey of India allows Hindus unrestricted access to Bhojshala temple after Madhya Pradesh High Court verdict. Government imposes curbs on import of silver, moves it to restricted category. Delhi government decides to reduce value-added tax on aviation turbine fuel in national capital from 25% to 7%. And in badminton, Indian duo of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to face Indonesian pair in men's doubles final of Thailand Open in Bangkok today. India and the Netherlands agreed to elevate their bilateral relationship to the level of a strategic partnership following wide-ranging discussions between Prime Minister Narendra Modi and Dutch Prime Minister Rob Jetten in The Hague. During the talks, the two leaders reviewed cooperation across sectors, including trade, defense.

0: टनबर्ग स्वीडन से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: भारत और स्वीडन के दरमियान तिजारत और आवाम से आवाम के दरमियान राब्तों की विरासत है जो एक सदी से ज्यादा अरसे पर मुहित है और इसकी जड़ें बाहमी एहतराम, पुरअमन बका और अहिंसा के नजरिए में पेवस्त हैं। इस गहरे ताल्लुक की निशानदेही नोबेल इनाम याफ्ता रविन्द्रनाथ टैगोर के साल 1926 के स्वीडन दौरे के 100 साल मुकम्मल होने से होती है। आज ये ताल्लुकात सकाफती बुनियादों से आगे बढ़कर जामे सनती इक्तसादी शराकतदारी में बदल रहे हैं। कीमती धातुओं पर इजाफी कस्टम ड्यूटीज आयद करने के कुछ ही दिनों बाद हुकूमत ने अब चांदी की दरामद में कटौती की है। गैर मुल्की तिजारत के डायरेक्टोरेट जनरल DGFT ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि चांदी पर सोने का पानी चढ़ी चांदी और प्लेटिनम समेत चांदी पर दरामदी पॉलिसी को फौरी तौर से आज़ाद से पाबंदी शुदा के जुमरे में तब्दील किया गया है। हुकूमत ने बुध के रोज कीमती धातु पर दरामदी ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी थी। पाबंदियां आयद किए गए जुमरे की अशिया की दरामद के लिए हुकूमत की लाइसेंस की जरूरत होती है। दिल्ली हुकूमत ने एक अहम कदम उठाते हुए कौमी दारुल हुकूमत में एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर वैल्यू एडिड टैक्स को 25% से घटाकर 7% करने का फैसला किया है। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि ये फैसला वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से कनेक्टिविटी और माशी सरगर्मियों को मजबूत बनाने पर जोर देने से मुताबकत रखता है, जिसका मकसद शहरी हवाबाजी के शोबे को राहत फराहम करना, सियाहत और लॉजिस्टिक्स से मुतालिक सरगर्मियों को फरोग देना है। वजीर आला ने बताया कि ये रियायती शरह आइंदा 6 माह तक नाफिज रहेंगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। महकमा आसार कदीमा ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में वाके भोजशाला कॉम्प्लेक्स इमारत में हिंदुओं को पूजा पाठ और दीगर मकासद के लिए बिला रुकावट रसाई की इजाजत दे दी है। महकमा आसार कदीमा का ये फैसला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले के एक दिन बाद आया है, जिसमें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार जिले में भोजशाला को सरस्वती देवी का मंदिर करार दिया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: महकमा आसार कदीमा के हुक्मनामे का हवाला देते हुए एक अफसर ने बताया कि भोजशाला मंदिर के अलावा संस्कृत जबान, कवायद और अदब सीखने सिखाने और तहकीक का मरकज़ भी रही। अफसर ने मजीद बताया कि हिंदू बिरादरी के सरस्वती देवी की पूजा और सीखने सिखाने के कदीम तरीक़ेकार से ताल्लुक़ की बिना पर उन्हें कॉम्प्लेक्स में बिला रुकावट रसाई की इजाज़त होगी। इससे पहले जुमे के रोज़ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार जिले के भोजशाला कॉम्प्लेक्स को सरस्वती देवी का मंदिर करार दिया था और कहा था कि मरकज़ और ASI इसके इंतज़ाम व इंसराम तय कर सकते हैं। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने 7 अप्रैल 2023 के महकमा आसार कदीमा के उस हुक्मनामे को भी कलअदम करार दिया, जिसमें मुसलमानों को हर जुमा को भोजशाला कॉम्प्लेक्स में जुमे की नमाज अदा करने की इजाज़त थी। दलाइल की समाअत कर रही बेंच ने यह भी कहा कि मुसलमान बिरादरी जो ASI के तहफ़ वाली 11वीं सदी की इमारत को कमाल मौला मस्जिद मानती है, वो ज़िले में मस्जिद की तामीर के लिए अलहदा ज़मीन अलाटमेंट की खातिर रियासती हुकूमत से रुजू कर सकती है। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
1: CBI ने नीट पेपर लीक केस के सिलसिले में पुणे से एक और अहम मुलजिमा को गिरफ्तार किया है। मुलजिम प्रोफेसर मनीषा मंधारे पुणे में एक कॉलेज में बॉटनी के उस्ताद हैं। CBI के मुताबिक कौमी जांच एजेंसी ने इम्तिहान के अमल में एक एक्सपर्ट के तौर पर उनका तकर्रुर किया था। इससे पहले 14 मई को एक और मुलजिमा मनीषा वाघमारे को भी पुणे से गिरफ्तार किया गया था। दोनों मुलजिमान को पुणे की एक अदालत में पेश किया गया था और बाद में मजीद तफ्तीश के लिए उन्हें दिल्ली लाया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस शंपा सरकार और जस्टिस तीर्थांकर घोष की एक डिवीजन बेंच की जानिब से RG कर मेडिकल कॉलेज असमतदरी और कत्ल केस की समाअत की जाएगी। इससे पहले इस हफ्ते जस्टिस राजा शेखर मांथा और जस्टिस राय चट्टोपाध्याय ने ज्यादा मसरूफियत का हवाला देते हुए खुद को इस केस से अलग कर लिया था। इस केस में संजय राय जनवरी 2025 में उम्र कैद की सजा पाने वाले वाहिद मुजरिम है। मुतवफ़ी डॉक्टर की वालिदैन ने कोलकाता की सियालदा अदालत में एक केस दायर किया था, जिसमें उन्होंने TMC के साबिक MLA निर्मल घोष, संजीव मुखोपाध्याय और घोला पुलिस स्टेशन के उस वक्त के इंचार्ज की गिरफ्तारी की अपील की थी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद से मुताल्लिक

तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 के निफाज के जरिए भारत के चीफ जस्टिस को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद 33 से 37 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। कानून और इंसाफ की वजारत की तरफ से शाया करदा एक गेजेट नोटिफिकेशन के मुताबिक इस ऑर्डिनेंस में सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद से मुतालिक एक्ट 1956 में तरमीम की गई है। एक मुल्क एक चुनाव बिल से मुतालिक मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी ने कल सियासी पार्टियों, कानूनी बिरादरी और सिविल सोसाइटी के साथ बेंगलुरु में वसी तर तबादला ख्याल किया। बाद में अखबार नवीसों को जानकारी देते हुए कमेटी के चेयरमैन पीपी चौधरी ने बताया कि मुख्तलिफ रियासतों के अपने दौरे के दौरान मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी की तरफ से एतराजात और सिफारिशात जमा की जा रही हैं। बैडमिंटन में बैंकॉक में जारी थाईलैंड ओपन के मर्दों के डबल्स के फाइनल में आज सत्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रॉली कॉर्नेंडो और डेनियल मार्टिन से जोड़ी से होगा। इससे पहले कल सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय जोड़ी मलेशिया के गोजीफी और नूर इजुद्दीन को हराकर फाइनल में पहुंची है।

मीडियम वेव 294 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। श्रोताओं नमस्कार, वणक्कम, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। स्वागत आप सभी सुनने वालों का कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज में। मैं मोना पांडे लेकर हाजिर हूँ आज का अंक। हर सुबह अपने साथ एक नया संदेश लेकर आती है जागरूकता का, प्रेरणा का और जीवन बेहतर बनाने का। आज का दिन हमें दो ऐसे महत्वपूर्ण विषयों की याद दिलाता है जो सीधे हमारे जीवन और समाज से जुड़े हैं। एक ओर है आधुनिक तकनीक और संचार की अद्भुत दुनिया, तो दूसरी ओर जिसने पूरी पृथ्वी को एक परिवार बना दिया है, और हमारा स्वास्थ्य जो जीवन की सबसे अनमोल पूंजी है। इसीलिए 17 मई को पूरी दुनिया में मनाया जाता है विश्व दूर संचार एवं सूचना समाज दिवस और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। तो आइए जानकारी, जागरूकता और सकारात्मक संदेशों से भरपूर इस कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज के करते हैं शुरुआत।

श्रोताओं, कार्यक्रम के माध्यम से हमारा उद्देश्य होता है आप सभी को किसी भी चीज़ के प्रति जागरूक करना, जानकारियाँ देना, जिससे आप अलर्ट रहें, सावधान रहें और उसे अपनाकर स्वस्थ रहें। तो श्रोताओं, कभी एक समय था जब किसी दूर बैठे अपने तक संदेश पहुंचाने में कई दिन लग जाते थे, याद है ना आपको? चिट्ठियों का इंतज़ार किया जाता था, तार भेजे जाते थे, लेकिन आज मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और वीडियो कॉल ने दूरियों को जैसे मिटा ही दिया है ना? आज हम घर बैठे दुनिया भर की जानकारी पा सकते हैं।

और ऑनलाइन पढ़ाई का तो क्रेज़ इतना बढ़ गया है, वो भी सिर्फ इसी वजह से ही संभव हो पाया है। तो डॉक्टर से सलाह भी आप ले सकते हैं ऑनलाइन, और अपने प्रियजनों से तुरंत जुड़ सकते हैं इस तकनीकी के माध्यम से। और ये सब कुछ संभव हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ दूर संचार तकनीक के माध्यम से, यानी उसके कारण। इन्हीं उपलब्धियों और सूचना तकनीक के महत्व को समझाने के लिए हर वर्ष 17 मई को विश्व दूर संचार एवं सूचना समाज दिवस मनाया जाता है। 17 मई 1865 को अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ संघ की स्थापना हुई थी, जिसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ यानी ITU इसे कहा गया। इसी ऐतिहासिक दिन की स्मृति में ये दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। और श्रोताओं, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य, आपको बता दें, तकनीक और संचार सेवाओं का लाभ समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचाना है, डिजिटल जागरूकता बढ़ाना और सूचना तकनीक को विकास का माध्यम बनाना। आज दूरसंचार ने समाज को नई दिशा दी है, शिक्षा अब गांव-गांव पहुंच रही है, ऑनलाइन सेवाओं ने समय और दूरी दोनों को कम कर दिया है, किसान मौसम और बाजार की जानकारी तुरंत प्राप्त कर पा रहे हैं, और आपदा और संकट की बात करें तो इस समय तो संचार सेवाएं लोगों के लिए जीवन रेखा बन रही हैं। रोजगार और व्यापार के अन्य अवसर भी पैदा हुए हैं और हम निरंतर इसका लाभ उठा रहे हैं। लेकिन तकनीक का सही और सुरक्षित उपयोग भी उतना ही आवश्यक है श्रोताओं। सोशल मीडिया का संयमित प्रयोग करना चाहिए, साइबर सुरक्षा और सही जानकारी का चयन आज की बड़ी जरूरत है। सच ही कहा गया है, तकनीक तभी सार्थक है जब तक वो मानवता और समाज के कल्याण में सहायक बने। और अब श्रोताओं, कुछ बातें विश्व उच्च रक्तचाप दिवस की। श्रोताओं, तेज भागती जिंदगी, तनाव, अनियमित दिनचर्या और गलत खानपान ने कई स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दिया है, और इन्हीं में से एक है उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर। इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि कई बार इसके लक्षण तुरंत नहीं दिखाई देते, लेकिन ये हृदय, मस्तिष्क और शरीर के अन्य अंगों को प्रभावित कर देता है। लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करने के लिए हर वर्ष 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। और इस साल की थीम, आपको बता दें, उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें। जी हाँ, यही है इस बार की, इस दिवस को मनाने की थीम, यानी कंट्रोलिंग हाइपरटेंशन टुगेदर। इस दिवस को मनाने की शुरुआत सबसे पहले 14 मई 2005 को की गई थी, और 2006 से इसे आधिकारिक तौर पर हर साल 17 मई को मनाया जाने लगा।

WHL वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग द्वारा इसे विश्व स्तर पर मनाने की शुरुआत हुई थी और ये WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करने वाली गैर लाभकारी संस्था है जिसका मुख्यालय वर्तमान में अमेरिका में है। ये वैश्विक स्तर पर जागरूकता का संचालन करती है। तो श्रोताओं, नियमित व्यायाम करें, संतुलित भोजन लें, योग और ध्यान को अपनाएं, पर्याप्त नींद लें, समय समय पर इसकी जांच अवश्य कराएं। यदि हम अपनी दिनचर्या में श्रोताओं थोड़े से सकारात्मक बदलाव लाएं तो कई बीमारियों से बच सकते हैं।

तो श्रोताओं, आज के इन दोनों महत्वपूर्ण दिवसों से हमें यही संदेश मिलता है कि तकनीक का उपयोग समाज और मानवता के विकास के लिए करें और साथ ही अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, सजग रहें। जागरूकता ही बेहतर भविष्य की पहली सीढ़ी है श्रोताओं, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे यानी आपके आज के कार्यक्रम होस्ट और दोस्त मोना पांडे को दीजिए इजाज़त। नमस्कार प्रयागराज में, फिर होगी मुलाकात एक नई जानकारी और एक नए संदेश के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए और हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहिए।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। तो श्रोताओं, अब समय हो चला है सुनने का कार्यक्रम फिल्म संगीत, और ये रहा हमारा पहला गाना।

लूडो फिल्म का गाना आप सुन रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में, संदीप श्रीवास्तव की शब्द रचना, प्रीतम का संगीत।

फिल्म संगीत में ये थी आखिरी पेशकश फिल्म शुभ मंगल ज़्यादा सावधान से। आयुष्मान खुराना इक्का और बप्पी लहरी की आवाज़ें थीं, वायु इक्का अनजान की शब्द रचना और तनिष्क बागची और बप्पी लहरी का संगीत था।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में 9:15 होने को हैं। अब समय हो चला है सामयिक चर्चा सुनने का। रिले करेंगे लखनऊ केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: तैयार हैं आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा।
1: विकसित भारत के विजन को साकार करने की दिशा में केंद्र सरकार विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ावा दे रही है। इनमें कृषि की खास भूमिका है। ऐसे में देश का सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश भी कृषि क्षेत्र में योगदान देकर देश में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित हो रहा है। प्रदेश गेहूं, दूध, गन्ना, आलू, आम, अमरूद, मटर, मशरूम, तरबूज और शहद के उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है। औद्यानिकी के क्षेत्र में भी देश के कुल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का अग्रणी स्थान है। प्रदेश की इस उपलब्धि ने युवा पीढ़ी को बागवानी को करियर के रूप में चुनने के लिए प्रेरित किया है। आज काफी संख्या ऐसे युवाओं की है जो उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद स्टार्टअप के तौर पर कृषि क्षेत्र में भविष्य तलाश रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ने की इच्छा रखने वाले लोगों की मदद के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है और कैसे वो इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक मनीष मिश्रा। मनीष जी, सरकार कृषि में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठा रही है?
2: सबसे पहले ऑल इंडिया रेडियो के सभी श्रोताओं को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, नमस्कार करता हूं। जो आपने प्रश्न उठाया बड़ा ही प्रासंगिक प्रश्न है। पूरे देश में न सिर्फ कृषि में बल्कि बहुत सारे क्षेत्रों में जो विज्ञान के क्षेत्र हैं, जैसे कि मेडिकल रिसर्च में,

0: आईसीएमआर, इंडस्ट्रियल रिसर्च है जिसमें सीएसआईआर, और जो कृषि का शोध है जिसमें कि आईसीएआर जैसे संस्थान रोज नवाचार कर रहे हैं और नई नई तकनीक का विकास कर रहे हैं। इन तकनीकियों के माध्यम से स्टार्टअप का बहुत सारा सृजन हो रहा है। अब भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप का देश
1: जी।
0: और लगभग समय 5000 स्टार्टअप एग्री स्टार्टअप काम कर रहे हैं, बहुत बड़े जैसे कि देहात है, निंजा कार्ट है, ऐसे तमाम स्टार्टअप आज इस देश में विकसित हैं। और ये तब संभव है जबकि कृषि तकनीकी नवाचार के माध्यम से विकसित हो गई हैं और इनके माध्यम से लोगों तक पहुंचने का, डिजिटाइजेशन का, एग्रीकल्चर मार्केटिंग का, एआई लेड प्रिसीजन फार्मिंग का एक बहुत बड़ा बाजार उपलब्ध हो गया है।
1: जी मनीष जी, एक खास रुझान जो देखने को मिल रहा है कि जो आजकल के युवा हैं वो पढ़ाई करके, हायर स्टडीज करने के बाद भी जॉब करने के बजाय कृषि की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो कोई युवा अगर स्टार्टअप के तौर पर कृषि को अपनाना चाहता है तो वो कहाँ से शुरुआत कर सकता है?
0: कृषि आज भी इस देश का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है और जो स्टार्टअप की संभावनाएं हैं जो वो सबसे बड़ी कृषि में है। तो मुझे लगता है कि कोई भी युवा जो निकलते हैं पढ़ करके, उनको कृषि एक बहुत ही आकर्षक माध्यम दिखाई पड़ता है और इसमें संभावनाएं इसलिए बहुत हैं क्योंकि बाकी सारे जो व्यवसाय हैं उनका एक डिक्लाइनिंग पॉइंट होता है, कृषि का कभी नहीं हो सकता है क्योंकि हमेशा हमको खाद्यान्न की, हमेशा में उद्यान फसलों की, हमें सब्जियों की हमको हमेशा जरूरत पड़ने वाली। तो इस नाते से कोई भी अगर युवा एक कृषि व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो पूरे देश में एक बहुत ही परंपरागत ढांचा है इन लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए। इनको बोलते हैं एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर, जो पूरे देश में खाली भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में 50 के करीब पूरे देश में है। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT में बहुत सारे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी कि IIM में बहुत सारे हैं। ऐसे देश में बहुत सारे इंक्यूबेटर्स हैं जो आपको तकनीक के माध्यम से, आपको फंडिंग के जरिए, आपको तकनीकी कौशल के माध्यम से ये आपको प्रोत्साहित करते हैं और आप एक स्टार्टअप अपना शुरू कर सकते हैं। तो कोई भी युवा किसी भी जगह जहां भी रहता हो पूरे देश में, वो अपने पास का जो एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है उसको संपर्क कर सकता है, उसके माध्यम से एक अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है।
1: जी, खासतौर से अगर फसलों की बात करें कि एक रूटीन जो हमारी जो पारंपरिक फसलें हैं उनके अलावा भी बहुत तरह की फसलें इंट्रोड्यूस हुई हैं जो आमदनी को बढ़ाती हैं, तो आप एज एन एक्सपर्ट क्या सलाह देते हैं कि ऐसी कौन सी फसलें हैं जिनसे आय बढ़ाने में मदद मिल सकती है और उनकी ज्यादा डिमांड है मार्केट में?
0: मुझे लगता है कि सारी फसलें आपकी अच्छी होती हैं, उसमें कोई फसलों में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन क्या है डिमांड और सप्लाई का जो गैप होता है उसका अध्ययन करना जरूरी है। किसी भी जगह में आप ऑफ सीजन वेजिटेबल्स को अगर आप उत्पादन करते हैं तो आपको ज्यादा लाभ होता है। कहीं भी बहुत बड़ा देश है तो उसकी जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, उसकी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है अलग अलग होती हैं, तो एक जवाब तो उसके लिए मुफीद नहीं हो सकता, लेकिन आप बहुत सारी ऐसी फसलों को नेट हाउस कंडीशन में उगा सकते हैं जबकि वो सामान्य दशाओं में उगाई नहीं जा सकती, तो उनमें आपको बहुत लाभ होता है। बहुत सारे किसान खीरे की खेती करते हैं एक प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, टमाटर की खेती करते हैं, अन्य सब्जियों की खेती करते हैं जिनको उनको अतिशय लाभ होता है। तो ऐसी फसलों के चुनाव के लिए क्या करना होगा कि आपको वहाँ के जो किसानों का जो भी वहाँ पर एक इंक्यूबेशन सेंटर होगा, चाहे वो ICAR का हो या स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का हो, उनसे संपर्क करना पड़ेगा और उनसे एक पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी कि इस समय में, इस वातावरण में मैं कौन सी ऐसी खेती कर सकता हूँ कि मुझे अधिक अधिक लाभ हो। तो इसके लिए जो है एक मतलब एक सामान्य उत्तर नहीं हो सकता कि पूरे देश में कौन सी फसल फायदेमंद होगी, लेकिन ये अलग अलग क्षेत्रों पे निर्भर करेगी।
1: मनीष जी, आपका खास जुड़ाव आम के रिसर्च से है, आपका इंस्टीट्यूट में आम को लेकर काफी काम होता है और यूपी में खासकर मलिहाबाद का दशहरी आम या प्रदेश के अन्य हिस्सों में जो आम की फसल है वो एक्सपोर्ट भी होती है और बहुत फेमस भी है, तो अगर इससे जुड़ना चाहते हैं युवा तो वो कैसे शुरुआत करें?
0: जो मलिहाबाद का दशहरी आम है ये विश्व का बहुत प्रख्यात आम है और इसको एक प्रोटेक्शन मिला हुआ है जिसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन 125 GI 125, यानी कि इस तरह का आम मलिहाबाद के किसान या आसपास के किसान ही उगा सकते हैं और कोई नहीं उगा सकता, और इसकी मार्केटिंग और इसकी ब्रांडिंग और इसका प्रमोशन और इसका एक्सपोर्ट पे तमाम सारी CISS लखनऊ ने पहल की है। ये आम पिछले वर्ष यहाँ से समुद्र के माध्यम से सिंगापुर तक भेजा गया जो बहुत ही लोकप्रिय हुआ, और इस फसल को इससे पहले भी हम लोगों ने अमेरिका में भेजा था एयर के रूट से और वहां भी लोकप्रिय हुआ। तो इसकी अपार संभावनाएं हैं, युवाओं को चाहिए।

0: ये कि इस बहुत ही खूबसूरत फसल के साथ जुड़े और इसको बहुत बढ़ावा दें, क्योंकि इस पूरे विश्व में बहुत लोकप्रियता है।
1: जी मनीष जी, जो आम एक्सपोर्ट होते हैं, एक बड़ा हिस्सा उसका है जो मलियाबाद से जाता है, और जैसा कि आपने बताया कि जगह जगह पर निर्यात किया जा रहा है और काफी दूर तक इसने अपनी पहुंच बना ली है, तो इसमें बीते कुछ सालों में आप कितना सुधार लगता है कि आया होगा?
0: उत्तर प्रदेश एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, यहाँ पर कोई भी समुद्र की सीमा नहीं है, तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि आप आम को अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ आपके पास एक वायु का माध्यम रह जाता है, और एयर का जो माध्यम होता है वो बड़ा महंगा होता है, करीब 450 रुपए किलो होता है उसका खर्चा आता है। अगर आप समुद्र से ले आते हैं तो वो बेहद सस्ता हो जाता है, यानी कि आपका 50-60-100 रुपए के, तो ये माध्यम सबसे बढ़िया माध्यम है अगर समुद्र से ले जाए। लेकिन दिक्कत क्या आती है कि आप ले जाओगे वायु मार्ग से तो आपका 4 दिन में आम पहुंच जाएगा, 2 दिन में आम पहुंच जाएगा, लेकिन आप अभी समुद्र के मार्ग से ले जाते हैं तो वो लगता है 30-35 दिन, अगर आप दुबई पहुंचाना है तो कम लगता है, लेकिन अगर आप सिंगापुर ले जाओगे तो आपको लगभग 22-25 दिन लग जाता है, आपको आप रशिया ले जाओगे तो लग जाता है 30-32 दिन। तो ये समुद्र का मार्ग से ले जाने के लिए सबसे पहले क्या है कि आम की शेल्फ लाइफ बढ़ानी पड़ेगी। तो सबसे पहले जो केंद्रीय उपज बागवानी संस्थान है उसने एक तकनीक विकसित की जिसको सी रूट प्रोटोकॉल कहते हैं, कि यानी समुद्र से ले जाएं तो उसका पूरा प्रोटोकॉल विकसित किया कि इस तरह से आम को आप तोड़ें, इस तरह से आम को उगाएं, इस तरह से आम को पैक हाउस में लाएं, ऐसे पैक करें, और इस तरह से अगर आम धीरे धीरे समुद्र में जाता है तो 30-35 दिन आराम से आम रहता है। तो ये बहुत बड़ी संभावना जो है पिछले कुछ सालों में खुली है, जिसकी वजह से बहुत सारे निर्यातक अभी सामने आ रहे हैं, पूरे देश से आ रहे हैं सामने, और वो हमारी तकनीक का, हमारे प्रोटोकॉल का उपयोग करके विभिन्न देशों में आम को भेजा। तो ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि इस तकनीक के द्वारा हमारा आम जो है पूरे विश्व में जा।
1: जी एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि युवाओं को क्या संदेश देंगे आप, जो मन बना रहे हैं कृषि के तरफ आने के लिए और वो चाहते हैं कि कृषि के माध्यम से वो आगे बढ़ें और अपनी आय को बढ़ाएं, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे?
0: मैं तो ये कहता हूं कि युवाओं के लिए कृषि एक बहुत ही सशक्त माध्यम है, पूरे दुनिया में सारे व्यवसाय में उतार चढ़ाव आ सकता है, कृषि में नहीं आ सकता, क्योंकि कृषि आपकी से उपजे हुए जो उत्पाद होते हैं आपकी जिंदगी का हिस्सा होते हैं, आपको रोज खाना चाहिए होता है, आपको रोज फल चाहिए होते हैं, आपको रोज सब्जियां चाहिए होती हैं, और इसमें अगर आप युवा आगे आते हैं तो उनके पास बेहद बड़े अवसर हैं। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें वो खासतौर पर प्रोसेसिंग में आते हैं, जहां पर कि फलों को या अनाज को या सब्जियों को प्रोसेस करके और एक प्रोडक्ट फॉर्म में लाते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा मार्केट इस देश में अभी है और जो कि बहुत तेजी से विकसित हो रहा है, तो उसमें अपार संभावनाएं हैं किसी भी स्टार्टअप के लिए। मैं सारे युवाओं का आह्वान करता हूं कि इस क्षेत्र में आएं और देखें कि तरह से आपका विकास हो।
1: जी हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू।
2: सामयिक चर्चा में आज आपने सुना, कृषि के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों पर केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक मनीष मिश्रा से खास बातचीत। वार्ताकार थी आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा।
3: सामयिक चर्चा आप सुन रहे थे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं न्यूज ऑन एआईआर ऐप और डीटीएच के माध्यम से भी। आइए सुनते हैं संवेद स्वर में देश गान। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र, और लीजिए अब सुनिए देश गान।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे देश गान। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में 9:30 होने को हैं। अब आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है उर्दू कार्यक्रम। पेशकश आकाशवाणी के गोरखपुर मरकज की है।
1: उर्दू प्रोग्राम के सामईन की खिदमत में शफकत अली खान का सलाम कबूल हो। सामईन, मौलाना मोहम्मद अली जौहर की शख्सियत में जमा कमालात थे। वह बैक वक्त अजीम सियासतदान, मुदब्बिर, फलसफी, शायर और बुलंद पाया सहाफ़ी थे। ये हकीकत है कि उन जैसी शख्सियतें दुनिया में कभी कदार पैदा होती हैं। हिंदुस्तान से मोहब्बत उन्हें वर्से में मिली थी। उनकी वालदा मोहतरमा बी अम्मा अपने ज़माने की मशहूर और मोहतरम और हर दिल अजीज शख्सियत थी। खिलाफत तहरीक के दौरान कौमी बेदारी की अलामत बन चुकी थी। बी अम्मा के फर्जंद मौलाना मोहम्मद अली जौहर हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में एक अहम सियासी रहनुमा और सरफरोश मुजाहिद की हैसियत से हमेशा याद किए जाएंगे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर वो बुलंद पाया बुलवतन और गयूर हिंदुस्तानी थे जिन्होंने अंग्रेजों के सामने मुतालबा रखा था वह गुलाम हिंदुस्तान में वापस नहीं जाना चाहेंगे। तो आई सामाइन, डॉक्टर दरख्शां ताजवर से उनका मकाला सुनते हैं। मौजू है गुलाम हिंदुस्तान में मरना भी गवारा ना होगा।
2: सुरूर जहानाबादी का एक शेर है, सुरूर जिसमें न हुब्बे वतन का हो एहसास, वो दिल हो चूर के बेहतर है इससे पारे संग। हुब्बुल वतनी एक ऐसा जज्बा है जो हर जी नफस में मौजूद होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी हुब्बुल वतनी के बुलंद बांग दावे तो नहीं करते, लेकिन ये जज्बा उनकी रूह तक में सरायत कर लेता है। ऐसा ही एक बंदा मोमिन जिसने अपनी हुब्बुल वतनी के जज्बे को अपने कौल व अमल से साबित किया है, उसका नाम था मौलाना मोहम्मद अली जौहर। अगर हम मौलाना मोहम्मद अली जौहर की जिंदगी का जायजा लें

0: सच कर दिखाया और 4 जनवरी 1931 को लंदन ही में अपनी जान जाने आफरी को सुपुर्द करके अपनी सदाकत और हुब्बुल वतनी का सबूत पेश कर दिया। मीर तकी मीर का एक शेर है, मर्गे मजनू से अक्ल गुम है मीर, क्या दीवाने ने मौत पाई है। क्या जंगे आजादी की तारीख में ऐसी कोई नजीर पेश की जा सकती है जब किसी मुल्क कौम के दीवाने ने वतन की मोहब्बत में अपनी जान का नजराना इस तरह पेश किया हो। शायद उन्हें ये यकीन था कि उनकी मौत काबिले रश्क होगी, जब ही तो उन्होंने अपनी मौत से कबल अपने एक शेर में कहा था, है रश्क एक खल्क को जौहर की मौत पर, ये उसकी देन है जिसे परवरदिगार दे। वतन की मोहब्बत के जज्बे से मखमूर मौलाना मोहम्मद अली जौहर की कुर्बानियां जंगे आजादी की तारीख में आबिज़र से लिखे जाने के काबिल हैं और इन पर हर मुहिब्बे वतन हिंदुस्तानी को नाज होना चाहिए।
1: सामईन, अभी आप डॉक्टर दरख्शां ताजवर से उनका मकाला समाअत फरमा रहे थे। मौजू था, गुलाम हिंदुस्तान में मरना भी गवारना होगा। सामईन, मरकजी हुकूमत ने अकलियतों की फलाह बहबूद के लिए बहुत सारी स्कीमें चलाई हैं। उसी स्कीमों में से एक स्कीम उस्ताद योजना, समाज फरमाइए उस्ताद योजना पर यह मुख्तसर तकरीर। प्रधानमंत्री उस्ताद योजना, इस योजना का फुल फॉर्म है अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट। ये स्कीम अकलियती बरादरियों के रवायती फनून और दस्तकारियों के भरपूर वर्से को महफूज रखने और फरोग देने की एक मुहिम है। ये मंसूबा वजारत अकलियती उमूर ने शुरू किया है। उस्ताद योजना की अहम खसूसियात है अकलियती बरादरियों के कारीगरों और दस्तकारों की रवायती हुनर को बेहतर बनाना, रवायती फनून और दस्तकारियों की दस्तावेजकारी, नौजवानों को उन फनून की तरबियत देना, रवायती हुनर को आलमी मार्केट से जोड़ना, रोजगार के मौके पैदा करना, हुनरमंदों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए माइक्रो फाइनेंस और कर्जे फराहम करना। इस योजना की अहम खसूसियात है ये मंसूबा मुल्क भर में नाफिज किया गया है। हुकूमत की जानिब से कौमी शोहरत के इदारों जैसे नॉलेज पार्टनर्स, अकलियती कारीगर अपने हाथ से बने हुए मसनूआत की नुमाइश और फरोख्त कर सकेंगे। सामईन, अभी आप उस्ताद योजना पर ये मुख्तसर तकरीर समाअत फरमा रहे थे। सामईन, आज के उर्दू प्रोग्राम के आखिरी में पेश खिदमत है जनाब जलाल अहमद सामानी से उनका कलाम।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अमृता मालवीय के गाए गीत और भजन। ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में होंगे समाचार यानी 10 बजे से, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। ये यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे। इसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन के बीच हेग में व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
2: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। पीठ ने कहा कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग से भूमि आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिन बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा कि सोने और प्लेटिनम से बड़ी मड़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के लिए लिया गया है। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लिया रोली कॉर्निलो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। और आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। शाम 7:30 बजे से दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए लोक गीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी। कलाकार हैं संगीता मिश्रा और राम सखा यादव और साथी। सबसे पहले सुनते हैं संगीता मिश्रा के स्वर में ये देवी गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं लोक गीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी। अभी आपने सुने संगीता मिश्रा के स्वर में लोकगीत, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं राम सखा यादव और साथियों के स्वर में देवी गीत।

आप सुन रहे हैं लोक गीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी, और लीजिए आप सुनिए कार्यक्रम में आखिरी पेशकश राम सखा यादव और साथियों के स्वर में ये झूमर।

0: अभी आपने सुना लोक गीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी। आज के कलाकार थे संगीता मिश्रा और राम सखा यादव और साथी। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। बस थोड़ी ही देर में हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
4: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: पापा
7: लाइए 3000।
8: क्यों भाई?
7: मेरी पॉकेट मनी।
8: अरे अभी तो सिर्फ 2000 ही कैश है।
7: अरे पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
8: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1000 ले जाओ,
7: अपना मोबाइल लाओ,
8: ले ले।
9: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
10: हर लेन देन अब है आसान।
11: सुनो ना।
1: हाँ?
11: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
11: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
11: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
11: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
11: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
11: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
12: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
4: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
10: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहे।

0: 10 लाख की लॉटरी
1: मुझे।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
6: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
7: बन गया बजट?
6: हाँ,
7: 5,000 बच गए।
8: तो नई साड़ी ले ले।
6: ना, पिछले महीने तो ली थी।
7: एक और
6: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
7: बढ़िया, जाओ भाई।
4: RBI कहता है
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

कार्यक्रम फिल्म संगीत, आप सुन रहे हैं यस बॉस फिल्म का गाना। अलका याग्निक और अभिजीत की आवाजें हैं, शब्द रचना है जावेद अख्तर की, जतन ललित का संगीत है।

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
1: तो नई साड़ी ले ले।
2: ना,
1: पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
1: बढ़ी है, जाओ भाई।
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: 10 लाख की लॉटरी
1: मुझे।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: Hey guys, congratulations! आज तो पार्टी चाहिए।
6: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
7: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
5: पिज़्ज़ा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
7: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
5: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
7: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर से सावधान।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

मैंने प्यार किया इस फिल्म का गाना आप सुन रहे हैं एसपी बाल सुब्रमण्यम, कविता कृष्णमूर्ति, शैलेंद्र सिंह और उषा मंगेशकर की मिली जुली आवाजों में, असद भोपाली की शब्द रचना, राम लक्ष्मण का संगीत। और अब आपके लिए लेकर आए हैं हम आपके हैं कौन फिल्म का गाना। Two, one, let's start the fun.

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। अगले उद्घोषणा के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में बच्चे अपना कार्यक्रम सुनेंगे बाल संग। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है बच्चों का कार्यक्रम बाल संग।

0: बच्चों जय हिंद।
1: देखिए ना बच्चों, हर बार की तरह आपसे मिलने आ गई है आपकी अपनी दो दीदियां, मैं अनीता
2: और मैं रितिका,
1: आपके अपने प्यारे से प्रोग्राम बाल संग में।
2: दीदी, अब तो बच्चों की गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं और इन गर्मी की छुट्टियों का इंतजार बच्चों को साल भर से होता है और इन छुट्टियों के आते ही बच्चों के चेहरे खिल उठते हैं। स्कूल की पढ़ाई से थोड़ा आराम, खेलने कूदने का समय और दोस्तों के साथ मस्ती और परिवार के साथ खुशियां, यही तो है छुट्टियों की खास बात।
1: लेकिन बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि छुट्टियों का समय केवल खेल, मोबाइल

0: या फिर वीडियो गेम में बिताने के बजाय कुछ नया सीखने में भी लगाया जा सकता है।
1: बिल्कुल दीदी, गर्मी की छुट्टियां बच्चों में छिपी हुई प्रतिभा को पहचानने और अपनी हॉबी को निखारने का सबसे अच्छा समय होता है।
0: बिल्कुल दीदी, आपने सही कहा। क्योंकि हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई खास हुनर जरूर होता है। किसी को चित्र बनाना पसंद होता है, तो किसी को गाना, किसी को डांस करना, तो किसी को कहानी लिखना, और किसी को पेड़ पौधे लगाना बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों, यही सब आपकी ये सारी हॉबी होती है।
1: हाँ, लेकिन हॉबी जो है ना केवल समय बिताने का साधन नहीं है, बल्कि ये हमारे खुश रहने का, नई नई चीज़ों को सीखने का, हमारा आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करती हैं। मान लीजिए आपको रंगों से खेलना पसंद है, तो इन छुट्टियों में आप सुंदर चित्र बना सकते हैं, प्रकृति के दृश्य बना सकते हैं, या आपके मन में जो भी कल्पना है उसे आप कागज़ पर उतार दीजिए।
0: अगर आपको किताबें पढ़ना पसंद है, तो रोज कुछ नया, नई कहानी या ज्ञानवर्धक किताबों को समय दीजिए। अच्छी किताबें हमें ना बच्चों नई सीख और नई नई बातें बताती है, और हमारी सोचने की शक्ति को खूब बढ़ाती है।
1: और अगर आपको संगीत पसंद है तो गाना सीखिए, कोई वाद्य यंत्र बजाना सीखिए, या कोई धुन या किसी धुन को समझिए, या अपने अंदर पेड़ पौधों से जो प्यार है उसको व्यक्त करने के लिए छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाइए।
0: और उन्हें पानी भी तो दीजिए दीदी।
1: हाँ, उनकी देखभाल बहुत ज़रूरी है।
0: तो बच्चों, छुट्टियों में खेलना भी ज़रूरी है, क्योंकि खेल से शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन अगर खेल के साथ साथ अपनी हॉबी को भी समय दिया जाए, तो छुट्टियाँ जो हमारी है ना, वो बहुत ही यादगार बन सकती है।
1: हाँ, और साथ ही साथ जब मैं बात करती हूँ हॉबीज़ की, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चे अपनी रुचि का काम करते हैं तो उनका आत्मविश्वास और बढ़ता है, वो नई चीज़ें सीखते हैं, उनकी रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी भी डेवलप होती है। और जब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की, बहुत सारे नए ऐसे खेलों की, जब हम घर में होते हैं, बाहर निकल के मैदान में खेलते हैं, तो खेलों में भाग लेने वाले बच्चे शारीरिक रूप से मजबूत और सक्रिय बनते हैं। आजकल कई बच्चे छुट्टियों का अधिक समय मोबाइल फोन, टीवी और वीडियो गेम में बिताने लगे हैं। इससे समय तो नष्ट होता ही है, साथ ही स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए बच्चों को चाहिए कि वो स्क्रीन टाइम कम करें और कुछ नया सीखने में समय लगाएं, अपनी हॉबीज़ को डेवलप करने में समय लगाएं। साथ ही माता-पिता को भी चाहिए कि बच्चों की रुचियों को समझें और उन्हें प्रोत्साहित करें। बच्चों पर केवल पढ़ाई का दबाव न डालें, बल्कि उनकी प्रतिभा को पहचानें और उन्हें इस ओर आगे विकसित करें, प्रोत्साहन दें।
0: तो दीदी, कहते हैं ना कि एक छोटी सी आदत अपनी एक बनाइए। बच्चों, दिन का थोड़ा समय अपनी पसंदीदा हॉबी के लिए ज़रूर निकालें। इससे आपका मन खुश रहेगा और आप कुछ नया सीखते रहेंगे। बच्चों, याद रखिए कि ये जो छोटी सी हॉबी है ना आपकी, कल बड़ी आपकी पहचान बन सकती है।
1: हाँ,
0: तो
1: और
0: दीदी, छुट्टियों पर हम लोगों ने इतनी सारी बातें बच्चों से करी, तो अब समय क्या बनता है?
1: बिल्कुल, संगीत का, मनोरंजन का, गीत का।
0: हाँ, जो हमने वादा किया है बच्चों से कि गीत संगीत भी सुनाएंगे, तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।
2: इकड़ दुकड़ भंबे भो 80 90 पूरा 100 100 का लोटा तीतर मोटा

0: खोटा पैसा नहीं चलेगा। दीदी, आपको गाना अच्छा लगा?
1: बहुत अच्छा लगा।
0: मैं देख रही थी, आप गुनगुना रही थी, एकदम चुप होके सुन रही थी।
1: और हमारे साथी, जो नन्हे साथी हैं, जो बाल साथी हैं, मुझे तो पूरी उम्मीद है कि उनको भी पसंद आया होगा।
0: हाँ, जब हम दीदियों को अच्छा लगा तो बच्चों को तो दीदी खूब पसंद आया होगा।
1: बिल्कुल। तो अब हम अपने नए साथियों को या नन्हे साथियों को क्या बताने वाले हैं?
0: दीदी, हम लोग हर बार एक शब्द लेके आते हैं, एक हिंदी का और एक इंग्लिश का। तो शुरुआत करते हैं हिंदी के शब्द से। तो
1: अच्छा।
0: आज का शब्द जो है वो है अभिधा। अभिधा का अर्थ होता है कि हिंदी व्याकरण और साहित्य में शब्द की वह पहली और मुख्य शक्ति है जो किसी शब्द का सीधा और सामान्य प्रचलित अर्थ बताती है। जैसे
1: जैसे
0: जब कोई शब्द को सुनकर या पढ़कर जो अर्थ सीधे मन में आता हो उसे अभिधा या वाच्यार्थ कहते हैं।
1: अच्छा, यानी कि बिना किसी घुमाव फिराए फिराव के कोई बात
0: हाँ,
1: कही गई
0: समझ
1: है
0: जाए।
1: वो उसे कहा जाता है अभिधा। ठीक है, स्ट्रेट टू डायरेक्ट। अब जो दूसरा शब्द है वो है कडल, और कडल का मतलब है कि लाड़ प्यार करना, दुलार करना, नाज नखरे उठाना, सिर पर चढ़ाना। अब सिर पर चढ़ाने का मतलब ये नहीं कि उठा के अपने सिर पर बैठा
0: बहुत प्यार करना।
1: लिया बहुत ज़्यादा प्यार करना और सावधानी से देखभाल करना। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक माँ अपने बच्चे से करती है, एक बच्चा अपनी माँ से करता है। तो कडल का मतलब होता है ढेर सारा प्यार करना। तो ये तो हो गया हमारा आज का शब्द ज्ञान। तो जब हमने बात कर ली गर्मी की छुट्टियों की और हॉबीज की और शब्द ज्ञान पे, तो अब हम आज अपने स्टूडियो में जो हमारे नए साथी उपस्थित हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनका हम इंट्रोडक्शन कराते
0: क्योंकि
1: हैं।
0: पता है रितिका दीदी, वो कब से अपनी बारी का वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि मेरी बारी कब आएगी, ये दीदी लोग मुझसे कब बातें करेंगे, मेरे दोस्तों से कब मुझे रूबरू कराएंगे कि मैं भी अपने दोस्तों से कुछ बातें करूं, कुछ सुनाऊं, बहुत उत्सुक हो रहा है। तो
1: तो आप चलिए मिलवाते हैं। तो क्या नाम है आपका?
2: प्रनील,
1: प्रनील। पूरा नाम बताइए।
2: प्रनील सिंह।
1: अच्छा, और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं?
2: सेकंड में।
1: सेकंड में। तो प्रनील, आपको स्कूल जाना अच्छा लगता है?
2: हाँ,
1: हाँ। और कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है?
2: मैथ्स।
1: मैथ्स पसंद है। तो बहुत से, दीदी मैंने तो मतलब देखा है बहुत से बच्चों को मैथ्स से डर लगता है।
0: दीदी,
1: और
0: हमको पता है। सच बताऊं,
1: यार,
0: हम लड़कियों को डर लगता है मैथ से। कुछ कुछ लड़कियां
1: ओ
0: जो बहुत बहादुर होती हैं उनको नहीं डर लगता, लेकिन लड़के तो बिल्कुल बहादुर होते हैं, बहुत ज्यादा, वो डरते ही नहीं, जैसे हमारा ये प्रनील सिंह है।
1: अच्छा प्रनील, जब बात हो गई सब्जेक्ट की तो आपने बताया मैथ्स। और स्पोर्ट्स आपको पसंद है? खेलना पसंद है?
2: हाँ,
1: और कौन सा स्पोर्ट पसंद है सबसे ज्यादा?
2: क्रिकेट,
1: क्रिकेट। अच्छा, बैटिंग पसंद है, बॉलिंग पसंद है, फील्डिंग पसंद है?
2: तीनों।
1: तीनों। दैट मीन्स क्रिकेट बहुत अच्छी तरह से, बहुत मन से पसंद है। तो आज आप अपने साथियों को, जो भी साथी हमारा आज का ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या सुनाएंगे? हिंदी की कविता सुनाएंगे? चलिए तो सुनाइए।
2: हुआ सबेरा, चिड़िया बोली, बच्चों ने तब आंखें खोली, अच्छे बच्चे मंजन करते, मंजन करके कुल्ला करते, कुल्ला करके मुंह धोते, मुंह धो करके रोज नहाते, रोज नहा कर खाना खाते, खाना खाकर पढ़ने जाते।
1: देखिए दीदी, हम
0: और
1: लोग,
0: कुछ और कह रहे थे कि अभी पहले
1: हाँ
0: मुझसे बता रहे दीदी, मैं एक कुछ और सुनाऊंगा, राष्ट्रीय गीत सुनाऊंगा, कुछ मुझे
1: हाँ
0: याद
1: बिल्कुल
0: आ रहा है
2: नेशनल सॉन्ग।
0: मैं,
1: नेशनल
0: हाँ
1: सॉन्ग।
0: हाँ
1: चलिए
0: हाँ
1: सुनाइए।
2: वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुफलाम सुजलाम, मरे जय शीतलाम।

0: कितनी सुंदर, कितना सुंदर और कितने अच्छे से सुनाया। और जबकि वंदे मातरम तो इस वक्त कितना इस उसमें भी है कि हम इसके लिए भी अपने उतने ही सम्मान से और उतने ही उद्गार प्रकट करें जितना कि हम अपने सभी नेशनल सॉन्ग्स के लिए करते हैं।
1: बिल्कुल, कितनी गर्व की बात है,
0: बिल्कुल
1: छोटा सा बच्चा कितना अच्छा से सुना गया। अच्छा ये बताओ, तुम मुस्कुराते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है?
2: छोले भटूरे।
0: छोले भटूरे।
1: सब्जियां नहीं खाना?
2: सब्जी अच्छी लगती है।
1: कौन कौन सी?
2: कद्दू हो गए, भुजिया,
1: पालक हो गया, भिंडी हो गया।
2: भिंडी।
1: अच्छा पालक नहीं पसंद, तो पालक पनीर खाते हैं?
2: पनीर नहीं खाता।
0: ओह, तो हरी सब्जियां पसंद है कि नहीं है? अच्छा है। सिर्फ पनीर पसंद नहीं है।
1: पता है हरी सब्जियां खाने से पावर आता है, बहुत स्ट्रांग होते हैं हम।
0: तो अब हमें ये बताइए कि आपने कहा था कि मैं दो कविताएं सुनाऊंगा, तो दूसरी कविता कौन सी है?
2: कबूतर।
0: सुना दीजिए जल्दी से।
2: भोले भाले बहुत कबूतर, हमने पाले बहुत कबूतर, कुछ उजाले कुछ लाल, चलते छमछम चाल कबूतर, कुछ नीले कुछ बैंजनी कबूतर, पहनते हैं बैंजनी कबूतर, करते मुझको प्यार कबूतर, करते बड़ा दुलार कबूतर, आ उंगली पर झूम कबूतर, ले लेते मुझे मुँह चूम कबूतर।
0: अरे वाह, प्यार तो हम सब भी आपको बहुत करते हैं। और कबूतर, कितनी अच्छी कविता सुनाई है, और हमें तो पूरा यकीन है।
1: और अब क्या सुनाओगे?
2: हनुमान चालीसा।
1: आहा, तो सुनाओ।
2: जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसती हो लोग उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार, सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हात्रवज्य ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनिय साज, शंकर सुमत के केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजग वंदन, विद्यावान गुणियत चातुर, राम काज कर बेको अतु प्रभु सुनि चरि बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसी बसिया, सूक्ष्म रूप चरि सिया ही दिखावा, भीम रूप तड़ी रंग के जरावा।
1: कोई बात नहीं,
0: ये भी कितना अच्छा सुनाया। और कितनी बड़ी बात है कि इतने छोटे से बच्चे को इतने अच्छे तरीके से
1: याद
0: है, ऐसा याद है। तो हमें तो मतलब आपको कैसा लगा आज यहाँ आकर, और अपने और जो भी साथी आपको सुन रहे हैं उनसे बात करके?
2: बहुत अच्छा लगा,
0: बहुत अच्छा लगा। और जल्दी ही हम आपसे दोबारा भी मुलाकात करेंगे और दोबारा भी अपने कार्यक्रम में बुलाएंगे। और अपने साथियों को सुनवाइए तब तक ये गीत।

0: जा रहा था, नहीं आ रहा था, नहीं नहीं जा रहा था।
1: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ़ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात।

0: पढ़ता हुआ
1: बोलो हनुमान की जय जय जय बजरंग बली की जय हाँ बोलो हनुमान की जय जय हो बजरंग बली।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो छपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाल दाल, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ बचाओ, अरे भागो रे भागो।

0: दीदी गीत तो बहुत अच्छा था।
1: बिल्कुल, इतनी सुंदर सी कहानी सुन के तो और भी मजा आ गया।
0: और दीदी देखिए ना, एक बच्चा हमारे पास आया, एक नया मेहमान, वो भी सोच रहा दीदी मेरी बारी कब आएगी। तो
1: बिल्कुल,
0: भाई बिल्कुल देर नहीं करते, अब तुम्हारी बारी लेते हैं। बेटा तुम्हारा नाम क्या है?
2: आरुष।
0: आरुष। तो आज आप अपने दोस्तों को क्या सुनाने वाले हैं?
2: आज मैं एक रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी गई कहानी है जिसका नाम है अनमोल भेंट, मैं वो सुनाऊंगा।
0: ठीक है, सुनाइए।
2: रायचरर 12 वर्ष की आयु में अपने मालिक का बच्चा खिलाने पर नौकर हुआ था। वह नन्हा बच्चा जिसका नाम अनुकूल था, रायचरर की गोद से निकलकर स्कूल, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से सरकारी नौकरी पर लग गया। रायचरर अब भी बच्चा खिलाता था जो अनुकूल बाबू का पुत्र था। जब वह उसे चन्ना कहकर पुकारता तो उसका हृदय बहुत हर्षित होता। इन्हीं दिनों अनुकूल बाबू की बदली पद्मा नदी के किनारे एक जिले में हो गई। जाते समय उन्होंने कोलकाता से अपने बच्चे के लिए नए कपड़े, आभूषण और एक छोटी सुंदर सी गाड़ी भी खरीदी। वर्षा ऋतु थी। संध्या के समय बच्चे ने बाहर जाने का आग्रह किया। रायचरर उसे गाड़ी में बैठाकर बाहर ले आ गया। वहां उसने फूलों का एक गुच्छा देखा और उसको वो जिद करने लगा कि उसे वो चाहिए। विवश रायचरर बच्चे का मन रखने के लिए पानी में उतर गया और फूल तोड़ने लगा। बच्चे का ध्यान इस समय लहरा

बहती हुई नदी की ओर गया। वह गाड़ी से उतरा, हाथ में एक लकड़ी उठाई, वह नदी के तट पर पहुंचकर लहरों के साथ खेलने लगा। जब रायचरण फूल लेकर वापस आया तो देखा गाड़ी खाली पड़ी है। वह पागलों की भांति चारों ओर दौड़ने लगा। बच्चे की माँ को चिंता होने लगी तो उन्होंने नौकर भिजवाए रायचरण को ढूंढने के लिए। रायचरण जब उसे घर लेके आए तो रायचरण उन्हें देखकर उनके पैरों पर गिर पड़ा और कहा, और हर प्रश्न का उत्तर में वो बस यही कहता, मुझे कुछ नहीं मालूम। माँ के हृदय में ये शंका उत्पन्न होने लगी कि कहीं रायचरण ने बच्चे को निर्वासितों के समूह को तो नहीं बेच दिया। माँ ने क्रोध में उसे घर से बाहर निकाल दिया। रायचरण अपने गांव वापस आ गया। साल की समाप्ति पर उसके घर पुत्र का जन्म हुआ, किंतु पत्नी मर गई। उसकी विधवा बहन ने बच्चे का पालन पोषण किया। जब बच्चे की जवान खुली तो पिता को बाबा और बुआ को माँ इस ढंग से कहता था जिस ढंग से रायचरण का नन्हा मालिक बोलता था। उसने अपने बच्चे का नाम फलन रखा। धीरे धीरे समय बीतता गया, फलन पढ़ने योग्य हो गया। रायचरण अपनी जमीन बेचकर कोलकाता आ गया। वहाँ फलन का दाखिला स्कूल में करा दिया। फलन बहुत अव्ययी था, उसे बनाव श्रृंगार की बहुत चिंता रहती। रायचरण उससे प्रेम तो पिता की भांति करता, किंतु वर्ताव ऐसा जैसे मालिक नौकर के साथ करता है। उसके पैसे अब समाप्त हो चुके थे। फलन अपने जेब खर्च के लिए लड़ता रहता। रायचरण के मस्तिष्क में एक युक्ति आई। वह सीधे उस स्थान पर पहुंचा जहां अनुकूल बाबू जज के पद पर लगे थे। उन्हें कोई दूसरी संतान न थी। पत्नी एक बाजारू दवा बेचने वाले से दवाएं खरीद रही थी। वह रायचरण को देखकर चकित रह गई। अनुकूल बाबू को भी पुरानी यादें ताजा हो गईं और वे भी गुस्से से तमतमा गए। वह बोला, सरकार, आपका बच्चा को पद्मा नदी ने नहीं बल्कि मैंने चुराया है। उनकी पत्नी बोली,

0: ताजा हो गए और वे भी गुस्से से तमतमा गए। वह बोला, सरकार, आपका बच्चा को पद्मा नदी ने नहीं बल्कि मैंने चुराया है। उनकी पत्नी बोली, क्या वास्तव में मेरा बच्चा जिंदा है? कहाँ कहाँ है वो? वह बोला, मैं उसे परसों ले आऊँगा। 10 बजे के लगभग वो फलन का हाथ पकड़े हुए घर में प्रवेश करता है। उनकी पत्नी दीवानों की भांति फलन की ओर लपकी वो गले लगते हुए रोने लगी। अनुकुल बाबू के भी हृदय में पुत्र प्रेम जगा, किंतु थोड़ी देर में वह स्थान कानूनी भावना ने ले ली। वह प्रमाण मांगने लगे। रायचरण बोला, इसका उत्तर मैं क्या दूं सरकार? इस बात का विश्वास परमात्मा के सिवा और किसको हो सकता है? बच्चा मैंने ही चुराया था। अनुकुल बाबू कानूनी बुद्रस में बोले, रायचरण, तुम यहाँ अब नहीं रह सकते। पत्नी बोली, रहने दो, हमारा क्या नुकसान है? रायचरण भी पांव पकड़ते हुए बोला, सरकार, मुझे न निकालिए, आपका बच्चा मैंने नहीं चुराया बल्कि परमात्मा ने चुराया था, मेरा कोई अपराध नहीं है। तो फिर किसका अपराध है? अनुकुल बाबू ने बोला। रायचरण ने उत्तर दिया, मेरे भाग्य का। परंतु कोई शिक्षित व्यक्ति भाग्य का अस्तित्व स्वीकार नहीं कर सकता। फलन को जब ये पता चला कि वह एक धनी व्यक्ति का पुत्र है, तो उसे अपने पिता पर बहुत क्रोध आया कि वह इतने दिनों तक उसे कष्ट में क्यों रखे। वह अनुकुल बाबू से बोला, यदि आप इसे अपने साथ नहीं रखना चाहते तो इसकी थोड़ी सी पेंशन निर्धारित कर दीजिए। यह सुन रायचरण वहाँ से चला गया। महीना समाप्त होने पर रायचरण के गांव कुछ रुपए भेजे गए, किंतु मनी ऑर्डर वापस आ गया। गांव में अब इस नाम का कोई इंसान नहीं रहता।
1: आरुष, आपने तो कहानी बहुत अच्छी सुनाई। और ये बताइए, आप कुछ लिखते भी हैं?
0: हाँ, मैं एक पोएम या स्टोरी कभी समर वेकेशन अब आ रहा है तो मैं इसमें कभी खाली बैठा रहता हूँ तो लिख देता हूँ।
1: अच्छा, आपकी लिखने की हॉबी है। हाँ। और क्या पसंद है आपको?
0: मुझे स्पोर्ट्स खेलने में क्रिकेट और बास्केटबॉल पसंद है।
1: और आरुष, ये बताइए, हम सब बच्चों से पूछते हैं कि आप लोग खाने में नखरा तो नहीं करते, हर चीज़ खाते हैं?
0: हाँ, मैं हर चीज़ खा लेता हूँ।
1: जैसे?
0: जैसे अगर वो करेला हुआ या फिर परवल हुआ।
1: अच्छा,
0: मैं सब सब्जियाँ।
1: अच्छा, तो सब खा लेते हैं। तो बच्चों देखिए ना, आरुष सब कुछ खा लेते हैं, सारी सब्जियाँ खाते हैं, करेला भी खा लेते हैं। तो आप लोग भी खाइए और स्वस्थ रहिए। और रितिका दीदी, अब एक बच्चा और वेट कर रहा है अपनी बारी का, तो उसका भी स्वागत करते हैं अपने इस बाल संग कार्यक्रम में।
2: तो आप बताइए, आपका नाम क्या है?
3: मेरा नाम यशवी सिंह है और मैं क्लास 7 से हूँ।
2: 7th में पढ़ती हैं। और यशवी, आप मतलब आपका क्या फेवरेट सब्जेक्ट है? जैसे आपने पढ़ाई की बात की, तो पहले तो इसी पे बात करेंगे कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है।
3: मेरा फेवरेट सब्जेक्ट साइंस है, मैथ्स है, और जिसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मुझे इस पर और जानकारी लेनी चाहिए एज अ स्टूडेंट, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कुछ जो रहते हैं इलाहाबाद की जो हिस्ट्री है, वो भी बहुत मुझे पसंद रहती है। okay. तो मैं सारी किताबें भी पढ़ती हूँ।
2: चलिए, ये तो आपने बड़ा, हमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि बच्चों को देखिए कितनी जिज्ञासा है अपनी संस्कृति, अपने शहर, अपनी विरासत के
1: बारे में।
2: कितनी अच्छी बात है।
1: हाँ, इच्छा कितनी है। जी,
2: तो फिर मतलब जैसे आपने बोला साइंस और सारी चीज़ें, तो आप मतलब भविष्य में या एज अ करियर आपने क्या सोचा हुआ है? हालांकि जब तक करियर की बारी आती है तब तक हमारे बहुत सारे ऑप्शन चेंज होते रहते हैं, लेकिन अभी आपको कौन सा एक करियर ऑप्शन सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है या आप बनना चाहती हैं?
3: एक तो मुझे पेंटिंग और मुझे कलर्स से बहुत ज़्यादा जुड़ाव है बचपन से। तो मैंने अभी हालांकि 6-7 महीने पहले मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ और वीडियोस देखी थी जो बिल्डिंग्स रहती हैं, जो आर्किटेक्चर रहता है। आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बिल्डिंग्स बनने लगी हैं जो बहुत ही आकर्षित रहती हैं, और टूरिस्ट अट्रैक्शन जो हैं उनको भी बहुत ही आकर्षित लगती हैं। इसके लिए ही इंडिया इतनी डाइवर्स है और एकदम

0: अलग अलग चीज़ों से भरा हुआ है। इसको और आगे ले जाने के लिए शायद मैं एक आर्किटेक्चर या और कोई करियर को चुनना चाहूँगी जो कलर्स, पेंटिंग्स और हमारे भविष्य का जो इंडिया का है उसको आगे ले जाने में मदद करता हो।
1: कितनी सुंदर बात है। और देखिए, आज की तारीख में कितना डाइवर्सिटी आ चुकी है चीज़ों में और करियर ऑप्शन में भी, कि बताइए, मतलब आज आपके यशवी के माध्यम से हमारे बच्चे ये भी जान रहे हैं कि इस तरीके का, जो अगर आपकी पेंटिंग या आपकी आर्ट में रुचि है, तो आप इस तरीके से भी किसी एक ऑप्शन में आगे जा सकते हैं और उसे अपना माध्यम बना सकते हैं।
2: बिल्कुल, अपना मतलब अपना तो नाम होगा ही, अपने
1: जी
2: देश के बारे में भी सोचना
1: बिल्कुल।
2: बहुत बड़ी बात है इस छोटी सी उम्र में, है ना यशवी?
0: हाँ
1: तो
0: बिल्कुल।
1: अभी आप कौन कौन सी और पेंटिंग्स बनाती हैं?
0: मैं अभी जगन्नाथ जी पे मैं बहुत ही सारे मंदिर देख चुकी हूँ, तो अभी तक मैं टेक्सचर आर्ट जो है जिसको कहते हैं कि जो भी उबले हुए पेड़ पत्तियाँ हैं और भी किसी की खाल है उस सब से चीज़ों से, अगर आपके वो घर के आसपास है उससे आप एक सुंदर चित्र बना सकते हैं, उसको टेक्सचर आर्ट कहते
1: अरे
0: हैं।
1: वाह, ये तो आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक बताया हमारे सुनने वालों को। थोड़ा सा इसके बारे में और बताइए कि ये कैसे बनाई जाती है, मतलब जैसे किन-किन चीज़ों का प्रयोग करके और कैसे बनाया जाता है इसको।
0: इसमें पहली बात, हम लोग को अगर आपको कोई और टेक्सचर बनाने हैं, ताकि आप अगर इतने सारे पेड़ अपने आसपास देखते हैं, अगर आपको पेड़ का जो डिज़ाइन है, आपकी वो जो ऑब्जर्वेशन है, आप उसको एक आर्ट में बदलना चाहते हैं, पहली बात आप उस पेड़ को एकदम अच्छे से देखिए। उसके बाद आपको एक पेपर, टिश्यू पेपर जो भी है उसको पानी के साथ मिक्स कीजिए, फिर जब वो सूख जाए उसको ग्लू के साथ मिक्स कीजिए। फिर जैसे जैसे आपने एक पेड़ की चित्र बनाई थी और उसको आपने एक A4 शीट में कॉपी किया है, उसी चित्र के ऊपर जो वो टिश्यू जो ग्लू आपने मिक्स किया है वो उसके ऊपर लगाते जाइए। उसके बाद जब वो हो जाएगा, फिर आपकी ज़रूरी नहीं है कि अगर पेड़ आपने ब्राउन कलर का ही देखा है आप ब्राउन कलर का कर सकते हैं। हर बच्चे के पास अपनी अलग अलग पेंटिंग्स होती है, अपने अलग अलग कलर पैलेट्स होते हैं, आप किसी भी कलर का प्रयोग कर सकते हैं।
2: जो
0: अगर आप
2: आपका मन
0: चाह
2: करे।
0: हाँ जो अगर आपका मन करता है कि आप पेस्टल कलर का पेड़ बनाएं, अगर आपका मन करता है कि आप पेड़ बनाएं जो अपनी हॉबी, समर वोकेशन, इसको एकदम निर्भर करती है, इसको एकदम क्या कहते हैं कि इस पे मौजूदा की एक चित्र रहती हैं उसको करें, या अगर आप चाहते हैं कि हम एक सिंपल सा पेड़ बनाएं जो नेचर को एकदम क्या कहते हैं कि उसकी इमेजिनेटिव व्यू होती है उसको हम लोग लगाएं, तो आप वैसे कर सकते हैं। फिर उसमें अपने कलर्स जो हैं, अपने ब्रश लीजिए, एक अपना पैलेट चुनिए, उसमें वो उस कला से आप हम एकदम बारीकी बारीकी से वो कलर्स जो हैं उस पेंटिंग में लगाते जाएं, और जब आपका वो पेंटिंग तैयार हो जाए उसको लगभग 5 घंटे के लिए सूखने दे, फिर जब वो सूख जाएगा आपको छू के आपको पता चलेगा कि हाँ ये टेक्सचर आर्ट है, ये एक नॉर्मल चित्र नहीं है जो हम लोग बनाते हैं। उसमें आप लोग छू के हम लोग एहसास कर सकते हैं कि हाँ ये कुछ रियल चीज़ है जो हम लोग चित्रकला में भी महसूस
1: अच्छा, तो
0: कर
1: मतलब
0: सकते हैं।
1: कोई भी चीज़ जैसे जो छूने पे महसूस हो रही है वो टेक्सचर आर्ट के
0: हाँ
1: अंतर्गत आती है, मतलब
0: यस
1: इस तरीके से
2: हाँ
1: बनाई जा
2: वो
1: सकती है।
2: कागज़ पे ना मतलब छूने से खुरदुरा लगे, मतलब
0: हाँ
2: पता चले,
0: हाँ वो खुरदुरा
1: ओके।
0: लगे तो बहुत
1: तो
0: अच्छा।
1: इनमें मतलब जैसे ये सारे, बहुत सारे हम जानते हैं पेंटिंग के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, जैसे स्केचिंग भी होती है, वाटर आर्ट होती है, ऑयल पेंटिंग होती है, कलर्स की होती है, कैनवस पेंटिंग होती है। तो ये जो आप टेक्सचर आर्ट बता रहे हैं, इसमें कलर्स का कितना, मतलब कलर्स के मतलब अगर चाहें तो बिना कलर्स के भी बनाई जा सकती है?
0: नहीं, बिना कलर्स के अगर आप बनाएंगे तो उसमें जो आपने टिश्यू यूज़ किया है वो पूरा आपको कोई कलर नहीं करेगा, वो सिर्फ आपको वाइट वाइट पूरे पेजेस में दिखता
1: विजिबल
0: रहेगा।
1: होगा,
0: हाँ
1: तो
0: वो जो
1: कलर करने से उसको पूरा
0: हाँ
1: एक आइडेंटिफिकेशन मिलेगा
0: हाँ
1: उसे।
0: बिल्कुल।
1: हाँ ठीक है, पॉइंट को। अच्छा, तो ड्राइंग के साथ साथ और क्या करना पसंद है आपको?
0: ड्राइंग के साथ साथ मुझे गार्डनिंग बहुत पसंद है।
1: अच्छा, तो गार्डनिंग में क्या, मतलब कैसे, क्यों गार्डनिंग क्यों पसंद है?
0: क्योंकि पता नहीं, मैं बचपन से ही नेचर से बहुत अट्रैक्ट होती हूँ, मुझे ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है जो अगर मैं उसको टच करूँ मैं फील कर पाऊँ कि हाँ इसमें इस चीज़ को करने के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत भी नहीं लगेगी और इस चीज़ को करने के लिए मुझे बहुत ही हैप्पीनेस मुझे मिलेगी
1: तो किसके
0: इससे।
1: साथ गार्डनिंग करती, मतलब किसने सिखाई आपको गार्डनिंग, घर में कौन करता है आपके साथ गार्डनिंग?

0: एक्चुअली फादर हैं, उनने मुझे बताया था कि ये प्लांट जो भी है ऐसे साइंस और ऑब्जर्वेशन है उसमें प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन ये वो सीड्स ये सब बताया था उन लोग ने.
1: दैट मीन्स आपके फादर भी बहुत गार्डनिंग करते हैं और उन्हीं से आपने सीखा है.
0: गार्डनिंग नहीं करते हैं वो, उनको बहुत ही अच्छा लगता है वो उस पर बनाना. और मैंने साइंस में बहुत सारे चैप्टर्स भी पढ़े हैं इन्वायरमेंटलिस्ट के बारे में कि गार्डनिंग से ये होता है, हम लोग का जो नेचर है ग्लोबल वार्मिंग है ये सब हम लोग की कम होती है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है. इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें अपने जन्मदिन पे एक एक पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए.
1: कितनी सुंदर बात.
2: बहुत बहुत अच्छा. ये बताइए यशस्वी कि आपने कुछ कौन सा पौधा भी लगाया जिसकी बहुत केयर करते हो आप?
0: मैंने अभी ये लगाया था एक गुड़हल का फूल.
2: हाँ.
0: क्योंकि मेरी मम्मा ने कहा था अगर तुम्हें ये चीज़ पसंद है तो क्यों ना तुम्हें गुड़हल के फूल से स्टार्ट करो, क्योंकि अगर जब जब वो गुड़हल का फूल उगेगा तब वो मेरी मम्मा पूजा में इस्तेमाल करेंगी.
2: अच्छा, तो मतलब तुम्हें खुशी देगा और मम्मी पूजा कर लेंगी. तो दो काम हो गया और मन को तुम्हारे सुकून भी मिलेगा, खुशी भी मिलेगा. देखिए ना दीदी कितनी अच्छी बात है, एक छोटा सा बच्चा और इतनी बड़ी बातें करता है तो अच्छा लगता है.
1: ये सब कुछ मुझे ऐसा लगता है कि परिवार के माहौल पे और माता पिता द्वारा दिए गए संस्कारों पे बहुत निर्भर करता है कि वो बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, उनके परिवार में क्या माहौल है. जैसे आप देखिए ना, जैसे यशवी की माता जी ने बोला ये बात कि तुम गुड़हल का पेड़ लगाओ और जब उसका फूल होगा वो मैं पूजा में चढ़ाऊंगी. तो आप देखिए उन्होंने उस कनेक्टिविटी कितनी सुंदर बैठाई बच्चे के साथ कि उन्होंने कितनी सुंदर वजह दी बच्चे को, ठीक है ना, कि तुम्हें ये काम इस कारण से करना चाहिए. और जब इन्होंने बोला कि मतलब परिवार में भी देखिए वो माहौल है कि इनके फादर गार्डनिंग करते हैं तो उन्हें कितनी उसे कितनी टेक्निकल चीजें पता है गार्डनिंग से जुड़ी कि सॉइल की फर्टिलिटी और किस तरीके से किस पेड़ को लगाने के लिए कितनी केयर की जरूरत होती है और सारी चीजें.
2: बिल्कुल,
1: आपसे बात कर रहे हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है.
2: देखिए ना कितनी प्रेरणादायक बात है कि मम्मी ने कहा कि एक पेड़ लगाओ फूल मिलेगा, तो बच्चा भी खुश होके वो लगाया और कहीं ना कहीं वो नेचर की तरफ और जा रहा
1: बिल्कुल,
2: है.
1: बिल्कुल.
2: और वो सोच भी रहा है बिल्कुल वैसे कि हाँ ये पेड़ लगाए ये पौधा लगाए हमारा जो वातावरण है वो बहुत अच्छा हो
1: बिल्कुल
2: जाए.
1: अच्छा यशवी, जैसे कि आपने हम आज जो हमारा पहला सेगमेंट था कि छुट्टियों में मस्तियाँ तो ज़रूरी हैं, पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी हॉबीज़ पे काम करना ज़रूरी. तो आपके स्कूल में भी छुट्टियाँ हो गई होंगी समर वेकेशन. तो आपने क्या सोचा, अपने हॉबी से जुड़ा क्या सोचा है? वो तो ठीक है कि होमवर्क मिला होगा, पढ़ाई है उसका अपना एक शेड्यूल रूटीन है, लेकिन अपनी हॉबी से जुड़ा क्या क्या करने का सोचा है आपने इन छुट्टियों में?
0: जब हम किसी प्रोग्राम में जाते हैं आजकल तो इंग्लिश का जो वातावरण है बहुत ज़्यादा हो चुका है. इसके लिए मैंने सोचा कि जो मेरी हिंदी और इंग्लिश की वोकैबुलरी है उसमें जो लिमिटेड वर्ड्स हैं उसको मैं और बढ़ाऊं ताकि जितने जितने तरह तरह के वर्ड्स हैं वो उसमें एक सेंटेंस में अप्लाई कर सकूं और जब लोग सुने उनको भी लगे कि हाँ ये होती है वोकैबुलरी, इसमें अलग अलग वर्ड्स हों, अलग अलग इमेजिनेटिव व्यू हों, कुछ भी बैकशी ना लगे.
1: वेरी नाइस, वेरी गुड. तो ये आपको मतलब ये आपको कैसे फील हुआ? आपने कभी मतलब जैसे होता है ना कि जब आप किसी को बात करते हुए सुनते हैं तो आपको लगता है कि नहीं देखो ये कितने अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, इनके पास कितने सारे शब्द हैं, कितने अच्छे उच्चारण है, प्रोनंसिएशन है, डिक्शन कितना कम्प्लीट है. तो आप मतलब किसी से आपको ये प्रेरणा मिली किसी को देख के?
0: हाँ, मैंने सेलिब्रिटीज को देखा है, एक्टर्स को देखा है, उनके पास ऐसे ऐसे वर्ड्स रहते हैं अगर वो किसी इंटरव्यू में जाते हैं उनसे पूछे जाते हैं तो वो इन वर्ड्स को प्रयोग करते हैं जो कि एज ए स्टूडेंट बहुत ही अच्छी बात है इन वर्ड्स और वोकैबुलरीज को कैप्चर करना.
1: अच्छा, तो ये तो हो गए आपकी वोकैब की बात कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वोकैबुलरी पे आप अपनी काम करना चाहती हैं और साथ ही अपनी पेंटिंग को भी बहुत अच्छे से उसका प्रैक्टिस करेंगे मुझे ऐसा लगता है. साथ ही जो टेक्सचर आर्ट का आपने बोला वो और जो बिल्डिंग्स और आपने उसके लिए बोला उसकी मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए भी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती होगी.
0: नहीं, वो तो अभी करियर का मैंने ऐसे सोचा था. बिल्डिंग्स और आर्ट में क्या है कि अगर आपकी आर्ट अच्छी है तो आपके जो मन में एक ख्याल आ जाता है कि हाँ या इस तरह का डिज़ाइन होना चाहिए वो आप एक पेपर पे रिप्रेजेंट कर सको उसको आर्ट कहते हैं.
1: ओके, आप अपने थॉट्स को आप अपनी क्रिएटिविटी को किसी जगह पे मतलब अप्लाई कर सकें, किसी जगह पे ऑन पेपर एक्सप्लेन कर सकें. तो आज हमने बात की प्रनील से जिन्होंने बताया हमें, जिन्होंने अच्छी कविताएं सुनाई और जिन्होंने वंदे मातरम

0: था सुनाया दीदी।
1: और ये भी बताया कि उन्हें कौन सा सब्जेक्ट और खेल पसंद है। साथ ही आरुष ने हमें इतनी सुंदर
0: सी कहानी
1: सुनाई
0: सुनाई
1: और बच्चों को इतनी प्रेरणादायक बात बताई, और यशवी से हमने पेंटिंग्स, प्रकृति, और कि ये जाना कि कितना जरूरी है अपनी वोकैब पे कमांड होना और अच्छे शब्दों का सीखना।
0: बिल्कुल दीदी, तो अगली बार हम नए अपने प्रोग्राम में बच्चों से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों,
2: जय हिंद।

0: अभी बच्चे अपना कार्यक्रम सुन रहे थे बाल संग। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 12 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: ये आकाशवाणी है। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार बढ़ाने, हरित प्रौद्योगिकी अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन और जनसंपर्क में सहयोग के नए रास्ते तलाशेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी। श्री मोदी की इस यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। इससे पहले कल हेग में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के बीच वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया। उन्होंने उभरते क्षेत्रों में अधिक सहयोग का आह्वान किया।
2: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
1: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 80.09 रुपए, गाजियाबाद और नोएडा में 88.70 रुपए और गुरुग्राम में 85.12 रुपए हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी आईजीएल ने सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। यह घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी, रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। आंध्र प्रदेश में एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत युवा संगम का 6ठा चरण कल से शुरू हो गया। तिरुपति के जिलाधिकारी डॉक्टर S. वेंकटेश्वर ने जिले

0: concern. WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus announced the decision after more than 300 suspected cases and 88 deaths were reported. WHO in a social media post clarified the outbreak does not meet the criteria for a pandemic emergency like COVID-19 and advised against closing international borders. World Hypertension Day is being observed today globally. The theme for this year is Controlling Hypertension Together. Check your blood pressure regularly. Defeat the silent killer. The India Meteorological Department said that the southwest monsoon has advanced into some parts of Arabian Sea, Bay of Bengal, many parts of Andaman Sea and Andaman Islands and entire Nicobar Islands. According to the IMD, southwest monsoon is likely to set in over Kerala on 26th of this month. Meanwhile, the weather agency has predicted heat wave conditions in Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh and Vidarbha tomorrow. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 295.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:10 और 33 सेकंड हुए हैं। ये समय है आपको जानकारी देने का आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। तो प्रस्तुत है रूपरेखा आज के शेष कार्यक्रमों की। आज रात 10 बजे सुनेगा रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम। इसे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। 12:15 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनाएंगे पंडित अनोखे लाल का तबला वादन। आपकी फ़ोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीत आप तक पहुंचाएंगे हेलो अनुरोध कार्यक्रम के साथ 1:15 पर। लोकगीतों का कार्यक्रम होगा 2:30 पर। आज जिन कलाकारों को आप सुनेंगे वो हैं सूर्यप्रकाश पटेल और साथी, प्रीति मिश्रा, नन्हेलाल बिंद और साथी।

हमारी दूसरी सभा शुरू होगी शाम 5 बजे। बच्चे सुनेंगे बाल गोपाल कार्यक्रम। जी हाँ, 5 बजे ग्रामीण बच्चों का कार्यक्रम होगा बाल गोपाल। बच्चे सुनेंगे अंजू यादव की वार्ता पर्यावरण और हमारे वन्य जीव। युवा श्रोताओं के लिए युवाणी कार्यक्रम में 5:15 पर आज का आकर्षण होगा उधम सिंह पर केंद्रित प्रेरणापुंज और चर्चा, जिसका विषय है समाज के सशक्त विकास में आकाशवाणी की सशक्त भूमिका। 6:30 पर ग्रामीण भाइयों के लिए कार्यक्रम होगा पंचायत घर। आज की प्रस्तुति होगी मिफ्ताहुद्दीन सैफी की वार्ता ग्राम्य अर्थव्यवस्था में सहकारी समितियों का योगदान और तेरसलाल और साथियों के स्वर में लोकगीत। 7:31 पर हम आपको सुनाएंगे अभिनेता फैजल खान से अभिनव प्रज्ञ पांडे की विशेष बातचीत आकाशवाणी के 90 साल और यादों का कारवां। आपके पत्रों और संदेशों का कार्यक्रम चिट्ठी आई है आप सुन सकते हैं 8:00। आज इतवार है, ये कार्यक्रम होगा 8:30 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे रेणुका जोशी की लिखी झलकी स्टोर रूम का चोर। गजलों पर आधारित कहकशा कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:30 पर।

हम अपने श्रोताओं को एक बार फिर याद दिला दें, आज रात 8 बजे सुनना न भूलेगा अपने संदेशों और अपने पत्रों के उत्तर का कार्यक्रम चिट्ठी आई है। प्रस्तुत करेंगी वंदना राठौर और कार्यक्रम प्रमुख नेहा गुप्ता।

7:31 मिनट पर विशेष बातचीत सुनिएगा, अभिनेता फैजल खान से अभिनय प्रज्ञा पांडे की बातचीत। विषय होगा आकाशवाणी के 90 साल और यादों का कारवां। ये थी जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं तबला वादन। कलाकार हैं पंडित अनोखेलाल। तो आइए सुनते हैं तबले पर तीन ताल। कलाकार हैं पंडित अनोखेलाल।

आप सुन रहे थे तीन ताल में तबला वादन, कलाकार थे पंडित अनोखे लाल। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

नमस्कार श्रोताओं, मैं शिप्रा श्रीवास्तव हाजिर हूँ लेकर आपके लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम प्यारे प्यारे गीत और सुंदर सुंदर बातें। सबसे पहले सुनिए ये गीत।

जी हाँ श्रोताओं, हमने आपसे कहा था कि गीतों के माध्यम से हम ढेर सारी बातें करेंगे आपसे। तो भाई, जुल्मी संग आँख रड़ी, ये गीत आपने सुना, उम्मीद है पसंद भी आए होगा। हमारी इंद्रियाँ, कान, आँख, नाक, जीभ, त्वचा, ये सारे जुड़ करके मन से कुछ बातें निकालते हैं। जी हाँ, आँखें अगर कुछ अच्छा दिखती हैं तो मन खुश हो जाता है। जीवा में अगर कुछ अच्छा सा आता है तो हमारा मन खुश हो जाता है। और अगर हम गर्मी में कुछ ठंडा छू लेते हैं तो बहुत ही अच्छा सा एहसास होता है। यानी मन हमारा अगर खुश है तो हम खुश हैं। और ये मन ना हमें बहुत जल्दी जहाँ हमारा मन होता है वहाँ पहुँचा भी देता है। और अगर हम शरीर से ना पहुँच पाए तो मन से तो पहुँच ही जाते हैं। गर्मी बहुत है और अपना ख्याल रखने के लिए आपका मन करता होगा कि कुछ ठंडा ठंडा पिए। और उस ठंडे की जब एहसास जबान को होता है तो क्या ही बात है। और ये राहत, ये सुकून मन को जब मिलता है तो चैन आ जाता है। कहते हैं कि मन है मेरा बड़ा चंचल, चंचल है मेरा मन फिर भी शून्य समान, रुकता नहीं कभी, शांत नहीं रहने देता कभी, कुछ शरारत करने को करता है मेरा मन, चंचल है मेरा मन, कभी रचता है ऐसे खेल, जुगनू को पकड़ने सा है मेल, गुड़ की तरह मीठा है मेरा मन, नींबू की तरह खट्टा भी है मेरा मन, पर्वत की तरह स्थिर है मेरा मन तो चंद्रमा की तरह शीतल भी है मेरा मन, फूल की तरह कोमल है मेरा मन, चंचल है मेरा मन। जी हाँ, मन की चंचलता के तो कहने ही क्या। जो करने का कर्तव्य होता है वो करने का मन नहीं होता, और जो करने का मन होता है वो करने का समय नहीं होता है। तो कुल मिला के जो बात निकल रही है वो ये है कि मन को कंट्रोल करिए, मन के दास मत बनिए। और अगर मन करता है कुछ अच्छा सा चाइनीज़ और जंक फूड खाने का तो भाई दिमाग का इस्तेमाल करिए, जंक फूड मत खाइए। और इस मौसम में तो कतई ही नहीं, क्योंकि ये जो जंक फूड है ना, ये आपके सेहत के लिए इस वक्त बहुत ही हानिकारक है। हेल्दी खाइए, फल खाइए, ठंडा पीजिए, पानी खूब पीजिए, अपने को एकदम तरोताज़ा रखने के लिए इन चीज़ों का सेवन ज़रूर करिए। और सुनते रहिए ये शीतल प्यारे सुंदर नगमे।

जी हाँ, मन से बड़ा दोस्त कोई नहीं हो सकता हमारा, और ये मन ही है जो हमें सही राह पर भी ले जा सकता है और हमें गलत मोड़ पर भी ले जा सकता है। आज है 17 मई, मन की बात हम इतनी कर रहे हैं, तो मन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों आज है 17 मई, और 17 मई

को हम मनाते हैं उच्च रक्तचाप दिवस। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस का मनाने का जो मूल उद्देश्य था वो था कि लोगों को जागरूक करना। उच्च रक्तचाप एक साइलेंट किलर कहा जाता है और इसके कारणों को समझना बहुत ही ज़रूरी है, और ये जुड़ा है मन से। मन और मस्तिष्क को आप बिल्कुल कंट्रोल में रखें। तापमान बाहर ज़्यादा है लेकिन अपने अंदर के तापमान को अपने कंट्रोल में करना आपके ही बस की बात है और किसी के बस की बात नहीं है। अगर आप चाह लेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल भी हाई नहीं हो सकता है। करना क्या है आपको? आपको करना ये है कि आपको अपना ब्लड प्रेशर तो सबसे पहले नियमित रूप से चेक करवाना है, और अपने डाइट में हरी सब्जियां, ताज़े फल और कम नमक शामिल करना है। ऊपर से किसी भी चीज़ में नमक ना लें। अपना जो बैलेंस है वो बना के रखें। अगर आप सैलड यूज़ कर रहे हैं, अगर

जुड़ा है मन से। मन और मस्तिष्क को आप बिल्कुल कंट्रोल में रखें। तापमान बाहर ज़्यादा है लेकिन अपने अंदर के तापमान को अपने कंट्रोल में करना आपकी ही बस की बात है और किसी के बस की बात नहीं है। अगर आप चाह लेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल भी हाई नहीं हो सकता है। करना क्या है आपको? आपको करना ये है कि आपको अपना ब्लड प्रेशर तो सबसे पहले नियमित रूप से चेक करवाना है और अपने डाइट में हरी सब्जियां, ताज़े फल और कम नमक शामिल करना है। ऊपर से किसी भी चीज़ में नमक ना लें। अपना जो बैलेंस है वो बना के रखें। अगर आप सैलड यूज़ कर रहे हैं, अगर आप रायता यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कम नमक का इस्तेमाल करें। अगर सब्ज़ी में, दाल में या और जो डिशेज़ आपकी प्लेट में हैं उनमें आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट आप ऊपर से जो चीज़ें खा रहे हैं उसमें नमक बिल्कुल भी ना डालें। एक्सरसाइज ज़रूर करें। हल्की फुल्की एक्सरसाइज आजकल आप करेंगे तो आपका जो बॉडी का ब्लड प्रेशर है वो बिल्कुल नियमित रहेगा और बैलेंस रहेगा। इसके लिए बस आप अपने मन को कंट्रोल करिए। अपने मन को अगर कभी गुस्सा आता है या कोई आपके ऊपर गुस्सा करता है तो एक ग्लास ठंडा पानी पी लीजिए और उस जगह से हट जाइए जहाँ पर आपके गुस्से का कारण बना हुआ है। और तीसरी चीज़ ये करिए, खूब मीठा सा गीत सुनिए। तो आइए आपको सुनाते हैं ये प्यारा सा गीत।

को झटके, पैरों को झटके और सिर को थोड़ा सा मूव करें ताकि आपके अंदर एनर्जी भी आ जाए और जो ब्लड प्रेशर की बीमारी है वो झटक के बाहर निकल जाए। तो भाई गाना तो बहुत अच्छा था, और जो बात हम कर रहे थे उच्च रक्तचाप दिवस की, तो अगर आपका रक्तचाप थोड़ा सा भी ज़्यादा बढ़ा है तो आप पहले तो इसको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करिए, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको नज़र आ रहे हैं तो आप इस पर काम ज़रूर करिए। अगर आपके सीने में दर्द हो रहा है, अगर आपके सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, पीठ में दर्द हो रहा है, या फिर सुन्नता आ रही है शरीर में, लेजीनेस आ रही है, वीकनेस आ रही है, और अगर आपके विजन में कोई चेंजेस आपको नज़र आ रहे हैं या बोलने में कोई तकलीफ़ हो रही है, तो निश्चित रूप से आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। समय पर अगर आप स्टेप सही उठाएंगे तो निश्चित रूप से आप अपनी और अपने परिवार वालों की मुश्किलों को कम कर सकते हैं, और खुश रहने से जितना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है उतना ज़्यादा दवाइयों से नहीं। तो कोशिश रखिए कि अपने को भी खुश रखिए, अपने आसपास के वातावरण को प्रसन्नचित करिए और अपने मिलने वालों को भी खुश करने की कोई ना कोई कोशिश ज़रूर करिए।

0: मैं खुशी खुशी उसे ये दिल दे दूंगा, कसम खा रहा हूँ कि दाम भी न दूंगा, मगर ये कहूँगा, मगर ये कहूँगा।
1: क्या?
0: यही है, यही है, यही तो है वो।

वरना अपना नाम नहीं है बन्ने खां भोपाली। मुन्ने मियां बधाई बनो खूब होनहार, दोनों जहां की नेमतें हों आप पे निसार। हाँ बचपन हो खुशगवार, जवानी सदा बहार, अल्लाह करे ये दिन यूं ही

तो पढ़ना हमेशा आगे बढ़ना, सच का दामन ना छूटे चाहे ये दुनिया रूठे, काम को अच्छे करना सिर्फ अल्लाह से डरना, सभी को गले लगाना मोहब्बत।

यही संदेश दे रहा है आज का दिन, यानी 17 मई का दिन, क्योंकि आज से शुरू हो रहा है अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास। जो कोई ना स्वीकार करे उसे आप स्वीकार करिए, आप दूसरों के काम आइए और आपके लिए कोई ना कोई खड़ा होगा, इसकी चिंता बिल्कुल मत करिए। आपके लिए कोई ना कोई ज़रूर खड़ा होगा, आपके अपनों के लिए कोई ना कोई ज़रूर खड़ा होगा, क्योंकि आप अपने लिए प्रार्थना कम दूसरों के लिए करते हैं तो निश्चित रूप से वो प्रार्थना सुनी जाती है और उसका जवाब भी आता है। कार्यक्रम के अंत में ये एक और खूबसूरत सा नगमा, एंजॉय।

इस खूबसूरत से गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। शिप्रा श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। एक बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप दिल्ली से प्रसारित समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर श्री मोदी स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
1: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है। इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, AI, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: इससे पहले कल हेग में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के बीच वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। भारत ने कहा है कि हॉर्मुस जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेमी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को उचित नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने यह बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक चलेगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से CNG की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी IGL ने CNG की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार ये फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। टेनिस में यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना ने

इटालियन ओपन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। सातवीं वरीयता प्राप्त एलिना ने फाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को हराया। आज इटली के यानिक सिनर का मुकाबला नॉर्वे के कैस्पर रूट से होगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लिया रूली कार्नेंडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: many parts of Andaman Sea and Andaman Islands and entire Nicobar Islands. According to the IMD, southwest monsoon is likely to set in over Kerala on 26th of this month. Meanwhile, the weather agency has predicted heat wave conditions in Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh and Vidarbha tomorrow. In IPL cricket, Punjab Kings will take on Royal Challengers Bengaluru in Dharamshala at 3:30 p.m. today. In another match, Delhi Capitals will face Rajasthan Royals in Delhi at 7:30 p.m. In badminton, world number 4 Indian pair Sattvic Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty went down 12-21, 23-25 to Indonesia's Leo Roli, Carnado and Daniel Martin. And that is the end of this news bulletin.
1: उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के तहत मुनक़िद एक प्रोग्राम में शामिल हुए, जहां वजीर आला ने अपने खिताब में कहा,
2: केंद्रीय संगठन के द्वारा दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल जिसने अपनी स्थापना काल के से लेकर के अब तक 50 वर्ष से भी कम समय में दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में देश के अंदर केंद्र के साथ साथ 22 राज्यों में अपनी सरकार अपने दम पर अपनी विचारधारा को प्रभावी ढंग से लागू करने की जिस अभियान को आगे बढ़ाया है, उस राजनीतिक दल के गोरखपुर जनपद के विशेष प्रशिक्षण शिविर के अवसर पर मैं आप सबका इस पूरे आयोजन के प्रति मैं जिला इकाई को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं।
1: इससे कबल वजीर आला ने आज सुबह गोरखनाथ मंदिर में मुनक़िद जनता दर्शन प्रोग्राम में मुख्तलिफ अज़ला से आए लोगों से मुलाकात कर उनकी दिक्कतें सुनी। इस दौरान वजीर आला ने अफसरान को अहकाम दिए कि वो पूरी हसासियत से ये यकीनी करें कि बगैर किसी तफरीक के सबको इंसाफ मिले और जल्द ही उनकी दिक्कतों का तस्फिया किया जाए। अंशकालिक अनुदेशकों के बढ़े हुए एजाजिया तकसीम को लेकर आज पूरी रियासत में उनके एजाज में प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। लखनऊ के लोक भवन में मुनक़िद रियासती सतही जलसे में वजीर आला योगी आदित्यनाथ अंशकालिक अनुदेशकों के एजाज में इजाफा शुदा एजाजिया तकसीम प्रोग्राम का इनेकाद करेंगे। वाज रहे कि इनका एजाजिया 9,000 रूपये से बढ़ाकर 17,000 रूपये फी माह करने का फैसला किया गया है। इजाफा शुदा एजाजिया 1 अप्रैल से नाफिज किया गया है। रियासत में जारी डिजिटल मर्दमशुमारी के पहले मरहले के तहत खुदशुमारी का अमल 7 मई से जारी है। 21 मई तक चलने वाले इस अमल में वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी कल गोरखपुर में खुदशुमारी का डिजिटल फॉर्म भरा। वजीर आला ने रियासती आवाम से इस अमल में शराकतदारी दर्ज कराने की अपील करते हुए कहा कि यह मुल्क की पहली मुकम्मल तौर से डिजिटल मर्दमशुमारी है। इसका खास मकसद सही एदादोशुमार जुटाकर मुल्क की तरक्की और बहबूदकारी स्कीमों की आउटलाइन तैयार करना है। मरकजी सानवी तालीम बोर्ड CBSE ने तालीमी सेशन 2025-26 के दर्जा 12 के बोर्ड इम्तिहान के नतायज के ऐलान होने के बाद तुलबा व तालिबात के लिए मुख्तलिफ सहूलियात का ऐलान किया है। बोर्ड ने इस मरतबा तशखीस के अमल को और ज्यादा सही और शफाफ बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम का इस्तेमाल किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय 700 रुपए है।
1: CBSE ने 1 जुलाई से दर्जा 9 के तुलबा के लिए 3 जुबानों की पढ़ाई लाजमी करार दी है। बोर्ड ने एक बयान में कहा है कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 और कौमी स्कूल तालीमी निसाब 2023 के मुताबिक इन 3 जुबानों में से कम 2 हिंदुस्तानी ओरिजिन की जुबानें होनी चाहिए। CBSE ने वाजे किया है कि दर्जा 10वीं में तीसरी जुबान R3 के लिए कोई बोर्ड इम्तिहान नहीं होगा और R3 के लिए मुकम्मल तशखीस पूरी तरह से स्कूल पर मबनी और इंटरनल होगी। दिल्ली NCR की तरह उत्तर प्रदेश में भी SCR तैयार हो रहा है। UPSCR के डेवलपमेंट प्लान के तहत कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, अयोध्या के दरमियान नमो भारत कॉरिडोर बनाने और रैपिड रेल चलाने की तैयारी है। इस प्रोजेक्ट का वसी खाका लखनऊ तरक्याती अथॉरिटी में मुशीर एजेंसी ने दिया है। इसमें नयागंज कानपुर, उन्नाव बशीरतपुर, नवाबगंज बंथरा, अमौसी लखनऊ

0: चांद गोल्फ सिटी, जुग्गौर, बरेल, सफदरगंज, भिटरिया और अयोध्या में स्टेशन की तजावीज है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर तकरीबन 32,000 करोड़ रुपए खर्च होने का इम्कान है। एनसीआरटीसी और उत्तर प्रदेश हुकूमत मिलकर मुश्तरका तौर से इस पर आगे काम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्याल बांटेंगे। यह इस माहाना रेडियो प्रोग्राम की 134वीं कड़ी होगी। और महकमे मौसमियात के कयास के मुताबिक मानसून 18 जून को गोरखपुर के रास्ते रियासत में दस्तक देगा। इस साल मानसूनी सीजन में मामूल से कम बारिश के इम्कान है। महकमे आबपाशी और आबी वसायल की जानिब से रियासत के सभी 18 डिवीजनों में 31 मई तक सैलाब कंट्रोल रूम कायम करने के अहकाम दिए गए हैं। सैलाब और मुतासर इलाकों की निगरानी के लिए ये कंट्रोल रूम 15 जून से 15 अक्टूबर तक 24 घंटे अलर्ट रहेंगे। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश किया जाएगा।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अब प्रस्तुत है आपकी फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो अनुरोध। प्रस्तुत कर रही हैं मधु कुमार।

0: हेलो अनुरोध कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना नाम बता दीजिए।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मेरा अंतिया सारजा प्रयाग साथ कर रहा हूँ
0: जी। नितेश आर्या जी, बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: कैसे हैं आप?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? इस गर्मी में अपना ध्यान तो रख रहे हैं
1: जी। बहुत ही अपना ध्यान रखते हैं आप, जो आपके पसंद में शायरी करते हैं बहुत अच्छी करते हैं, और हेलो फरमाइश बहुत अच्छा प्रोग्राम।
0: बहुत बहुत धन्यवाद नितेश जी, बस आप लोग अपना ध्यान रखते रहिए इस जोरदार गर्मी में, उसको जवाब दीजिए, खूब ढेर सारा पानी पीते रहिए, सर को ढक के चलिए, और जब जरूरत हो तभी घर से निकलिए, वरना झुलस के रह जाएंगे आप लोग।
1: सही कहा आपने।
0: तो बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म के नाम है दिल तो पागल है, गाने बोल चांद ने कुछ कहा रात में कुछ सुना।
0: जी आपको सुनवाने जा रहे हैं दिल तो पागल है फिल्म का ये गाना, लीजिए सुनिए।

0: हेलो अनुरोध कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना नाम बता दीजिए।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्कार
1: मैम रोशनी बोल रहे हैं, गाँव फुकिया जिला
0: जी।
1: प्रतापगढ़
0: जी
1: से।
0: रोशनी जी, कौन सा गीत सुनेंगी
1: मैम? फिल्म का नाम है चलो इश्क लड़ाएं, और गाने के बोल रहे तो उसको ही दुल्हन बनाऊंगा वरना कंवारा मर जाऊंगा।
0: जी? ये गोविंदा की फिल्म थी
1: जी मैम,
0: तो
1: अच्छा है
0: चलिए।
1: गाना।
0: हाँ, तो आपकी इस पसंद को पूरा करते हुए सुनवाते हैं ये गीत, लीजिए सुनिए।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्कार।

0: हेलो अनुरोध कार्यक्रम, अपना नाम बताइए।
1: पोस्ट हटिया, तहसील हटिया, थाना हटिया, गांव मगरा, जिला प्रयागराज से प्रेमचंद यादव बोल रहे हैं मैम।
0: जी प्रेमचंद यादव जी, स्वागत है इस कार्यक्रम में। कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है राजपूत और गाने के बोल हैं

0: हेलो अनुरोध कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से मीडियम वेव 292.4 मीटर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। अपना नाम बता दीजिए।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार जी।
1: विकास बोल रहे हैं प्रयागराज से, प्रयागराज
0: जी। विकास जी हमारे साथ हैं, तो विकास जी कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है गिरफ्तार
0: जी,
1: और गाने का बोले धूप में निकला न करो। अभी तक देखिए धूप ही बहुत।
0: अरे पूछिए ना, धूप का तो वो आलम है कि क्या कहा जाए। बस ये है कि हम सबको अपना बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, और जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले, बहुत जरूरी हो तभी।
1: जी जी जी जी जी।
0: तो अपना ध्यान रखिए, खूब पानी पीजिए, पना पीजिए, बेल के शरबत पीजिए, और अपने को स्वस्थ रखिए। और
1: हाँ जी, हाँ हाँ।
0: तो आप गाना भी कुछ ऐसा ही पसंद किया है, धूप में निकला न करो रूप की रानी।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो चलिए, गिरफ्तार फिल्म का ये गाना विकास जी आपकी पसंद का हम सुनवाते हैं, लीजिए सुनिए।
1: जी धन्यवाद।

0: अनुरोध कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: प्रभात तिवारी जी, रसूलपुर गुलराहा, रसूली बाजार, पोस्ट रामनगर, भोजपुर, बाबा घुसनाथ धाम, जनपद प्रतापगढ़ से प्रभाकर तिवारी बोल रहे हैं मैडम जी।
0: जी प्रभाकर जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: मैडम जी फिल्म का नाम है नाम।
0: नाम
1: गीत के बोल हैं चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है।
0: पंकज उदास की आवाज में ये गाना है।
1: हाँ मैडम जी, एक दो लोगों को नाम लेना चाहते हैं।
0: हाँ बिल्कुल ले लीजिए।
1: जैसे विक्रमपट्टी के राज नारायण सिंह हैं
0: जी,
1: और रामनगर भोजपुर के मुकेश सिंह हैं, और गोपनी कुंडा प्रतापगढ़ के राजेंद्र कुमार हैं।
0: तो आपको नाम फिल्म का ये गीत सुनवा दिया जाए।
1: हाँ मैडम जी
0: लीजिए सुनिए।

0: हेलो अनुरोध कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: मैं मोहम्मद हारून गुरलिया हूँ, ग्राम अकबरपुर, तहसील सरौन, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश से।
0: जी, मध्य प्रदेश से हारून जी ने हमें कॉल की है। तो हारून जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म

0: नाम है तमन्ना।
1: जी आप बताइए, गाने के बोल बताएंगे तमन्ना फिल्म के?
0: आईने में जो पसंद करते हैं,
1: अच्छा जी,
0: ये जो सुनना सुनना चाह रहे हैं सबके लिए।
1: अच्छा, ये गाना सबके लिए है जिनको ये गीत पसंद है। तो भाई हम आपको सुनवा देते हैं तमन्ना फिल्म का ये गाना, लीजिए सुनिए।

0: हेलो अनुरोध कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: मुन्नी वर्मा।
0: मुन्नी वर्मा जी, कहाँ से बात कर रही हैं?
1: नैनी इलाहाबाद
0: जी। बताइए कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: मन की आंखें फिल्म।
0: मन की आंखें, गाने के बोल बताइए।

0: इस समय आप सुन रहे हैं हेलो अनुरोध कार्यक्रम मीडियम वेव 292.4 मीटर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। अपना नाम बता दीजिए।
1: चिरमिरी कुरासिया काल।

0: भी तिलक कोरिया छत्तीसगढ़ के इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
1: जी इंद्रभान जी, कौन सा गीत सुनेंगे?
0: फिल्म का नाम है कालिया और गीत के बोले तुम साथ हो जब अपनी दुनिया को दिखा देंगे।
1: जी जी।
0: गायक किशोर कुमार, आशा भोसले, ये अमिताभ बच्चन, प्रवीण बाबी जी का फिल्म का गाना है
1: जी।
0: और सबसे पहले गीत आपको आपको पूरे भारत श्रोता को, आकाशवाणी प्रयागराज में जुड़े सभी लोगों को, हेलो एक्टर रेडियो श्रोताओं को, आपके परिवारजन के रिश्तेदारों को, आपकी शैली के सभी लोगों को जुड़े करना।
1: तो आपको सुनवा रहे हैं कालिया फिल्म का ये गाना, लीजिए सुनिए।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो अनुरोध, प्रस्तुत कर रही थी मधु कुमार। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।
1: पापा, लाइए 3,000।
2: क्यों भाई?
1: मेरी पॉकेट मनी।
2: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
1: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
2: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
1: अपना मोबाइल लाओ,
2: ले ले।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। 2 बजने वाले हैं, अब आप समाचार सुनेंगे थोड़ी ही देर में, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बताया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की और नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
1: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है।
2: मैं एक बिजनेस काउंसिल की सोच के साथ काम करता हूं, जहां लोगों और मीटिंग्स को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। हर मीटिंग हमारे लिए आगे बढ़ने का एक नया कदम होती है। उनके स्वीडन आने से हमें बेहद खुशी और गर्व है। वे जिन क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं उनकी जल्द घोषणा होने की उम्मीद है। इससे कई उद्योगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मुझे भरोसा है कि इस आर्थिक सहयोग से हमें बेहतर और मजबूत परिणाम देखने को मिलेंगे।
1: इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, AI, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: कल अपनी यात्रा के दूसरे चरण में भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक स्तर पर ले जाकर 17 समझौते किए। ये समझौते रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हैं। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया और विशेषकर ऊर्जा आपूर्ति में बाधा से विश्व व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता प्रकट की। श्री मोदी और रॉब येटन ने कहा कि हॉर्मुज की खाड़ी से होकर जहाजों की बेरोकटोक आवाजाही होनी चाहिए और इसे नियंत्रित करने का कोई भी प्रयास स्वीकार्य नहीं है। दोनों नेताओं ने यूक्रेन रूस संघर्ष पर भी चर्चा की। वे यूक्रेन समस्या का समाधान बातचीत और राजनयिक प्रयासों से किए जाने पर सहमत हुए। बातचीत के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक रोडमैप जारी किया। इनमें सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, यांत्रिक मेधा और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र के में सहयोग भी शामिल है। दोनों नेताओं ने ग्रीन हाइड्रोजन के विकास के लिए भी साझा रोडमैप जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया।
3: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने यह बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र

0: आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। कुछ दिन पहले ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाले एक जहाज पर हमला हुआ था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और ग्रेमी सिटी कैंपस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है।
1: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। AI और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
0: श्री अमित शाह ने गांधीनगर में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन भी किया। वे गांधीनगर निगम के विकास कार्यों का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह गांधीनगर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड मधुर डेयरी के नवनिर्मित 5 लाख लीटर क्षमता वाले संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। श्री शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। अब तक 25 राज्यों में 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया था जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से CNG की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम CNG की नई दर 80.09 रुपए, गाजियाबाद और नोएडा में 88.70 रुपए और गुरुग्राम में 85.12 रुपए हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी CNG की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की गई थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। दिल्ली सरकार महिला स्व सहायता समूहों और स्टार्टअप्स को 10 करोड़ रुपए तक की बिना गारंटी वाला ऋण उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार स्वयं इन ऋणों की गारंटर बनेगी। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेन चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार यह फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। ये घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आपात स्थिति घोषित किया है। इस बीमारी से 300 से अधिक लोग पीड़ित हैं और 88 की मौत हुई है। हालांकि संगठन ने स्पष्ट किया है कि इबोला का संकट कोविड-19 जैसी महामारी जैसा

0: नहीं है। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बंद न करने की सलाह भी दी है। इबोला के इलाज के लिए फिलहाल कोई टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस भी मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रीता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेरपा हैं। इस बीच पर्वत रानी के नाम से मशहूर लाखपा शेरपा ने भी एवरेस्ट पर लगातार 11वीं बार सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली नेपाली महिला होने का अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से डोमिनिका के कलिनागो समुदाय को सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मार्गरीटा ने डोमिनिका के कलिनागो क्षेत्र का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत डोमिनिका के साथ साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और दक्षिण दक्षिण सहयोग पर आधारित अपनी मैत्री को और प्रगाढ़ कर रहा है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में भी भारी बारिश हो सकती है। अगले दो दिन तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की संभावना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू की स्थिति रह सकती है। मध्य प्रदेश में इंदौर और उज्जैन भीषण गर्मी की चपेट में है। कल खंडवा और नौगांव में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि प्रदेश के 15 शहरों में पारा 43 डिग्री या उससे अधिक रहा। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग के अनुसार आज रतलाम, खरगोन और खंडवा में तेज लू चलने की संभावना है और तापमान 44 डिग्री के पार जा सकता है। इसके अलावा इंदौर, उज्जैन, सागर, रीवा, छतरपुर समेत प्रदेश के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में लू का असर बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी है। साथ ही दिन भर पर्याप्त पानी पीते रहने और शरीर को हाइड्रेट रखने की अपील भी की है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 मई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। आज कहीं भी बारिश का अलर्ट नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: अभी प्राप्त समाचार के अनुसार रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के 2 पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। और अब खेल खबरें। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इधर दिल्ली में शाम 7:30 बजे से राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोकटोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम। बस कुछ ही पलों में शुरू करेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार।

0: विज्ञापनों के माध्यम से
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
0: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
3: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, प्रस्तुत है लोकितु का कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं सूर्य प्रकाश पटेल और साथी प्रीति मिश्रा और नन्हीलाल बिंद और साथी। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं सूर्य प्रकाश पटेल और साथियों के स्वर में लाचारी।

नन्हीलाल बिंद और साथियों के स्वर में इस यात्रा के साथ लोकगीतों का कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3 बज चुके हैं। हमारी आज की ये सभा यहीं विराम लेती है। अगली सभा में 5 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। हमारे प्रसारण FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर यानी विविध भारती पर अभी भी जारी रहेंगे।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। 5 बजे हैं, हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में ग्रामीण बच्चे सुने अपना कार्यक्रम बाल गोपाल।
1: लड़कनो जय हिंद।
2: हम कहे भैया।
1: हाँ भैया सिमरन।
3: भैया छुट्टी हो गई बाटे और भैया अपन खेल कूद में जोन बाटे व्यस्त बाटे न अपन जोन छुट्टी बा जोन स्कूल में पढ़ाई होत बाटे जोन काम मिला बाटे ओका कई हो के हम तो देखे तो दोपहरिया में निकल जाते हैं बाग बगीचा में खेलत रहते हैं। पर एक बात जरूरी बात बाटे कि भाई खेल कूद के साथ साथ जो उनका पढ़ाई लिखाई बाटे मान ली छुट्टी हो गई बाटे कुछ नया सीखे के प्रयास करें कोई नया कला सीखे के प्रयास करें एक छुट्टी के जाया जाए नहीं हो दे कुछ ना कुछ एकर सदुपयोग करें।
1: बिल्कुल हो देखा हो चुन्नू मुन्नू बड़ा खुश होते जब भैया स्कूल में महीना भर के छुट्टी हो जाता तो कुछ चुन्नू मुन्नू भैया अपने मामा के यहाँ चला जाते
3: एकदम
1: और कुछ भैया चुन्नू मुन्नू अपने घरे रह कर दादा दादी नाना नानी से न जौन बढ़िया बढ़िया खिस्सा कहानी सुना।
3: अरे एकदम भैया
1: हम तो कहब कि भाई वह खिस्सा कहानी में अच्छी अच्छी बात रहत है और अपने कर्तव्य के अनुभव की जानकारी भी मिलत है।
3: बिल्कुल भैया बिल्कुल
1: तो हम तो चुन्नू मुन्नू से कहब न कि अपने बड़ बड़कवा से भाई अच्छी बात सीखें और उनके कहना माने।
3: एकदम कही गया भैया और इमन एक और गूढ़ बात छुपी बाटी भाई जोनी किस्सा कहानी होतीन जोनी प्रेरक प्रसंग होतीन जोन महापुरुष का कहानी होतीन।
1: बिल्कुल
3: भैया कतौ न कतौ ई चुन्नू मुन्नू के नैतिकता का पाठ पढ़ावतिन भाईचारा का पाठ पढ़ावतिन और उही नैतिकता का पाठ उही मूल्य लेके सामाजिक मूल्य लेके भैया एक अच्छे समाज का निर्माण होता। भैया जोन आपन पचन का परिवार बाटे जोन आपन पचन का लड़का गदेला है न वो एक तरह से समाज का प्रतिबिंब है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
3: सही रही नैतिकता अगर सीखी तो अपने समाज में नैतिकता आए अपना समाज जोनबा आगे बढ़े।
1: अब बिल्कुल बढ़े हो हम तो कहे न हो कि चुन्नू मुन्नू के कहते आज एक वार्ता बढ़िया बाट है ओका सुनवाई पर्यावरण और हमारे वन्य जीव।
3: अरे एकदम भैया
1: तो यह विषय पे हो अंजू यादव बहनी जानकारी देते हैं हम तो कहे कि चुन्नू मुन्नू सुन लेते ने का।
3: एकदम भैया सुनवाई दे।
4: नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। ये बातें हमेशा याद रखना जो आज हम जिस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं इसका हमारे जीवन पर बहुत ही ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छा तो बच्चों आज की चर्चा से पूर्व एक छोटी सी कल्पना करते हैं। इसमें आप सभी बच्चों को मेरी कही बातों को अपने मन को एकाग्रचित कर सोचना है मानो जो मैं कह रही हूँ आप

खुद वहां पर हैं। तो बच्चों सोचो कि आप एक सुंदर घाटी में जहां चारों ओर हरियाली ही हरियाली है, झरने का झरझर की आवाज आप सुन पा रहे हैं, चिड़ियों की चू चू चू चू की आवाजें, उनका चहकना, उनकी मधुर आवाजों में आप सुन पा रहे हैं, हवाओं को आप महसूस कर पा रहे हैं। आपके सामने प्रकृति का अत्यंत मनोरम दृश्य है। वादियाँ बहुत खूबसूरत और मन शांत हो रहा है। तभी अचानक से आपके सामने यह दृश्य धूमिल हो रहा है। आप खुद को एक बहुमंजिला इमारत में तब्दील होते देख पा रहे हैं। हर तरफ गाड़ियों का शोर है। आपने मास्क लगाया हुआ है। सामने काले धुएं के बादल और चारों तरफ चकाचौंध। तो बच्चों अपनी कल्पना से आप बाहर आइए और सोचिए कौन सा दृश्य मनोरम था, वह जिसमें आपका मन शांत था, या वह जहां चारों तरफ गाड़ियों का शोर। जी बिल्कुल, मुझे यकीन है आपको प्रकृति के पास, प्रकृति के करीब होना बहुत ही अच्छा लगा होगा। और आज की चर्चा का विषय भी यही है, पर्यावरण और वन्य जीव। तो बच्चों चलिए आज सबसे पहले जानते हैं पर्यावरण क्या होता है। बच्चों पर्यावरण हमारे चारों तरफ की जगह, हवा, पानी और मिट्टी, जिसे हम आम भाषा में समझे तो पर्यावरण का अर्थ है हमारे आसपास का वातावरण। और क्या आपको पता है यह हमारे जीवन का मूल आधार है। यदि यह ना हो तो हमारा जीवन संकट में पड़ जाएगा। अच्छा बच्चों, आज मैं आप सभी को पर्यावरण का एक गोपनीय सत्य से अवगत कराना चाहती हूँ, और वह यह है कि जैसे आप सभी के कई सारे मित्र होते हैं, लेकिन कोई एक बहुत ही खास होता है ना, बिल्कुल उसी तरह हमारे पर्यावरण का भी एक सुपर दोस्त है। और जानते हो वह कौन है? वह है वन्य जीव, जैसे जंगल में जानवर, पौधे, पेड़, नदियाँ इत्यादि। यह सभी पर्यावरण के सुपर दोस्त हैं। यही सुपर दोस्त ही तो हैं जिन्होंने हमारी आज की गई कल्पना को सुंदर और मनोरम बनाया था। इन्होंने हमारी कल्पना ही नहीं, हमारी प्रकृति को भी सुंदर और मनोरम बनाया हुआ है। लेकिन बच्चों एक और सत्य, वह यह है कि आज की बदलती दुनिया में हम सभी पर्यावरण से बहुत दूर होते जा रहे हैं, जिसे हम प्रगति कहते हैं। प्रगति के नाम पे प्रकृति को हानि भी पहुंचा रहे हैं, हमारे आसपास के वातावरण को दूषित करते जा रहे हैं, जिससे पर्यावरण का नुकसान बहुत हो रहा है। जल, वायु और मिट्टी को प्रदूषित कर रहे हैं, जिसमें विलुप्त होते वन्य तथा वन्य जीव भी हैं। यह वन्य जीव ही हैं जो हमारे पर्यावरण को सुंदर तथा हमारे इकोलॉजी में संतुलन बनाकर रखते हैं। इसलिए बच्चों पर्यावरण की संरक्षण करना हम सभी की जरूरत है। आप सब सोच रहे होंगे कि हम नन्हे मुन्ने बच्चे इतनी बड़ी चीज कैसे करेंगे। तो बच्चों मैं आप सभी को यह बात एक छोटी सी कहानी के द्वारा समझाती हूँ। क्या आप सभी को चिपकू आंदोलन के बारे में पता है? चिपकू आंदोलन उत्तराखंड के वनों की सुरक्षा के लिए वहां के लोगों के द्वारा आरंभ किया गया था, जिसमें पेड़ों को काटने से बचाने के लिए उन्हें गले लगा लिया जाता था, ताकि कोई पेड़ कोई भी व्यक्ति काट ना सके। शुरुआत तो बच्चों बहुत कम लोगों ने की थी, लेकिन देखते ही देखते पेड़ों का कटना थम गया। लोगों ने इसे अपनी जिम्मेदारी समझा और ये छोटा सा एक आंदोलन एक बहुत ही बड़ा आंदोलन बन गया। इसी प्रकार आप सभी के नन्हे कदम हमारे पर्यावरण को सुंदर और संरक्षित बना सकते हैं। बच्चों आज मैं आप सभी से एक अनुरोध करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं आप सभी को एक बहुत ही जिम्मेदारी का कार्य सौंपना चाहती हूँ, उसे आप ध्यान से सुने और जरूर करें।

0: पेड़ लगाना है और प्रदूषण को कम करना है। दूसरा, प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करना है। तीसरा, जब भी बिजली की आवश्यकता ना हो तो पंखा लाइट बंद करके रखें। चौथा, संसाधनों का अत्यंत उपयोग ना करें, जितना ज़रूरत हो उतना ही उपयोग करें। पांचवा, पानी की बर्बादी ना करें, जितना ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल करें। ये सभी छोटे कदम हैं, लेकिन इनके परिणाम बहुत बड़े और हमारे पर्यावरण को स्वस्थ और समृद्ध बनाता है। पर्यावरण का प्रदूषण और वन्य जीवों की घटती संख्या एक अलार्म है। इस समय हमें यह समझना होगा कि हमारे लिए पर्यावरण और वन्य जीवों का क्या महत्व है। बच्चों, हमारी प्रकृति हमें सब कुछ प्रदान करती है, लेकिन यदि हम उसका सम्मान ना करें तो आने वाली पीढ़ियों पर इसका बहुत ही ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ेगा। और आप सभी को बताना चाहती हूँ कि भविष्य में भारत की स्थिति यदि जंगल की कटाई होती रही तो बहुत ही खराब हो सकती है। और भारतीय संस्कृति में पर्यावरण का महत्व अत्यंत उच्च माना गया है। वेदों, उपनिषदों और पुराणों में प्राकृतिक वातावरण का ध्यान रखने की बात कही गई है। पर्यावरण को पूज्य और सम्मानित माना गया है, जो सुरक्षित, स्वस्थ और समृद्ध जीवन जीने की शिक्षा देता है। इसलिए बच्चों, हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए ताकि हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित और स्वस्थ जीवन जी सकें। हमारे पर्यावरण को हो रही समस्या बहुत ही गंभीर समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। सरकार, समाज और व्यक्ति सभी को मिलकर अपने प्रकृति का सम्मान करना होगा और सही प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करना हमें अपने पर्यावरण की रक्षा में मदद करेगा। साथ ही वन्य जीवों की संरक्षण के लिए हम सबको मिलकर कदम उठाना होगा। अपने प्राकृतिक निवास को बचाना होगा। उनकी सुरक्षा हमारी सुरक्षा समझकर सबका सम्मान करना होगा। तो बच्चों, आओ आज हम सब मिलकर एक संकल्प करें। पर्यावरण बचाना है, वन्य जीवों का घर बचाना है, क्योंकि जब हमारा पर्यावरण अच्छा होगा तभी तो हम इस धरती पर खुशी से जी सकेंगे। बस इसी संकल्प के साथ आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ।
1: हाँ मोती भैया, देख जीवन वार्ता रही पर्यावरण और हमारे वन्य जीव, अंजू यादव देखो बहनी बताइन, और देखो सबसे जरूरी बात ये बात बाटे कि जो आगे आवे वाला समय बाटे,
2: बिल्कुल
1: जो हमारे पचन के पास संसाधन बाटे, उस संसाधन का अगर सही से प्रयोग किया जाए, अगर ओके बचावा जाए सही से, तो आगे आवे वाला समय अच्छा होए और जो लड़का गदेला है भैया उन्हों के अच्छे से मिले, ये पर्यावरण अच्छे तरीके से मिले और ये हवा अच्छे तरीके से मिले।
3: बिल्कुल हो, देखा चुन्नू मुन्नू के हम ये बताए दी कि जवन बागी में आम फरा बा है,
1: हाँ।
3: है? अपने पर्यावरण के देन है
1: एकदम भैया,
3: कि भैया हमारे दादा बाबा भाई देखा पेड़ लगाए गयन, तो आज वह पेड़ के नीचे भैया छहातो हैं और खेलतो कूदत हैं,
1: बिल्कुल,
3: और साथे साथे आम भी खात हैं। तो ऐसने भैया देखा हो पेड़ पौधा के सुरक्षा कहीं न कहीं से चुन्नू मुन्नू की जिम्मेदारी भी बन जात है।
1: और भैया देखा उनकर जोन चीज बाटे कि भाई का ओकर जरूरत बाटे, भाई अभी से समझ में आए कि कैसे एक पेड़ कितना जरूरी होता,
3: बिल्कुल बिल्कुल,
1: भाई जब
3: बिल्कुल।
1: उनके नीचे खेला थीं तो जब सुस्ता की जरूरत पड़ा था तो उनके नीचे छाई ले थीं, तालाब बाटे भाई कतो गए नहाई धोई ली हैं,
3: बिल्कुल
1: भाई
3: बिल्कुल।
1: हवा चलत बाटे पेड़ पौधा से तो भैया सोवा थीं तो अच्छा लगा था। तो एक तरह से भैया चुन्नू मुन्नू भी ये चीज समझत हो कि अपने जीवन में पर्यावरण का काम बाटाई, अगर हम सभी एक बचाओ तो आगे वाला आवे वाला समय अच्छा होए। न केवल मोती भैया पर्यावरण के बारे में ये चीज बाटे, बल्कि पर्यावरण के साथ साथ जो वन्य जीव बाटे, हमारे पचन के मोती भैया तो घर बाटे, हम सभी देख आंधी आवत बा, पानी आवत बा, गए घरा में बैठ गए, सुरक्षित हो गए। जोन भैया बेजुबान जानवर हैं, जोन भैया कुछ बोल नहीं सकते, उन्हों का तो कोई कोनो घर होए, तो जोन जंगल बा, जोन पर्यावरण बा, यही उनकर घर बा, ये चीज इंसानन के समझे के पड़े
3: भाई, समझे परी हो। देखा जब ज्यादा से ज्यादा

0: जंगल रही वन रही। तो जौन तू कहन कि भाई जौन जीव जंतु हैं जंगली वो भाई उनके घर उ है वह रही हैं, और हमार तोहार जिम्मेदारी फर्ज इबा कि जहाँ भी तालाब और पोखरा है हुआ अगर भाई पानी नहीं बाटे वह पोखरा में तो हमार तोहार फर्ज बनत है कि वह पोखरा में तालाब में पानी भराई
1: एकदम,
0: ताकि जवन भाई जंगली जीव जंतु हैं गर्मी के मौसम में जाए के हुआ भैया पानी पी सकें।
1: हम तो देखे है मोती भैया ना कि ये मामले में जो चुन्नू मुन्नू भैया हरे हैं ना ये बहुत अच्छा काम कर रहा है।
0: बिल्कुल
1: हमारे गांव में तो सारा जोन तालाब बा बावड़ी बा कुआं बा वो सब पहले में साफ करे लागत थे भाई, खेले कूदे के तो अच्छा रहा था, एक तरह से उनके बढ़िया पेड़ लगाए देते नुकरे आस पास भाई उनके साफ कर देते। तो भाई जब जब चुन्नू मुन्नू भैया हरे कही सकते हैं तो भाई सब जने कही सकते हैं, एक तरह से वो मिसाल पेश कर रहा है ना अपने समाज भरे।
0: अब भाई देखा हो हमारो तोहरो जिम्मेदारी है कि चुन्नू मुन्नू को अपना पर्यावरण बचावे के व्रत प्रेरित करी।
1: बिल्कुल,
0: उन्हें अच्छी अच्छी बात बताई भैया, उन्हें ही बताई कि कौनो पेड़ पौधे के डार ने तोड़ा।
1: एकदम एकदम एकदम।
0: और भाई जहाँ पेड़ पौधा लाग बाय जरूरत पड़े तो वहां ले जाए कि भाई चार बल्टी पानी लेके सींच दे।
1: एकदम एकदम भैया।
0: तो ऐसे भाई देखा चुन्नू मुन्नू को ओकरे प्रति जागरूकता भी फैली और लोगन से बताई है तो उनके ज्ञान भी बढ़ी।
1: हम कही कि देखा चुन्नू मुन्नू से बतियात बतियात चली चला के बेला हो गई बाटे तो हम कही चला जाए। तो लइकनो
0: जय हिंद।
2: अभी ग्रामीण बच्चे सुन रहे थे अपना कार्यक्रम बाल गोपाल। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों बाद युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
5: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
6: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युव वाणी।

0: जब देश आज़ादी के बाद नए सपनों के साथ आगे बढ़ रहा था, तब एक आवाज़ ऐसी थी जो गांव-गांव, शहर-शहर लोगों को जुड़ रही थी। वो आवाज़ थी आकाशवाणी की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अंबुश पांडे, और आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट कार्यक्रम युवाणी।
1: और अंबुज के साथ आज फिर पूजा यादव मौजूद है, और हम दोनों स्वागत करते हैं आपका हमारे सबसे खास कार्यक्रम युवाणी में।
0: दोस्तों, आज का जो डिजिटल टाइम है और जो सोशल मीडिया का जो दौर है, यहाँ जो है सूचनाएं पल भर में फैलती हैं, और वहीं पर आकाशवाणी आज भी अपनी विश्वसनीयता और जनसेवा के लिए पहचानी जाती है।
1: बदलते समय के साथ तकनीक बदल गई है, लेकिन लोगों तक सच्ची और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का उसका उद्देश्य आज भी वैसा ही है। आकाशवाणी भारत का सबसे महत्वपूर्ण रेडियो प्रसारण माध्यम है।
0: बिल्कुल, और इसकी शुरुआत होती है 1936 में ऑल इंडिया रेडियो के रूप में। बाद में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया, जिसका अर्थ है आकाश से आने वाली वाणी। आज आकाशवाणी की पहुंच देश की लगभग 99% आबादी तक मानी जाती है। ये अनेक भाषाओं और बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित करती है, जिससे देश के हर वर्ग तक इसकी आवाज़ पहुंचती है। राष्ट्रीय एकता को ये मजबूत करती है।
1: बिल्कुल, भारत विविधताओं वाला देश है। यहाँ अलग अलग धर्म,

0: भाषा और संस्कृति के लोग रहते हैं। आकाशवाणी ने देशभक्ति गीतों, समाचारों और विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों में एकता लाने का काम किया है।
1: दोस्तों, आकाशवाणी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सामाजिक मुद्दों पर कार्यक्रम प्रसारित कर लोगों को जागरूक बनाया और गांवों और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ये ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत बनी।
0: यहाँ तक कि खेती, मौसम और नई शिक्षा तकनीकों पर भी बात की गई और रेडियो के माध्यम से किसानों तक ये सारी जानकारियाँ पहुँचाई गई। इससे किसानों को आधुनिक खेती अपनाने में सहायता मिली और ग्रामीण विकास को बढ़ावा भी मिला।
1: बिल्कुल। और वहीं अगर भारतीय संस्कृति का अगर हम देखें, इसके संरक्षण की बात करते हैं, तो आकाशवाणी ने भारतीय संगीत, लोकगीत, कविता और नाटक को एक नई पहचान दी। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और अनेक महान कलाकारों की आवाज़ लोगों तक आकाशवाणी के माध्यम से पहुंची।
0: लोकतंत्र और समाज सेवा में भी इसका योगदान खास तौर पर देखने को मिलता है। सरकारी योजनाओं की बात की जाए या फिर राष्ट्रीय अभियानों की जानकारी आकाशवाणी ने लगातार लोगों तक पहुंचाई है। संकट और आपदा के समय भी ये जनता के लिए भरोसेमंद कहीं ना कहीं एक माध्यम साबित रहा है।
1: बिल्कुल सही बात है। और आकाशवाणी केवल एक रेडियो सेवा ही नहीं है बल्कि भारत की आवाज है। इसने शिक्षा, संस्कृति, जागरूकता और राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाकर देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और आज भी जब दुनिया तेजी से डिजिटल हो रही है, तो आकाशवाणी अपनी सादगी, विश्वसनीयता और जनसेवा की भावना के कारण करोड़ों लोगों के दिलों में विशेष स्थान रखती है।
0: अंबुज, हमने कई सारे की फैक्टर्स पर बात की, किस तरह से किसानों के लिए आकाशवाणी ने काफी कुछ किया है और आज भी लगातार हम देख रहे हैं कि एक ऐसा रेडियो माध्यम अगर कोई रहा है जिसने किसानों की भी बात की है, ग्रामीणों की भी बात की है, महिलाओं की भी बात की है, और ये सारी चीज़ें सिर्फ एक दौर तक नहीं थी, आज भी ये सब चली आ रही हैं, तो लोगों में जागरूकता लाने का काम आकाशवाणी ने हमेशा से किया।
1: बिल्कुल
0: है।
1: ये हमेशा से रहा है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात ये रही है पूजा, कि जो आज के समय में अगर हम देखें तो जो गलत सूचनाएं होती हैं, कोई गलत घटनाएं या हो जाती हैं, तो उसका जो प्रसारण होता है इतना तेजी से वो फैलता है बिना ऑथेंटिक फैक्ट्स के।
0: बिल्कुल,
1: है ना, कि सही है कि नहीं सही है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे माध्यम हैं जिसके माध्यम से ये सारी जो न्यूज़ होती हैं ये ऐसे सर्कुलेट होती हैं कि पल भर में इतना ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाती हैं, लेकिन आकाशवाणी वो माध्यम है जो इन सारी न्यूज़ को फैक्ट के तहत क्या सही है और क्या गलत है एकदम फैक्ट के साथ लोगों तक पहुंचाने का काम करती है। और इसमें बहुत बड़ा योगदान, रोल आज भी है आकाशवाणी का।
0: कोविड के टाइम पे भी हमने देखा था किस तरह से गलत सूचनाएं खास तौर पर बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही थी। उस वक्त इतना ज़्यादा टेंशन था हम सब के बीच और इसी के साथ कहीं ना कहीं फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रही थी, तो गवर्नमेंट के लिए भी बहुत चैलेंजिंग हो गया था। लेकिन आकाशवाणी एक ऐसा माध्यम रहा है जिसने कभी भी गलत सूचनाएं प्रसारित नहीं होने दिया और हमेशा लोगों को जागरूक करने का ही काम किया है। तो कहते ना, एक जिम्मेदारी के साथ काम करना, और ये माध्यम अगर कहीं देखने को मिलता है तो वो आकाशवाणी में ही है।
1: बिल्कुल सही बात है। और हमेशा सच को लोगों तक पहुंचाना एक जिम्मेदारी के साथ आकाशवाणी का ये शुरू से काम रहा है और आज भी अपने इसी काम पर आकाशवाणी एकदम प्रयत्नशील है, लगा
0: बिल्कुल
1: हुआ है।
0: आज जब हम 90 वर्ष मना रहे हैं आकाशवाणी के, तो बेहद गर्व का पल है कि हम इस पर बात कर रहे हैं। और एक और फैक्टर है, की पॉइंट है, कि अकेलेपन को ये कैसे दूर करता है। मुझ हमें इस पर भी बात करना चाहिए, लेकिन उससे पहले क्यों ना एक कार्यक्रम का हमारा गीत हो जाए।
1: बिल्कुल।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किड बैग चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
0: करेक्ट।
1: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक, फिर CMS।
2: तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि समाज की

0: सशक्त विकास में आकाशवाणी की सशक्त भूमिका। और आज की तेज भागती दुनिया में बहुत से लोग अकेलेपन का अनुभव करते हैं। परिवार से दूरी, व्यस्त जीवन और तनाव के कारण मनुष्य भीतर से अकेला महसूस करने लगता है। ऐसे समय में आकाशवाणी लोगों के जीवन में एक सच्चे साथी की तरह काम करती है।
1: आकाशवाणी केवल समाचार सुनाने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये लोगों के भावनात्मक जुड़ाव का भी साधन है। इसके विभिन्न कार्यक्रम, गीत, कविताएं, कहानियां और वार्ताएं श्रोताओं का मनोरंजन करती हैं और उन्हें मानसिक शांति भी देती हैं। जब कोई व्यक्ति रेडियो सुनता है तो उसे ऐसा महसूस नहीं होता बल्कि कि वो सिर्फ एक माध्यम के जरिए गाने सुन रहा हो, बल्कि उसे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं किसी से बात कर रहा है।
0: बिल्कुल सही बात है पूजा। और ग्रामीण क्षेत्रों और जो बुजुर्ग होते हैं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए आकाशवाणी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कई बुजुर्ग तो घर में अकेले रहते हैं, वे रेडियो के माध्यम से समय बिताते हैं। भक्ति संगीत, पुराने गीत और प्रेरणादायक जो कार्यक्रम होते हैं उनके मन को वो प्रसन्न रखते हैं और इससे उनका अकेलापन काफ़ी हद तक कम हो जाता है।
1: आकाशवाणी समाज को जोड़ने का भी काम करती है। त्योहारों, राष्ट्रीय कार्यक्रमों और सांस्कृतिक प्रसारणों के माध्यम से ये लोगों में अपनापन और एकता की भावना पैदा करती है।
0: श्रोता स्वयं को समाज और देश से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं और इसके अलावा शिक्षा, जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम युवाओं और विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हैं। प्रेरणादायक बातें सुनकर उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है और नकारात्मकता की जो सोच होती है वो दूर हो जाती है। और इसके साथ ही आकाशवाणी का जो एक इम्पॉर्टेंट जो रोल ये रहा है कि जो मौसम संबंधी जो जानकारी होती है वो समय से पहले लोगों तक पहुंचाना, जैसे कि सबसे ज़्यादा जो इसमें मदद होती है हमारे जो किसान लोग होते हैं, किसान जो होते हैं उनके लिए कब जो फसलें लगती हैं, तो अगर उनको पहले से मौसम का अनुमान लग जाता है तो उस हिसाब से वो अपनी जो फसल होती है उसको कैसे उनको शेड्यूल करना है वो इसी हिसाब से करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो मौसम संबंधी जो जानकारी होती है, जो सच होता है, जो फैक्ट होता है, उन तक पहुंचती है और वो जो माध्यम होता है वो आकाशवाणी होता है। तो कहीं ना कहीं उन्हें इसका पूरा फायदा देखने को मिलता है।
1: एग्रीकल्चर अपने आप में पूरा एक साइंस है, तो सही मेथड, सही टाइम पे फसल लगाना और उसको आगे किस तरह से बढ़ाना है, इसकी सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और आकाशवाणी हमेशा से ही इस पर फोकस कहीं ना कहीं रखती रही है।
0: और अगर देखें, बात करें सरकारी सूचनाओं की, तो सरकारी जो सूचनाएं होती हैं वो आकाशवाणी के माध्यम से प्रसारित होती हैं। जन जग जो जन जन होते हैं वहाँ तक पहुँचती हैं, लोगों तक पहुँचती हैं और लोग इस सूचनाओं के माध्यम से इस देश में क्या हो रहा है, देश विदेश में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये सारी जो जानकारी होती है उससे पूरी तरह से अपडेट रहते हैं।
1: और अम्बुज, आज भी ये एक सच्चाई रही है कि ऐसी कई जगहें हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा सूचनाएं नहीं पहुँच पाती हैं, तो रेडियो एक ऐसा माध्यम रहा है जो लोगों को जोड़ने का काम करती है। और आज भी अम्बुज, ईमानदारी से अगर इस चीज़ को देखी जाए तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो सुबह समाचार सुनते हैं आकाशवाणी के, जितने भी विभिन्न भाषाओं पर जाते हैं, अंग्रेजी में भी जाती हैं समाचारें, हिंदी में भी और उर्दू में भी। तो भाषाओं का ज्ञान डेफिनेटली अगर किसी माध्यम से होता है तो वो आकाशवाणी के जरिए होता है।
0: हर भाषाओं के माध्यम से जो एक न्यूज होती है वो प्रसारित होती है। और उसके अलावा अगर देखें तो जो दूर दराज जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पे आज भी जो इंटरनेट की जो पहुँच है वो उतनी नहीं है या फिर वहाँ पे स्पीड नहीं है इतनी इंटरनेट की, तो वहाँ पर आकाशवाणी रेडियो का एक ऐसा माध्यम है कि आप डायरेक्ट वहाँ से अपडेट हो सकते हैं कि हमारे देश में क्या चल रहा है, कौन सी योजनाएं कब आ रही हैं, कौन क्या कैसे कौन सी घटनाएं कहाँ हो रही हैं। इन सारी जानकारी की जो एक तरीके से रिक्वायरमेंट होनी चाहिए आम जनता को, वो आकाशवाणी के माध्यम से भली भांति उन तक पहुँचती है। और ये एक मायने में देखा जाए तो एक सकारात्मक जो माहौल होता है वो उन तक एक तरीके से बनता है, जो इसे बनाने में आकाशवाणी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका शुरू से रही है और अभी भी है।
1: और 90 वर्ष हम पूरे कर रहे हैं और ये मुझे ऐसा लगता है कि और होना भी चाहिए कि आने वाले बहुत सालों तक आकाशवाणी यूं ही समाज का हिस्सा बनी।
0: बिल्कुल, मतलब अगर सच की बात करेंगे और सही सूचना की बात करेंगे तो आकाशवाणी आपके लिए विश्वसनीय है। और इसी के साथ हम अपने आगे के कार्यक्रम के अगले सेगमेंट में बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किडबैक चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
0: करेक्ट।
1: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किडबैक।
2: RBI कहता है
3: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।

0: वो भी ऐप से।
1: तो श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने कार्यक्रम में डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स लेकर आते हैं ताकि हमारा शो और रिच हो और आपको और पसंद आए। इसी कड़ी में आपको बता दें कि आज हम कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है संघर्ष और कहानीकार है विनीता मिश्रा। तो आइए सुनते हैं ये कहानी।
2: कहा जाता है कि अगर इंसान में संघर्ष और कठिन मेहनत करने की क्षमता हो तो दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो मुमकिन ना हो, जिसे हासिल न किया जा सके। ये बात अमेठी के रहने वाले रोहन पर बिल्कुल सही बैठती है। कहते हैं कि सोना को जितना ही तपाओ वो आखिर कुंदन बन ही जाता है। कुछ ऐसी ही संघर्ष की कहानी है रोहन की। कोई भी माँ बाप कितने भी गरीब हो, पर हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा पढ़ाई करे और कोई बड़ा आदमी बने। बस कुछ इन्हीं बातों को लेकर रोहन ने भी एक सपना देखा कि उसे आईएएस बनना है। अब सपनों को कहाँ पता होता है कि उसे कोई गरीब देख रहा है या फिर अमीर। अमेठी के रहने वाले रोहन के पिता एक किसान हैं, जिनकी धर्म पत्नी है और एक बेटी भी है जो शादी करने के लायक है। वैसे भी सदियों से किसान वक्त और मौसम का मारा हुआ होता है। अच्छी फसल होना हर किसान के लिए एक ख्वाब सा होता है, ऊपर से गिरवी रखे हुए खेत। लेकिन वक्त कितना भी बुरा हो, रोहन के उम्मीद और हौसलों को नहीं तोड़ सका, क्योंकि उसने ठान लिया था कि उसे तो बस आईएएस बनना है। बीए पास करके रोहन कभी कभी अपने पिता के साथ उनका हाथ बटाने खेत चला जाता था, लेकिन उसके पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वो अपनी पढ़ाई का समय छोड़कर उनका हाथ बटाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सपना रोहन के पिता भी अपनी खुली आंखों से देखने लगे थे।
3: मैंने

अब भला जामो जैसे छोटे से गांव में कहां इतनी सुविधा होती है कि रोहन आईएएस की तैयारी कर सके। रोहन के पिता कुछ लोगों से मिलते थे जो पढ़े लिखे थे,

जिन्हें कुछ जानकारी थी। आईएएस के लिए कौन सी कोचिंग होनी चाहिए, कौन सी किताबें जो आईएएस की पढ़ाई के लिए ज़रूरी होती है। नगर पालिका के किसी कर्मचारी ने बताया था कि इलाहाबाद एक ऐसा शहर है जहां विद्यार्थी आईएएस की तैयारी के लिए जाते हैं। अच्छे अच्छे संस्थान हैं जो तैयारी कराते भी हैं। बस फिर क्या था, रोहन के पिता ने ठान लिया कि उन्हें अपने बेटे को इलाहाबाद भेजना है, लेकिन कैसे, इस सवाल का जवाब उन्हें ढूंढना बाकी था। लेकिन किसी ने कहा है कि जहाँ चाह है वहीं राह है। बस सुबह ही सुबह रोहन के पिता खेत के लिए चल पड़े। खेत में जाकर जब उन्होंने जमीन में पड़ी मिट्टी को पकड़ा तो मानो ऐसा लग रहा था कि उस मिट्टी से वो सवाल पूछ रहे हो कि बताओ मैं क्या करूं, तुम तो पहले से ही किसी के अधीन हो। तभी अचानक तेज हवा, पत्तियों की सरसराहट ने उनका ध्यान खींचा तो देखा उनके पास कुछ पेड़ थे जो बहुत फलदार थे। उन पेड़ों को देखकर अचानक से उनके चेहरे में चमक आ गई और वो समझ गए कि उन्हें करना क्या है। आम के वो कुछ पेड़ जिसे बेचकर लगभग 50,000 रुपए तो आ ही गए थे, जिससे वो अपने बेटे को इलाहाबाद भेज सकें। लाख मशक्कत के बाद उन्होंने रोहन को मना ही लिया इलाहाबाद जाने के लिए। फिर क्या था, रोहन के रुके रुके से कदम चल पड़े उसके भविष्य की पहली सीढ़ी की तरफ, या उसके संघर्ष की तरफ।

इलाहाबाद पहुंचने के बाद अपनी मंजिल की तरफ रोहन ने अपना पहला कदम बढ़ाया। जैसे तैसे किराए के एक छोटे से कमरे को ही उसने अपनी दुनिया बना ली। दिन रात बस अपने ख्वाबों को पूरा करने में लग गया। लेकिन अच्छी तैयारी, अच्छी किताबों के लिए वो चंद रुपए कब तक चलते? रोहन ने ठान लिया कि बस मैं अपनी परेशानियों को अपने पिता को अब और नहीं बताऊंगा। लेकिन रोहन बिल्कुल अपने पिता की तरह था, कभी हार ना मानने वाला। उसके सरल सीधे स्वभाव की वजह से उसके कुछ अच्छे दोस्त बन गए थे। उन्हीं दोस्तों से पुरानी किताबें लेकर वो पढ़ाई करने लगा। बाहरी दुनिया से बिल्कुल अनजान रोहन ने अपने आप को बस किताब तक ही सीमित कर लिया। कुछ दिनों बाद मुख्य परीक्षा भी आ गई और रोहन जोर शोर से तैयारी करने लगा। उन्हीं दिनों रोहन के पिता की तबीयत कुछ खराब रहने लगी, शायद बहुत खराब। सारा घर रोहन के पिता की देखभाल में लगा था, लेकिन उन्होंने सारे घर वालों को ये हिदायत दे रखी थी कि बीमार होने के बाद रोहन को ना बताई जाए। वो नहीं चाहते थे कि उसकी पढ़ाई में कोई भी अड़चन आए। और उधर रोहन ने भी फैसला कर रखा था कि अब वो अपने पिता को तभी कॉल करेगा जब उसका सिलेक्शन हो जाएगा। बाप बेटे की इस कश्मकश में पता नहीं नियति ने क्या सोच रखा था।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हाँ मोती भैया, देखा हम लोग सुना 13 लाल और संघातीन का जो विकास गीत रहा,
4: बिल्कुल बिल्कुल
3: सुना गवा, सतह सतह संदेशों सुना गवा। अपन जो बात होत रही कि अपने पंचायती में आज विशेष एक वार्ता बांटी कि ग्राम अर्थव्यवस्था में सहकारी समितियों का योगदान,
4: बिल्कुल बिल्कुल।
3: मिफ्ताउद्दीन सैफी की वार्ता बांटी हम कही कि आपो एक सुनई और हमारे पंच भाइयों जो है वो एक सुनई।
4: सुनवाद भाई।
5: भारत की आत्मा गांवों में बसती है। हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जो अपनी आजीविका के लिए मुख्यतः कृषि एवं उससे जुड़े कार्यों पर निर्भर है। यही कारण है कि भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है। ऐसे में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सशक्त होना देश के समग्र विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। गाँव केवल हमारे देश की भौगोलिक इकाई नहीं है, बल्कि वे हमारी सांस्कृतिक परंपरा और अर्थव्यवस्था की नींव है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के सामने गरीबी, बेरोजगारी, ऋण की समस्या, उचित बाजार का अभाव तथा संसाधनों की कमी जैसी अनेक चुनौतियां रही हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए सहकारी समितियां आशा की किरण बनकर सामने आई हैं, जो ग्रामीण विकास और किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए प्रयासरत है तथा ग्रामीण लोगों को आर्थिक सहायता, रोजगार तथा आत्मनिर्भरता प्रदान करती है। सहकारी समिति का अर्थ है ऐसा संगठन जिसमें लोग स्वेच्छा से एकत्र होकर अपने आर्थिक और सामाजिक हितों की पूर्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं। इसका मूल सिद्धांत है एक सबके लिए और सब एक के लिए। यही भावना ग्रामीण लोगों को सामूहिक रूप से आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। सहकारी समितियां लोगों को एकजुट होकर कार्य करने, संसाधनों को साझा करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान करती है। इन्होंने किसानों, मजदूरों, महिलाओं और छोटे व्यापारियों के जीवन स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संविधान में सहकारिता के जुड़े प्रमुख अनुच्छेद इस प्रकार हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 43B यह निर्देश देता है कि राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का हर संभव प्रयास करेगा। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत भारत के सभी नागरिकों को संघ, संगम या सहकारी समितियां बनाने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और मजबूती देने के लिए संविधान में 97वां संशोधन किया गया था। इसके तहत संविधान में नया भाग 9(ख) अनुच्छेद 243(zh) से 243(zt) जोड़ा गया। यह भाग सहकारी समितियों के चुनाव, उन निदेशक मंडल की संरचना और कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। सहकारी समितियां लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित होती हैं और सदस्यों के बीच लाभों को समान रूप से वितरित किया जाता है। भारत में सहकारी समितियों का गठन 19वीं शताब्दी के अंत में किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों का उपयोग कृषि, ग्रामीण विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक सेवाओं को प्रदान करने के लिए किया जाता है। सहकारी समितियां कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद करती है। वे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए काम करती है। वे ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देने में भी मदद करती है। ये किसानों को उर्वरक, बीज और अन्य कृषि उपकरणों की आपूर्ति करती है। वे किसानों को अपने उत्पादों को बेहतर कीमत पर बेचने में भी मदद करती है। सहकारी समितियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक सेवाएँ प्रदान करती हैं। वे गरीबों, महिलाओं और बच्चों को सहायता प्रदान करती

सकती हैं। वे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रसार में भी मदद करती है। भारत में ग्रामीण सहकारी समितियों की संख्या लगभग 6 लाख है। इन समितियों में लगभग 200 मिलियन सदस्य हैं। ग्रामीण सहकारी समितियां भारत के ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे ग्रामीण क्षेत्रों भारत में गरीबी और असमानता ग्रामीण सहकारी समितियों के विकास के लिए एक बड़ी चुनौती है। गरीब और असमान ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों के विकास में कठिनाई होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और जागरूकता की कमी सहकारी समितियों के विकास के लिए एक अन्य चुनौती है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सहकारी समितियों के लाभों के बारे में जागरूकता की आवश्यकता है। शासन के अक्षमता भी ग्रामीण सहकारी समितियों के विकास के लिए एक चुनौती है। सहकारी समितियों को सरकार की सहायता और समर्थन की आवश्यकता होती है। सहकारी समितियां किसानों की कृषि उपकरण, बीज और उर्वरक जैसी आवश्यक वस्तुओं को कम लागत पर उपलब्ध कराती है। ये समितियां किसानों को कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए भी एक मंच प्रदान करती है। सहकारी समितियां ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करती है। ये समितियां विभिन्न प्रकार के व्यवसायों का संचालन करती है, जिनमें कृषि, विनिर्माण और सेवाएं शामिल हैं। सहकारी समितियां स्वैच्छिक संगठन है जो समान हितों वाले व्यक्तियों द्वारा बनाई जाती है। इनका उद्देश्य अपने सदस्यों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है। भारत में सहकारी समितियों को सहकारी समिति अधिनियम 1912 के तहत पंजीकृत किया जाता है। ग्रामीण समाज की काया पलटने में सहकारी समितियों का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इन समितियों ने ग्रामीण ऋणदाता, कृषि के पिछड़ेपन, बंधुआ मजदूरी आदि समस्याओं का निराकरण करके ग्रामीण जीवन को सुख और समृद्धि से पाट दिया है। सहकारी समितियां ग्रामीण समाज के लिए कल्प वृक्ष सिद्ध हो रही है। इन्होंने ग्रामीण समाज का नव निर्माण करके उसे एक सुधरा रूप दिया है। भारतीय गांवों की मुख्य सहायता ऋणग्रस्तता थी। कहा जाता था कि भारतीय कृषक ऋणों में जन्म लेता है और ऋणों में ही मर जाता है। ये एक गंभीर समस्या थी। एक बार लिया हुआ ऋण पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता था। साहूकार तथा जमींदार ग्रामीण समाज के शोषण में आकंठ डूबे थे। सहकारी समितियों ने किसानों को उचित ब्याज की दर पर सुगमता से ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें उनके प्राचीन ऋणों से मुक्ति दिलवा दी। सहकारी समितियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास में गति आ गई है। तीव्र गति से हुए आर्थिक विकास ने भारतीय कृषकों को कृषि, पशुपालन तथा कुटीर उद्योग धंधों के क्षेत्र में पर्याप्त निर्भरता प्रदान कर दी है। सहकारी समितियों ने ग्रामीण समाज के सदस्यों में परस्पर सहयोग, एकता, सामुदायिकता, सहानुभूति तथा प्रेम का भाव जागृत कर सामाजिक चेतना के विकास में अद्वितीय योग दिया है। ग्रामीण समाज के सभी सदस्य एकजुट होकर समाज के नव निर्माण के लिए प्रयत्नशील हो उठे हैं। सहकारी समितियों ने हम की भावना जगाकर ग्रामीण समाज में अपनत्व की भावना जगा दिया है। ग्रामीण समाज के सदस्य सामूहिक हित के ध्यान में रखकर तथा वैर भाव छोड़कर तन मन धन से सहकारिता के कार्यों में सहयोग दे रहे हैं। सहयोग का कारण झगड़ों का अंत हो गया और मुकदमेबाजी में कमी आ गई है। इस प्रकार सामाजिक तनाव और संघर्ष में भी गिरावट आ गई है। सहकारी समितियों का आधार पारस्परिक सहयोग है। सभी लोग इस समितियों के सदस्य बनकर एकता और सहयोग का प्रदर्शन करते हैं। सहयोग और एकता प्रगति और शक्ति की आधारशिला है। सहयोग के कारण मित्रता, भाईचारा, समानता और स्वतंत्रता आदि गुणों का उदय होता है, जो राष्ट्रीय एकता को बल प्रदान करते हैं। सहकारी समितियां और इन समितियों के सदस्य सामूहिक हित को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं। इस प्रकार सहकारी समितियां सामाजिक कल्याण में अभिवृद्धि करने का सशक्त माध्यम है। सहकारी समितियां ग्रामीण जीवन के पुनर्निर्माण में बहुत सहायक होती है। ग्रामवासियों को नया सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश मिल जाता है। वे स्वयं को राष्ट्र की मुख्यधारा का एक अभिन्न अंग समझने लगते हैं। सहकारी समितियों ने

0: अमीर समाज के सदस्यों को सम्मानित और सुखी जीवन प्रदान कर दिया है। इस प्रकार सहकारी समितियों ने ग्रामीण समाज को धन धान्य से भरपूर करके सभी ओर समृद्धि बिखेर दी है। इसने अच्छे और चरित्रवान नागरिकों के निर्माण में सहायता देकर लोकतंत्र की सफलता की आधारशिला रख दी है। इसने शोषण पर रोक लगाकर ग्रामीण लोगों को आदर्श एवं सुखी जीवन व्यतीत करने के योग्य बनाया है। वास्तव में सहकारी समितियां ग्रामीण समाज के पुनर्निर्माण की कुंजी सिद्ध हो रही है। सहकारी समितियां किसानों को उपज को सीधे बाजारों तक पहुंचाती हैं, जिससे उन्हें फसल का लाभकारी मूल्य मिलता है। ये समितियां कोल्ड स्टोरेज और गोदामों की सुविधा प्रदान करती हैं, जिससे फसल खराब होने का डर कम होता है और किसान कीमतों में सुधार होने तक अपनी फसल रोक सकते हैं। डेयरी, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में सहकारी मॉडल ने लाखों ग्रामीण लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। ये समितियां ग्रामीणों को नई तकनीकों और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन का प्रशिक्षण देकर उन्हें कौशल में सुधार करती हैं। ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने में इन समितियों की बड़ी भूमिका है। सहकारी समितियां अपने लाभ का एक हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल, अस्पताल और सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण में भी लगाती है। एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत पर चलने के कारण ये संस्थाएं ग्रामीण में लोकतांत्रिक मूल्यों का निवास करती हैं। वास्तविक जीवन के उदाहरण देखें तो जैसे सहकारी दुग्ध विपणन संघ लाखों दुग्ध उत्पादन किसानों को सशक्त बनाया, ग्रामीण आय में क्रांतिकारी बदलाव लाया। नाफेड किसानों की उनकी उपज का विपणन करने में मदद की, उचित मूल्य सुनिश्चित किया। अंततः सहकारी समितियां केवल आर्थिक संस्थाएं नहीं हैं, बल्कि ग्रामीण विकास की मजबूत आधारशिला हैं। इनका उद्देश्य सहकार से समृद्धि के मंत्र के साथ ग्रामीण क्षेत्रों का समावेशी विकास करना है। आज जब हमारे देश भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है, तब सहकारी समितियों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि गांव मजबूत होंगे, किसान समृद्ध होंगे और सहकारिता की भावना विकसित होगी, तभी हमारा देश वास्तविक अर्थों में प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकेगा।
1: हाँ मोती भैया, देखा जोन वार्ता रही कि ग्राम अर्थव्यवस्था में सहकारी समितियों का योगदान मिफ्ताउद्दीन सैफी भैया रहन, और देखा जोन जरूरी चीज बाटे बताएं कि भाई सहकारी समिति का ग्राम के भाई विकास में दोनों गांव के या जोनों गांव बाटन भाई उनके विकास में का योगदान बाटे और कैसे किसान भैया हरे इसे लाभ ले सकते हैं।
2: बिल्कुल हो, देखा भैया एक चीज फरियान ने,
1: हाँ
2: कि भैया अगर ऋण की जरूरत है किसान के तो समित भैया उन्हें कम ब्याज पे ऋण भी उपलब्ध करावत है, और जो उनके अनाज भैया जो उन खेते से पैदा भय बाय ओकर भैया मूल्य बढ़िया दियावत है।
1: अब देखा जोनी बात कही गई ना मोती भैया की एकता में बल होता है।
2: बिल्कुल बिल्कुल
1: भाई, अगर आप अकेले कोनो काम कर रहा है तो भाई वो मन जो चीज रहे वो भाई चार जने मिल के अगर वो काम करबा तो भाई वो मन अलग एक बात आए। अभी भाई सहकारी समिति का मतलब यही बात है कि अगर कोनो आपके काम करे के बात है तो भाई चार जने के एक समूह बन गवा और भाई आपका काम हो जाए। अब जैसे आप कहें ऋण की बात की है, सहकारी समिति भैया ऋण प्रदान कर रहा था,
2: बिल्कुल
1: चाहे वो डेयरी उद्योग में भाई अगर आपके सब जने 10 जने एक थे बनाए लिए सहकारी समिति, अब आप पशु अगर पाले हैं
2: बिल्कुल
1: एक तरीके से आपका एक उस संस्था होएगा। अब केहू के अगर ले के रहे बड़ा चीज बड़ा अगर जाए आपके जगह जगह लेके जावे बाटे तो भाई ओकर अच्छे तरीके से आपका अच्छा मूल्य मिले और भाई आपका विकास अच्छे तरीके से होए।
2: बिल्कुल हो, कही जात है कि ने आपस में मिलजुल के एक दूसरे के सहयोग से बड़ा काम कर ले जाते तो निश्चित रूप से एकर भाई देखा लाभ बाय हमरे तोहरे खाती और एकर फायदा हमरे किसान भैया बहनी गांव के भैया बहनी सब उठावें
1: और मोती भैया साथ साथ ये जो सहकारी समिति होते हैं इनका ऋण आसानी से उपलब्ध हो जाता
2: है। बिल्कुल बिल्कुल
1: भाई, अगर जो है एक सहकारी समिति बन गई बाटे, उस सहकारी समिति के जोन कृषि उपकरण होते हैं वो आपके सब्सिडी जो दाम पे मिल जाते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: कहे के मतलब ये बाकी सरकार का जो नई मंशा बाटे ये किसान भाई के ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, और किसान भाई ये जो तकनीक बाटे ये जो नई नई भाई

0: विशेषज्ञ भैया बतावत हैं नए नए जो उपकरण आवत हैं ओकर लाभ उठाई सकें, तो हम तक ई कहब कि भाई सहकारी समिति जोन बाटई भाई ओकर लाभ आप उठाओ, अगर कौनो आपके लगत बाटई कि भाई सहकारी समिति संबंधित कोनो सवाल बाटई या कैसे ऋण लिया जाए या सरकारी समिति कैसे बनाई जाए, तो भाई आपके जोन का नाम बा किसान कॉल सेंटर बाटई ओपर फोन करके आप पूछ सकत हैं, या जो विशेषज्ञ भैया होते हैं तमाम संगोष्ठी होते हैं गोष्ठी होते हैं ओकरे माध्यम से आपकी जानकारी उपलब्ध कराई जाता है और आप एक सरकारी समिति बनाई के का लाभ उठाई सकते हैं।
1: बिल्कुल लाभ उठावे हो। एक बात और कहा,
0: हाँ मोती
1: देखा हम तो किसान मनाई है और हम तो भैया धरती के सीना चीर के देश के पेट भरत है।
0: बिल्कुल भैया,
1: तो अब भाई गेहूं का फसल तो खत्म हो चुकी बा, अब जोन आवे वाली फसल भैया धाने के बा
0: एकदम,
1: तो ओके भाई तैयारी अब से शुरू कर दें। अगर हम तो कहब कि खेते के जुताई कर दी हैं, तो भाई जोन नुकसानदायक कीट हैं वो भैया खत्म हो जाई हैं। दूसर ई बात बा कि जोन प्रजाति के चयन करें, जोन भी धाने की फसल ले वह प्रजाति के चयन करें, तो अच्छी प्रजाति के चयन करें।
0: बिल्कुल,
1: और कोनो भी फसल लेवे के पहले हम तो कहब कि माटी के जांच कराए।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: साथे साथे जोन भाई बीज बाय तो बीज के अगर शोधित कई के ओका बोवत है तो भाई जोन बीज जनित रोग हुए संभावना रहत है वो खत्म हो जाता।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो ऐसे जोन लागत खर्च बाय वो कम हो जाता है
0: एकदम भैया।
1: और फसल में भाई देखा रसायन के अंश, जब तू भैया कोनो कीट किरौना नहीं लागत बत कोनो रसायन के छिड़काव के भी जरूरत नहीं
0: पाए। बिल्कुल भैया कही गए मोती भैया, और ई बात बत कही जोन इतना होत अपने पंचायत घर के माध्यम से जो जानकारी दी जाता ओकर यही मतलब बा कि भाई खेती किसानी के जोन काम होत बाटे वो जानकारी लेके हो सही तरीका से हो, और किसान भाई अपन लागत जोन बाटे वो कम करें मुनाफा बढ़ावें। तो हमार पचन का तो यही बा कि जितना जानकारी हमार पचन के पास बाटे वो कैसे न कैसे किसान भाई तक पहुंचे और किसान भाइयों का लाभ उठावें।
1: बिल्कुल लाभ उठावें। देखा यह समय में एक चीज बाय कि यह समय में भाई जवन सब्जियन के खेती मनई भैया बहनी की है, तो चाहे वो नेनुआ होए तरोई होए भिंडी होए भैया लौकी होए या खीरा ककड़ी होए तरबूज खरबूज होए, तो भाई हमें कुल में पानी की जरूरत पड़ता है।
0: बिल्कुल कही
1: तो समय समय पे सिंचाई भी करत रहे और खेते में भाई सांस सवेरे देख लें, अगर कोनो रोग बीमारी किरौना लागत बे तो ओकर उपचार करें
0: एकदम भैया।
1: और निराई गुड़ाई अगर ज्यादा खर पतवार हो बाय तो साझे सवेरे निराई गुड़ाई कर लें, और ताकि जौन भी खाद उर्वरक के तू प्रयोग करत है तो फसल को पूरा मिले।
0: अरे बिल्कुल कही गए भैया मोती भैया। हम गए मोती भैया, हम कही चलत चलत जोन बाटे ना पंच भैया बरे एक ठे निर्गुण और बाटे तेरस लाल और संघातिन के एक ठे निर्गुण बाटे, हम कही वो सुन लिया जाए।
1: सुनवाद भाई।

0: मूर्ति भी है। देख जो निर्गुण रहा
1: बिल्कुल
0: तेरह
1: बिल्कुल
0: सालों संघातिन का निर्गुण सुना गया। आप देख जोन बात ही बात बाटे कि भाई गर्मी पड़त बाटे और गर्मी में भैया देखा मौसम के अनुसार अपन खेती किसानी का काम करें,
1: बिल्कुल
0: अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य के साथ साथ जो पशु प्राणी पाले हैं उन्हों का खान पान उन्हों को समय समय पर पानी देते रहें, भाई दाना सही से दें, उनका जो खाना पानी बाटें वो सही से रखें, सही जगह उनका बांधें। और साथे साथे एक कार्यक्रम जो अपन आवत बाटे पंचायत घर, भाई पंचायत घर के बारे में एक सूचना ही बाटे कि भाई अगर पंचायत घर से संबंधित कोनो आपको प्रतिक्रिया बाटे, कोनो सुझाव बाटे या कोनो खेती किसानी से जुड़ा हुआ कोनो सवाल बाटे तो हमारे प्रचंड का एक व्हाट्सएप नंबर बाटे 800-4926-250। फिर से बोल देते भैया 800-4926-250। भाई ये पर आप अपन जोन संदेश बा अपन जोन प्रतिक्रिया बा अपन जोन सुझाव बा ये दे सकत हैं। एक मोती भैया जोन सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर जोन अपन पेज बाटे आकाशवाणी प्रयागराज का ऊपर जाए के वहू पे आप अपन सुझाव प्रतिक्रिया दे सकत हैं। मोती भैया देखा चला चली की बेला होत चली बा तो भाई पंच भैया से आज्ञा लीन जाए तो पंचो राम।

अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम पंचायत घर, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: प्रादेशिक समाचार मुख्य समाचार। प्रदेश में अनुदेशकों को 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा कवर देगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में बेसिक शिक्षा का हुआ कायाकल्प। मुख्यमंत्री गोरखपुर के सहजनवा में आयोजित भाजपा जिला प्रशिक्षण में हुए शामिल। कार्यकर्ताओं को राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करने के लिए किया प्रेरित। प्रदेश में अलग अलग सड़क हादसों में 7 लोगों की मौत। फतेहपुर में नदी में डूबने से 4 युवकों ने गंवाई जान। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 30 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर नींव ही मजबूत नहीं होगी तो मजबूत इमारत नहीं बन सकती। इसीलिए सरकार का मानना है कि अनुदेशक, शिक्षा मित्रों और बेसिक शिक्षकों के मानदेय से जुड़े मामलों को सम्मानजनक तरीके से हल किया जाना चाहिए। श्री योगी ने ये बात आज लखनऊ में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 में समग्र शिक्षा अभियान के तहत 24,717 अंशकालीन अनुदेशकों का मानदेय 9,000 से बढ़ाकर 17,000 रूपये प्रतिमाह किए जाने के उपलक्ष्य में आयोजित अनुदेशक सम्मान समारोह और चेक वितरण कार्यक्रम में कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानदेय बढ़ाने के साथ ही राज्य सरकार अनुदेशकों को 5 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा कवर का लाभ देने जा रही है। श्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार की पारदर्शी नीतियों और सकारात्मक कदम से बेसिक शिक्षा में कायाकल्प हुआ है। सरकार की मंशा है जब हर बच्चा शिक्षा हासिल करे ताकि विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सके।
2: जब साफ नियत से कोई सरकार कार्य करती है, स्पष्ट नीति हो तो परिणाम आने में देर नहीं लगती। प्रदेश के अंदर जो ड्रॉप आउट रेट था लगभग 17-18% के आसपास था और आज हम इसको घटाते घटाते 3 तक पहुंचाने में सफल हुए हैं और हमारा मानना है इसको 0 तक पहुंचाना चाहिए। हर बच्चा पढ़ेगा तब विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार हम कर पाएंगे।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी देश का ऐसा राजनीतिक दल है जो देश को सुरक्षा, संस्कृति, सुशासन और समृद्धि को जोड़ने का काम कर रही है। वो आज गोरखपुर के सहजनवा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण 2026 के क्रम में भाजपा के जिला प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। भाजपा का इतिहास और विकास विषय पर केंद्रित इस सत्र में श्री योगी ने कहा कि स्थापना के 50 वर्ष से भी कम समय में भाजपा ने दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में केंद्र और देश के 22 राज्यों में राष्ट्रवाद की विचारधारा को लागू करने के अभियान को आगे बढ़ाया है। श्री योगी ने केंद्र और भाजपा शासित राज्य सरकारों ने राष्ट्र प्रथम की भावना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की संकल्पना के अनुरूप अपने कार्यक्रमों को तैयार किया है जिससे देश के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है।
2: भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उन सपनों को भी साकार किया है जिन्होंने अंत्योदय की बात, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को शासन की योजना का लाभ मिलना चाहिए। देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को एक एक आवास मिल जाना, 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा मिल जाना, 10 करोड़ किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ हो, ये समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को समृद्धि के शिखर तक पहुँचाने के अभियान का क्रम है।
1: श्री योगी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान, सांसद रवि किशन शुक्ल, पार्टी पदाधिकारी और प्रमुख जनप्रतिनिधि मौजूद थे। प्रदेश में जारी डिजिटल जनगणना के पहले चरण के तहत स्वगणना प्रक्रिया 7 मई से जारी है। 21 मई तक चलने वाली इस प्रक्रिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी स्वगणना का डिजिटल प्रपत्र भरा। इस अवसर पर श्री योगी ने प्रदेशवासियों से स्वगणना प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करने का आह्वान किया है। उधर मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में शुरू हो गया है, जहां मकानों की सूची तैयार की जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश अरुणा

0: हिमाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधा और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है, जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। अब तक 25 राज्यों में 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद और प्रदेश के राज्य मंत्री संजय गंगवार ने आज पीलीभीत में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को स्मार्टफोन वितरित किए। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री प्रसाद ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के कामों में हमेशा पारदर्शिता रही है और सरकार ने जो कहा उसे करके दिखाया है। श्री गंगवार ने कहा कि जनपद में 1,985 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और मुख्य सेविकाओं को मोबाइल दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है।
2: मोदी योगी सरकार बड़े बड़े भाषण घोषणाओं में यकीन नहीं करती और जो घोषणा करती भी है वो धरातल पे, जमीन पे, गांव पे लोगों तक पहुंचाने का काम करती है और उन योजनाओं को, खासतौर से स्वास्थ्य की सेवाओं को धरातल पे पहुंचाने में आप लोगों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती।
1: गाजियाबाद स्थित NTH की उत्तरी क्षेत्र इकाई में अत्याधुनिक जूता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस प्रयोगशाला से MSME, निर्माता, निर्यातक, उपभोक्ता और नियामक संस्थाओं को भरोसेमंद और अच्छी क्वालिटी वाले फुटवेयर परीक्षण सेवाएं मिल सकेंगी। मथुरा सहित समूचे ब्रजमंडल में एक माह तक चलने वाला पुरुषोत्तम मास मेला आज से शुरू हो गया है। श्रद्धालुओं की भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने गोवर्धन और वृंदावन समेत पूरे ब्रज क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
3: मथुरा समेत समूचे ब्रजमंडल में आज से एक माह तक चलने वाला अधिक मास मेला शुरू हो गया है। चहु और 84 कोस परिक्रमा का उत्साह और राधे राधे की गूंज सुनाई दे रही है। आस्था और भक्ति में डूबे लाखों श्रद्धालु मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नंदगांव और गोवर्धन में 84 कोसी परिक्रमा कर रहे हैं। SP ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए परिक्रमा मार्ग गोवर्धन, द्वारकाधीश और श्री कृष्ण जन्मस्थली समेत प्रमुख मंदिरों को सुपर जोन और सेक्टरों में बांटकर भारी पुलिस बलों की तैनाती की गई है और पूरे क्षेत्र की CCTV कैमरों और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। मोहम्मद उमर कुरैशी, आकाशवाणी समाचार, मथुरा।
1: प्रदेश में आज हुए अलग अलग हादसों में 11 लोगों की मौत और 5 अन्य घायल हो गए हैं। फतेहपुर जिले में रिंद नदी में नहाने गए 4 युवकों की डूबने से मौत हो गई, जबकि अन्य 2 को गोताखोरों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। हमीरपुर के मौधा क्षेत्र के छिरका गांव के पास हाईवे पर खड़े ट्रक और कार की टक्कर में दुर्घटना होने से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। ये सभी बागेश्वर से दर्शन कर घर वापस जा रहे थे। उधर शाहजहांपुर जिले के कांट इलाके में सुबह डंपर और ऑटो की टक्कर में दंपति सहित 3 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी जारी रहने और कोई खास बदलाव नहीं होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आगरा, अमेठी, औरैया, आजमगढ़, बलिया, बांदा, चंदौली, चित्रकूट, उन्नाव और वाराणसी में कल भी लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश में मानसून के 18 जून को दस्तक देने की संभावना जताई गई है। इस साल मानसूनी सीजन में सामान्य से कम वर्षा होने का भी पूरा अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में अनुदेशकों को 5,00,000 तक स्वास्थ्य बीमा कवर देगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, राज्य में बेसिक शिक्षा का हुआ कायाकल्प। मुख्यमंत्री गोरखपुर के सहजनों में आयोजित भाजपा जिला प्रशिक्षण में हुए शामिल। कार्यकर्ताओं को राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करने के लिए किया प्रेरित। प्रदेश में अलग अलग सड़क हादसों में 7 लोगों की मौत। फतेहपुर में नदी में डूबने से 4 युवकों ने गवाई जान।

0: और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
1: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
2: सो गर्ल्स, क्या हो रहा है?
3: बिल हो रहा है।
2: चल अपना कार्ड दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
5: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
6: बन गया बजट?
5: हाँ,
6: 5,000 बच गए।
5: तो नई साड़ी ले ले
6: ना।
5: पिछले महीने तो ली थी।
6: एक और
5: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
6: बढ़िया, जाओ भाई।
7: RBI कहता है
8: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
9: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। आकाशवाणी के 90 वर्ष और यादों का कारवां श्रृंखला के अंतर्गत सुनिए प्रख्यात अभिनेता फैजल खान से अभिनव प्रज्ञ पांडे और सुंदरम तिवारी की बातचीत।
10: श्रोताओं नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष और आपके पसंदीदा कार्यक्रम आकाशवाणी के 90 वर्ष और यादों का कारवां में। प्रयागराज जो पहले इलाहाबाद था, उसके अलसाई हुई सुबह, जमहाती दोपहरों और थकी हुई शामों से निकल करके एक लड़का जाता है मुंबई और वहाँ जाकर के पहले बिहाइंड द सीन काम किया उन्होंने। फिर जब वो कैमरे के सामने आए तब उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया, एक ऐसा जिसको प्रयागराज की भाषा में कहें रौला बनाया कि पूरा देश अब उनको प्रहलाद चा के नाम से जानता है। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आज फैजल मलिक हमारे स्टूडियो में हैं। उनसे बात करेंगे रेडियो के ऊपर, उनसे बात करेंगे यादों के ऊपर, उनसे बात करेंगे उनके सफ़र के ऊपर, उनके संघर्षों के ऊपर। और हाँ, सिर्फ फैजल भाई ही नहीं, इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में अनूप त्रिपाठी जी भी मौजूद हैं जो कि उनके बचपन के मित्र हैं। और मित्रता ऐसी चीज़ होती है कि आप किसी भी ऊंचाई तक पहुंच जाइए, उस पतंग की डोर की तरह है वो मित्र आपके साथ हमेशा रहता है और शायद वो गलियां, वो शहर, वो जगह, वो दोस्त आप नहीं भूल पाते कभी भी, आप कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएं। हमारे इस इंटरव्यू में हमारा साथ देंगे हमारे साथी सुंदरम तिवारी जी।
11: ये श्रोताओं के लिए बहुत ही भाग्यशाली क्षण होगा जो इलाहाबाद का एक लड़का जो हमारे बीच का था वो मुंबई में इलाहाबाद को प्रेजेंट कर रहा है। उन नामों में, उन कलाकारों की गिनती में अब ये एक नया नाम जुड़ा है जो इलाहाबाद की परंपरा रही है कि हम अपनी प्रतिभाओं को पालते पोसते हैं और फिर दुनिया में इलाहाबाद को प्रेजेंट करने भेज देते हैं।
10: बिल्कुल। तो फैजल भाई, औपचारिक शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
12: बहुत बहुत शुक्रिया सर, आकाशवाणी, आकाशवाणी की सारी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया।
10: कैसा लग रहा है प्रयागराज? जब भी आते हैं कहीं ना कहीं तो प्रयागराज अंदर रहता होगा ना। एक कहावत है कि आप इलाहाबाद छोड़ दें या प्रयागराज छोड़ दें, प्रयागराज आपको नहीं छोड़ता, ऐसा है क्या?
12: देखिए, क्या है कि बाकी शहरों का तो नहीं पता है, पर जिस शहर से मैं आता हूँ वहाँ वो कभी ना कभी जा सकता है ना कभी जाएगा।
10: क्या बात।
12: वो अपने आप से गद्दारी करने वाली चीज़ होती है, अपने आप से, कि आप अपने शहर के साथ अगर रह रहे हैं तो आप चाहे किसी भी धर्म या समाज के हैं, आपका शहर आपकी आइडेंटिटी होता है।
10: बिल्कुल।
12: वो लीजन नहीं कर सकता है वो।
10: और शहर अगर प्रयागराज या इलाहाबाद,
12: शहर जिस तो शहर के हम लोग हैं, वो किस्मत वाली बात है कि इस शहर में जो है हम लोग का जन्म हुआ, इस शहर में हमारे माँ बाप रहे, इस शहर में पढ़ाई किया, इस शहर में दोस्त मिले।

0: वो जो है जो मुझसे काफ़ी लोग दुनिया भर के मिलते रहते हैं, पर जैसे ही हम लोग का वाईफाई कनेक्ट होता है ना एक इलाहाबादी का, तो वो अलग होता है, जो चाहे किसी भी दुनिया में आप चले जाएं वो मिलते ही जो अलग सी बात होती है, पूछ लेते हैं लोग अच्छा कहाँ के हो। फिर उसके बाद अगली चीज़ जो खाने पीने की होती है, अगली बात जो है वो कन्वर्सेशन जो है वो हम लोग का फिर वहीं से अटैच होता है। बिल्कुल शहर अपने साथ लेके चलते हैं भाई, और खुश हैं कि हमेशा रहे इसे शहर अपने साथ।
1: लोग कहते हैं कि जब एक ऊंचाई पर आप पहुंच जाते हैं, बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, तो नीचे की चीज़ें दिखाई पड़ना बंद हो जाती हैं, ऐसा है क्या?
0: नहीं सर, ऐसा कुछ है नहीं, अभी ऊंचाई पे पहुंचे भी नहीं है जहाँ से नीचे देखना बंद कर दें। हम लोग सीधा चलते हैं, ऊंचा नहीं चलते हैं। लाइफ में लाइफ जो है ये बातें होती हैं वो अलग उसका है, पर मुझे नहीं लगता है कि कभी अगर सीधी जिंदगी चल रही है तो आप कुछ अपना पुराना कुछ भूल नहीं सकते, वो आपके साथ ही रहता है।
1: रेडियो सुनते थे कभी?
0: रेडियो बहुत सुनते हैं, सुनते थे भी। जगह पे आप काम कर रहे हैं इसका एक चैनल आईडी है, जिसको सुनते ही जो है आप ये जान लीजिए कि दूसरी बात समझ में आती है। अभी भी हम लोग बात कर रहे थे भूली बिसरी यादें जो था,
1: भूले बिसरे गीत
0: जी। उसके बारे में उसकी एक कहानी कहना उस गाने की, वो बहुत ज़ोरदार चीज़ है। यही इसी आकाशवाणी की वजह से आप सोच लीजिए कि मुझे करीब 4 से 5 हज़ार गाने तो याद हैं। अगर
1: 4 से 5 हज़ार गाने,
0: उसका आइडिया ये था कि हम लोग पहले एक शर्त लगाते थे कि पहले ही म्यूजिक पे जो अगर बता दे कौन सा गाना है, शुरू के 10 सेकेंड 15 सेकेंड जैसे मुखड़ा आने के पहले ही जो म्यूजिक होती है, और जिस तरीके से डिटेलिंग में जो है क्या नाम से आकाशवाणी डिटेल में बताता था। फिर किसान का प्रोग्राम होता था ना
1: पंचायत,
0: वो बहुत था, और उसके बीच में गाना भी, फिर एक शहीदों का एक बहुत
1: जयमाल।
0: हाँ, वो सब जो है उससे हम लोगों को जो है, और क्या था कि घर वाले जो थे इस आकाशवाणी की वजह से म्यूजिक को लेके घर में ही चलता था ये।
1: अच्छा।
0: कोई मना नहीं करता था ये टीवी जब नहीं जमाए घर में, बहुत देर में टीवी आई, पर रेडियो नाम की एक चीज़ थी जिस पे ये जो चलता था, कुछ तो 108 पॉइंट कुछ ऐसा कुछ आईडी था ना,
1: 100 पॉइंट
0: वो मिला के जब मिलता था तो वो उसे कहते हैं। क्रिकेट कितना सुना है हम लोग इसमें,
1: कमेंट्री।
0: हाँ और क्या, और इतनी अच्छी, मतलब वो उसे कहते हैं कि अब आप जब सुबह जा रहे हैं कहीं रास्ते में तो एक साथ सब जगह वही चल रहा है,
1: क्या बात है,
0: तो वो याद रहेगा।
2: इलाहाबाद से जब आप गए, कितना मुश्किल था नए शहर को अडॉप्ट करना?
0: देखिए नया शहर तो बम्बई बहुत टफ है ही है
2: जी,
0: पर उसकी सबसे अच्छाई क्या है उस शहर में कि वो थोड़ा सा हिला के आपको ठीक कर देता है कि अब काम करना पड़ेगा। आप जितना काम करेंगे उस हिसाब से आपकी लाइफ चलती जाएगी, तो मैंने भी उसको जो है वैसे ही अपनाया। अब जब समझ लिया था कि अब आगे जिंदगी जो है खतरे से भरी होने वाली है।
1: फैजल भाई, हमारे जो ग्रामीण कार्यक्रम की आपने बात की, रूरल प्रोग्राम की, तो उसके एक बहुत ही अच्छे प्रेजेंटर थे कैलाश गौतम
0: जी,
1: बहुत अच्छे कवि भी थे
0: जी।
1: उनकी दो लाइनें हैं कि जब से आया मुंबई मेरी नींद हराम, चौपाटी तुझसे भली लोकनाथ की शाम। ऐसा है क्या?
0: देखिए नींद वाला चक्कर तो है वहाँ पे, क्या है कि ऐसी कहानियों से भरा शहर है ना वो, कि वो गए थे ऐसा हो गया,
1: सपनीला शहर,
0: वो गए थे वो बन गए, वो गए थे ऐसा हो चुका है
1: जी।
0: और हम लोग में क्या होता है कि 100 में से 5 ही कहानी ठीक है, 95 बहुत खराब सुनाई गई थी, तो उसमें से तकलीफ बड़ी चीज होती है। वो शहर जो है मार देता है कि भाई ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर काम करने के लिए गए हैं, बाकी आशाइश करने गए हैं तो आपकी बात अलग है, आप घूमते रहिए फिर।
1: अनूप जी, आप तो फैजल भाई के बचपन के मित्र हैं
3: जी,
1: कुछ वहाँ से शुरू करिए, क्योंकि अब तो हम एक स्टार फैजल मलिक को जानते हैं, आपके लिए अभी भी वो पुराने वाले फैजल होंगे। कुछ बदमाशियाँ, कुछ शैतानियाँ, कुछ ऐसी यादें जो शायद कभी भुलाए ना भूलें।
3: एक बड़ा अच्छा वाकया है
1: जी,
3: क्लास 11th में थे हम लोग, मेरा किसी से झगड़ा हो गया कोचिंग में, तो हम लोगों ने प्लान किया कि कल उसको मारने चलना है। तो ये हुआ कि सुबह कोचिंग में मारने चलना है, तो हम थे, फैसल थे, एक दोस्त और था, 3 लोगों का ग्रुप बना कि 3 लोग मिलकर उसको मारेंगे। तो पहले 2 लोग मेरे घर आए, हम लोग पराठा चार का आए सुबह सुबह 9 बजे, उसके बाद ये हुआ कि अब मारने चलना है। गए हम लोग कोचिंग में, कोचिंग ख़त्म हुई, वो लड़का निकला, उसको हमने कॉलर पकड़ा, फैसल मारे ही ना उसको। तो मेरा जो दूसरा पार्टनर था उसने फैसल को मारा। तुम यहाँ क्यों आए हो? तो फैसल गुस्से में आग लगे उसको मारने। ये इतना हसीन वाकिया था कि मारने गए हैं पहले मार खाए, फिर उसके बाद जो है, फिर जब बाद में हम लोगों ने इनसे पूछा कि तुमने मारा क्यों नहीं, ये कह रहे मुझे गुस्सा ही नहीं आ रही थी उसको देख के। इतना हसीन वाकिया था। और हम लोगों ने एक साथ साइकिल के डंडे पे बैठ के सफर बिताया है,
1: क्या बात,
3: क्लास 9th

0: में कभी ये लड़ाई, इसी बात की लड़ाई हो रही है कि तुम अब हम ही चलाएंगे क्या, तुमको भी चलाना पड़ेगा, पीछे बैठे हैं दौड़ा रहे हैं। तो
1: उसका
0: बहुत
1: बहुत
0: इतना बचपना है हम लोगों का, कैंटीन की चाय समोसे पैसे का झगड़ा कि इतना ही पैसा घर से मिला इसी में तीनों लोगों को खाना है। तो बहुत सारी ऐसी खट्टी मीठी यादें हैं। और आप समझिए कि वो 94-95 का साथ और आज तक वही फैसल है जो उस समय 94-95 में था, वही 2025 में है। आई डोंट फाइंड इवन अ माइन्यूट डिफरेंस। मैं 35 साल में, मेरे पास कोई ऐसा 30 साल का सफर में नहीं है कि मैं ये कह पाऊं कि फैसल में ये चेंज हुआ स्टार बनने के बाद। वो आज भी वैसे ही है
1: क्या
0: जैसे
1: बात
0: पहले था, वही 11-9 का फैसल आज भी है।
2: ये बात कह रहे थे आपके बारे में,
1: जी
2: ये बात जताना कितना मुश्किल होता है कि यार मैं अभी स्टार दुनिया के लिए हो गया हूं, लेकिन अभी मैं वही आदमी हूं। क्योंकि दुनिया की नजर तो बदल जाती है आपके प्रति जब
1: जी
2: आप
1: जी
2: सफल होते हैं।
1: जी
2: दुनिया जब आपकी सफलता देखती है तो एक आवरण ओढ़ा देती है सफल होने का,
1: बिल्कुल
2: लेकिन जो आदमी सफल हुआ है ये बात जताना उस आदमी के लिए कितना मुश्किल है कि आप जिस सफलता की बात कर रहे हैं उस सफलता के मायने उतने नहीं हैं।
1: पर है वो, उसका क्या होता है कि वो आप उस दुनिया में जाइए ही नहीं जहाँ पे ऐसे, मैं बहुत अवॉइड करता हूँ सब
2: जी
1: ऐसी जगह जाके जहाँ पे वाह वाह वाह वाले लोग नहीं होता है। मेरे अपने बहुत ढेर सारे दोस्त हैं,
2: जी
1: मेरा अब काम के अलावा दोस्तों के साथ लाइफ रहती है। उससे बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो नॉन फिल्मी हैं,
2: अच्छा
1: मैं नहीं रहता हूँ ज़्यादा फिल्म में, क्योंकि आप 24 घंटा सेम चीज़ नहीं कर सकते। वो मैंने
2: बिल्कुल
1: किया था एक टाइम पे 10-15 साल, मैं सुबह से लेकर रात तक ना सिनेमा सिनेमा सिनेमा नहीं होता है। पर वो क्या होता है कि वो अपने माइंड को, वो माइंड सेट को रॉन्ग किए रहता है वो। सेकेंड बात क्या है ना भाई, कि मुझे नहीं लगता है कि अभी सक्सेस हुआ है मेरा, अभी अभी तो शुरू हुआ है,
2: जी।
1: अभी तो बहुत टाइम चीज़ बची है।
2: अच्छा, घर
1: इसलिए
2: वालों में कुछ जो बचपन में तो कभी भी कुटाई हो जाती थी, तो अभी कुछ
1: हाँ
2: सम्मान बढ़ा
1: नहीं
2: है
1: सर, वो
2: या
1: वैसा ही चक्कर है, वहाँ वहाँ कैसे हो सकता है। वो लोग सेम ही लोग हैं जो घर का
2: अभी
1: दरवाज़ा बंद कर देते हैं कि टाइम से आना, कल ही की बात है कि बंद हो जाए दरवाज़ा, चलो घर से,
2: भी
1: और क्या, बंद हो जाता है दरवाज़ा, तो बंद कर दिया जाता है, आप चाहे कोई भी हो बैठे रहिए बाहर। वो जो है वो घर के दरवाजे वाला जो खेल आज तक नहीं सॉल्व हो पाया है, तो बाकी चीज़ क्या। और दूसरा क्या है कि नॉर्मल से लोग हैं भाई हम लोग यहाँ पे, मतलब हम लोग, मैं कभी कुछ किसी से उल्टा सीधा भी बात करूँ ना तो फ़ोन आ जाता है लोग किसी जगह पे ना कि पता चला तुमने ऐसा बोला है,
2: अच्छा
1: दोस्ती यार बात है ठीक हो जाओ। तो वो कंट्रोल है, और वो मेरे दोस्त यार हैं अच्छे खासे, मतलब आप नंबरों में नहीं बहुत हैं।
2: मतलब वो जो
1: क्या
2: तालीमी जिंदगी थी, जो संस्कार दिए गए, वही अब कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि
1: उसको बदल नहीं सकते ना,
2: बदल नहीं सकते।
1: क्या करेंगे। 2 मिनट फोन आ जाता है किसी का, कोई डांट देता है फोन करके कि अच्छा ऐसा नहीं होता ये सब हो रहा है, तो वो कंट्रोल रहता है और अच्छा भी है यार। उतना अभी इतनी चीज़ें हुई नहीं है। सक्सेस जो है मेरे हिसाब से, एक बार जैकी श्रॉफ ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि सक्सेस उसे कहते हैं जब आपकी वजह से 100-200 लोगों के घर का खाना चल रहा हो, उस दिन आप शांति से बैठिए, वरना बाकी टाइम आप काम करते रहिए।
2: सही बात है।
1: तो वो मैंने पकड़ ली है बात उनके साथ काम करने के साथ, कि वो जैसे मतलब कि वो इतना होना चाहिए, वरना सक्सेस है नहीं सर किसी का नहीं। क्या है
2: जब हमने पंचायत देखी, किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये एक कल्ट बन जाएगी। उसके 3-4 सीजन्स आ चुके हैं,
1: चार
2: 4 सीजन्स। तो जो प्रहलाद चा का रोल आपने किया, या उसमें बाकी सारे ही एक्टर्स ने बहुत अच्छा रोल किया, और वो लग ही नहीं रहा था कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। एक होता है एक्टिंग करना, वो दिख जाता है कि नहीं कोशिश करके की जा रही है। उसमें ये लग रहा था कि नहीं, ये यही है, ये हो ही रहा है, चाहे वो विनोद की एक्टिंग हो चाहे आपकी एक्टिंग हो। क्या उसने आपकी जिंदगी को कुछ इस तरह से बदला कि आप जो है उसमें बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए
1: देखा है कि
2: अभी
1: वो
2: भी?
1: जब सीरीज़ बन रही थी तो हम लोगों को किसी को पता नहीं था कि वो इतनी बड़ी हिट होगी,
2: जी
1: प्लेटफॉर्म को भी नहीं पता था,
2: जी
1: वो बन रही थी बस, वो कि चलो देख लेते हैं गांवों की है, देखेंगे कौन देखेगा। उस कहानी का सबसे बड़ा हीरो उसका राइटर है,
2: सही
1: जिसने हम
2: बात
1: लोगों को लिखा है।
2: है जी।
1: तो हम लोगों ने पहली बार से जब उसको पढ़ा लिखा बैठे तो उसके बारे में डिस्कशन शुरू हुआ, रिहर्सल बात करेंगे कैसे।
2: जी
1: और सीरीज़ एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आपको हर साल रिकरिंग थॉट में कैरेक्टर बनाना पड़ेगा, फिर से
2: बिल्कुल
1: करना पड़ेगा उसे, आप छोड़ के जा नहीं सकते उसे। तो उसके लिए जब उसको पढ़ा तो इतना आसान, आसान सबसे टफ चीज़ होती है लिखना।
2: सही बात है
1: आप दुनिया क्राइम थ्रिलर लिख डालिए, उसमें चार चीज़
2: बिल्कुल
1: डाल के आप चार आदमी की बात नहीं लिख सकते हैं जो बैठ के कर रहे हैं कि पब कैसे लगेगा,
2: सही
1: उसमें ही
2: बात है
1: कॉमेडी चल रही है।
2: जी।
1: ये नॉर्मल लिविंग लाइफ में होता है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। तो चंदन जो हमारे राइटर हैं उनके साथ बैठ के चलता है महीना भर कि होता कैसे, क्या क्या सोचा क्या सोचा। वो चेंज नहीं कर सकते फिर, क्योंकि उस आदमी ने सोच के लिखा। देखिए उसने एक
2: जी
1: साल 1.5 साल में लिखता है एक सीरीज़,
2: जी
1: सबसे ज़्यादा समय किरदारों के साथ वो रहता है, हम नहीं रहते हैं। हमको तो बाद में मिलता है ना लिखा लिखा है, वो 10 ड्राफ्ट लिखने के बाद लिखता है, पूरा पूरा साल लेता है एक एक। तो उसकी उसको ज़्यादा क्लैरिटी से पता है कि ये आदमी कौन कैसा दिख रहा है, एक बार वो आदमी क्रैक हो

0: तब उसको पकड़ के चलना है। उस आदमी का बिहेवियर, उस आदमी की ज़िंदगी, उस आदमी का अगर गुस्से में आएगा तो कितना ही आएगा, या गुस्से में नहीं आएगा तो कितना आएगा। नॉर्मल लिविंग लाइफ में जैसे लोग रहते हैं वैसी कहानी है वो।
1: अच्छा, वो कैरेक्टर जब पॉपुलर हुआ
0: जी,
1: उसके पहले का फैजल और उसके बाद का, वो पॉपुलरिटी स्वीकार करने में कितना आपको मशक्कत करनी पड़ी?
0: मशक्कत नहीं, पे क्या था कि पहला तो कोविड वन में आया था।
1: हाँ,
0: 2.5 दिन में उन्होंने शो ऑन एयर कर दिया
1: जी।
0: दुनिया बंद थी तो हम लोग को पता नहीं था, दुनिया इंटरनेट पर दिख रहा था कि शो हिट है, मतलब रात भर फोन बज रहा था। हर बार मैं फोन के रिंग से समझता हूँ शो हिट हुआ है कि नहीं हुआ है
1: जी।
0: उस रात पूरी रात फोन बजा था, रात सुबह 7-8-10 बजे, जो लोग देख रहे थे ना, कोई फेसबुक पर लिख रहा है शो ऐसा फैला ना, और दुनिया बंद थी, हम लोग को इस बात का पता ही नहीं था कि यार ये हो गया है क्या। जब देश खुला, हम लोग रोड पर निकले ना, एयरपोर्ट पर, यहाँ वहाँ पर, तब पब्लिक को देखा कि पब्लिक ने किस तरीके से शो को देखा है। फिर कोविड 2 हुआ, सेकेंड सीजन आया, उस टाइम मेरे फादर की डेथ हो गई थी, तब निकला, उस 1 से बड़ा 2 हो गया था, वो बड़ा शो हो गया था उससे, वो कहीं और पे चला गया था। तब तो ये था कि कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी जा रहे हैं, पब्लिक चिल्ला रहे हैं कि कोई रोक रोक के बात कर रहा है, तो वो एक्सेप्टेंस तो नहीं होता ना कि क्या हो रहा है।
2: फैजल भाई, आप ये बात कह रहे हैं, मैं आपको एक सूचना देना चाहूँगा कि ये जो परम मित्र आपके बैठे हुए हैं, मुझे ऐसा ज्ञात हुआ कि बहुत दिनों तक, इवन सीजन 2 आ गया तब तक इन्होंने पंचायत नहीं देखी थी, जब इनके घर वालों ने इनको खरी खोटी सुनाई है तब इन्होंने देखी। ऐसा है क्या रूप जी?
0: मेरे काफी दोस्त ने नहीं देखी। मेरा एक दोस्त है, मुझे फोन करके बोलता है कि तुम टीवी मत आया करो, हमारा बच्चा डर जाता है। मैंने कहा ठीक है, ओके। तो मेरे जो स्कूल के ग्रुप है ना, उन्होंने आपस में, भाई मेरे बहुत से दोस्त हैं जो नहीं देखे, मेरे काफी काम नहीं देखा हुआ है, और फिर सबके सामने पूछो देखे हो तो झूठ बोलना आंखों में से करना, देखा तो है, परसों देखा था, पूछो क्या किया था उसमें, देख लेंगे फिर बताते हैं। तो मेरे बहुत से दोस्त हैं।
2: अनूप जी, कैसा लगता है साथ का अपना एक ऐसा दोस्त जो हर घड़ी साथ रहता हो और आज कहाँ पहुँच गया?
3: एक्चुअली हमें शो देखने से ज़्यादा हमें ये प्राउड फील होता है कि हम देखते हैं कि फैसल की ये रिस्पेक्ट है, हम उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। अब हमारा तो ये है कि हम फैसल एक ही हैं, फैसल ने कुछ किया है तो हम तो फैसल को डायरेक्ट, हमारा बच्चा कहता है आप अंकल को हल्के में लेते हैं, रमने का वो हल्के में है, अभी फोन करके कहो चार बात सुनाए, तो वो कहता है, उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। दोनों बच्चे मेरे लड़ते रहते हैं कि मुझे जो है अंकल से मिलना है, अंकल से मिलना है। फैसल बहुत प्यार करते हैं दोनों को, जब आएंगे घुमाएंगे, डिनर कराएंगे, तो हमारे लिए ये ज़्यादा प्राउड मोमेंट होता है जब लोग अप्रिशिएट करते हैं फैसल को।
2: फैजल भाई, हम रेडियो में हैं, रेडियो की बात कर रहे हैं, आपका रेडियो से बहुत लंबा जुड़ाव रहा है, आपने जिन कार्यक्रमों के नाम बताए वो अभी भी उसी तरह से सुने जाते हैं। लोग कहते हैं कि रेडियो सुनता कौन है, अब आपको ऐसा लगता है?
0: सर, मैं आपको सच बता रहा हूँ, रेडियो का दो पार्ट है, एक रेडियो, क्योंकि नौकरी भी कर चुका हूँ काफ़ी चैनल वैनल में
1: जी,
0: तो मैं बहुत कर चुका हूँ मैं सारे काम जिंदगी में, फिल्म मेकिंग के जितने भी प्रोसेस होते हैं ना उससे जा चुका हूँ। रेडियो एक ऐसी चीज़ है कि रात के जो एक शोर वाला रेडियो है, ठीक है
1: जी,
0: उसमें क्या होता है, शोर हो रहा होता है, लोग चिल्ला रहे होते हैं, और एक धैर्य वाला रेडियो जहाँ पे आप हैं, जिसको सही में आप रात में ट्रैवल कर रहे हो, आप किसी जगह पे रुकी और रात में आकाशवाणी चल रहा होता है, लोग बैठ के उस जगह बैठ के बात कर रहे होते हैं,
2: लता जी की आवाज़ आ रही है लग जा गले
0: जी, जब आपके जो है लग जा गले, फिर हंसी रात हो ना हो, क्योंकि जितना ज़्यादा म्यूजिक का बेस्ट लाइब्रेरी आपके पास है ना, लाइब्रेरी इन द सेंस की सेंस ऑफ म्यूजिक को सुनाना उस टाइम पे, वो कहीं नहीं है किसी के पास। और इसीलिए कहते हैं ना कि आप दो चीज़ें, एक्सपीरियंस में और प्रैक्टिकलिटी में बहुत फ़र्क होता है, आप लोग एक्सपीरियंस लोग हैं, आप अगर 100 साल बाद भी ना आकाशवाणी लोग आएंगे सुनने के लिए, क्योंकि ये ऐसा अब वो कोई छोड़ के जाने वाला है,
2: कोई ऐसी याद, क्योंकि ये कार्यक्रम है यादों का कारवां, जो रेडियो से जुड़ी हुई हो या खासकर शहर से जुड़ी हुई हो।
0: देखिए, जहाँ पे आपका ऑफिस है ना, ये जहाँ पे, जैसे नहीं कहते हैं कि ये सब चीज़ें पहले जब नहीं थी तो लोग कहते थे यार सब नाटक उटक करते रहते, रेडियो में कर लो कुछ जाके। तो कहता यार रेडियो में हमको लेगा क्या, कोई लेगा तो है नहीं, आता क्या है, कहना अरे बोल दोगे हो जाएगा।
2: आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, मैं ये,
0: अरे थैंक यू सर, बस आपने मुझे एक नया काम दे दिया कि कुछ नहीं होगा तो मैं यहाँ पे,
2: अरे बिल्कुल स्वागत।
0: पर ये है कि इस आकाशवाणी से या फिर रेडियो से जो है ना, बहुत ढेर सारे प्यार मोहब्बत की चीजें हुई हैं।
2: क्या बात है।
0: ये जो है, और ये क्या है कि इमोशनल अटैचमेंट है ये
1: जी।
0: आपका कम्युनिकेशन डिवाइस था बहुत पहले ये, क्योंकि मेरे एक बहुत ही जानकार थे, दोस्त थे, उन्होंने वो चिट्ठियां लिखते थे।
1: अच्छा।
0: ये बहुत पहले बड़ी अच्छी चीज थी, पता है, रेडियो के थ्रू, मतलब अब तो नहीं लिख रहे होंगे, अब तो बड़ा, पर उन्हें कम्युनिकेशन इतना करेक्ट था ना, लोग पढ़ते थे ना चिट्ठियां, पढ़ते थे बहुत।
2: जी जी जी जी,
0: मेरा नाम
2: झुमरी तलैया
0: सुनील,

0: मैं
1: बताओ
0: यहां
1: जी।
0: से ये बोल रहा हूं, ऐसा बोल रहा हूं, ऐसा बोल रहा हूं। ये सब चीजें सुनने का जो मजा होता है ना, कि उसने लिखा क्या है। लोग दोस्तों की जो है चिट्ठियां लिखते थे, लोग जो है भाई बहन चिट्ठियां लिखते थे, प्यार मोहब्बत तो अलग है ही है,
1: जी
0: पर वो कम्युनिकेशन, वो सोचना, वो आइडिया। रेडियो पे आप किसी की चिट्ठी पढ़ रहे हैं कि आपकी बड़ी याद आ रही है, उसने लगा दिया गाना, आप फिर बैठ गए। वो कहानी और ऑल में जो है ना, जो है बहुत बड़ी, इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाया है नीलेश मिश्रा जी
1: हाँ बिल्कुल
0: ने मेरे भाई हैं वो, मतलब मैं
1: बिल्कुल
0: उनको
1: हाँ
0: बहुत ही
1: हाँ
0: बहुत प्यार करता हूँ,
1: बहुत अच्छा काम किया
0: बहुत
1: आपने।
0: अच्छा काम किया। पर वही कहते हैं ना कि वो दुनिया अभी भी है आसान। देखिए 10 घंटे का रेडियो कहीं चल रहा है, पर रात में लोग याद वाली कहानियां सुनने आते हैं। हिंदुस्तान जो इमोशनल देश है ना,
1: जी
0: लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं यहाँ पे,
1: भावनाओं पे चलता है
0: भावनाओं
1: ना,
0: पे चलता है सर।
1: क्या बात है।
0: और आकाशवाणी से है भावना, क्योंकि आप लोग का अभी तक है, वहां तक जाके होता है म्यूजिक। अभी भी अंदर आया तो एक बड़ा अच्छा गाना आप लोग सुन रहे
1: जी
0: थे।
1: आया तेरे दर पे,
0: आया
1: चलो
0: तेरे दर पे
1: फैजल भाई, दुनिया बहुत जल्दबाजी में है, बहुत
0: जी।
1: तेज़ी से आगे निकल रही है। ऐसे में एक ऐसा शहर जो आराम पसंद हो, जिसको कहीं पर बैठ करके सुस्ताना अच्छा लगता हो, कहते हैं कि हनुमान जी भी यहाँ पर आकर के लेट गए थे, ऐसे शहर से निकल कर

0: अभी तक है, वहां तक जाके होता है म्यूजिक। अभी भी अंदर आए तो एक बड़ा अच्छा गाना आप लोग सुन रहे
1: जी,
0: थे। हाँ,
1: आया तेरे दर पे।
0: आया
1: चलो
0: तेरे दर पे। जी
1: फैजल भाई, दुनिया बहुत जल्दबाजी में है, बहुत तेज़ी से आगे निकल रही है। ऐसे में एक ऐसा शहर जो आराम पसंद हो, जिसको कहीं पर बैठ करके सुस्ताना अच्छा लगता हो, कहते हैं कि हनुमान जी भी यहाँ पर आकर के लेट गए थे, ऐसे शहर से निकल करके मुंबई जैसे शहर जाना जो कभी सोता ही नहीं है, जिसके बारे में कहा जाता है, क्या कभी वो सुकून, वो सुस्ताना, वो अल्हड़पना, वो एक आराम पसंदगी याद आती है?
0: बिल्कुल आदि सर, क्यों नहीं आएगी। ये घर था, ये लाइफ है दोस्त। क्या होता है कि कुछ करने के लिए कुछ जाएगा ही जाएगा लाइफ, तो अगर करना है तो ये सब बंद करना पड़ेगा। क्योंकि वो कब तक होगा वो, क्योंकि हम लोग के माँ बाप तो थे नहीं कि पैसा वैसा हो कुछ ये कर लेंगे। हम लोग तो राय मिलती थी तो वकील बन जाओ। बट क्या है, वो हो नहीं पाया। मैं गया था सब करने के लिए, 5 साल का ये कर लो, 3 साल का ये कर लो, तो मैंने खुद ही सरेंडर कर दिया कि हो नहीं पाएगा मुझसे। हाँ, पर उसका एक कॉस्ट है जीवन में जो पे करना पड़ेगा, वो है कि फिर अब फिर करेंगे फिर अब। और दूसरी बात क्या है कि सिनेमा से प्यार होना चाहिए, सिनेमा में काम
1: बिल्कुल
0: करने के लिए।
1: बिल्कुल
0: वो फिर जो है फिर किया गया उसको, फिर वैसे ही तो नहीं होता, नहीं रेस्ट नहीं मिलेगा, मिलेगा। बड़े बड़े स्टार हैं, उन्होंने बोला था कि मैंने पूछा उनसे कि सर आप सोते नहीं, कहने मर के सो जाएंगे ना यार बाकी सब। वो जो उसने बोला, मैंने कहा भाई ये आदमी 6 दिन से आता है यहाँ पे काम करने, वो सुबह शूट करता है और शाम को एडिट पे आता है, 2 घंटा सो रहा है, और हम लोग 6 दिन लगातार इस प्रोसेस में उनको देख रहे थे। तो मैंने एक दिन पूछा उनका, सर आप सोते नहीं? कह रहे थे मर जाएंगे तो सो जाएंगे ना। वो तभी कह सकता है इंसान जब उसको उस पिक्चर बनाने के मीडियम से प्यार हो, नहीं तो फिर वो वाला काम नहीं ना, वो अपनी चॉइस का काम है।
1: फैजल भाई, फैजल मलिक के लिए एक जो अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन होता है, जो एक सबसे बड़ी आत्मसंतुष्टि होती है, जो गोल होता है, वो क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि अब बस, अब
0: नहीं नहीं
1: या
0: सोचा तो नहीं, मुझे खाली है कि जिस ऊपर वाले ने मुझे कुछ चीज़ सिखाई और मैंने उसमें काम किया, और काम करते करते मुझे काफ़ी साल हो गया। अब मुझे जहाँ पे हूँ, जहाँ से आगे अब कहानी पता नहीं कहाँ जाए, कल सुबह आज चल रहा है कल नहीं चलेगा, बट ये है कि पिक्चर फिल्म मेकिंग जो है ना सर, उससे खूबसूरत काम नहीं इस दुनिया में, जिस काम में आप है ना उससे। क्योंकि इस दुनिया में जिसको कहते हैं म्यूज़िक से रिलेटेड आप लोग हैं ना, आप हैं, हम हैं, सब लोग हैं,
1: जी
0: हम लोग के ऊपर प्रेशर नहीं इतना जीवन में। आप उस आदमी से पूछे जो बेचारे को रोज़ सुबह गाड़ी पे बैठ के नौकरी करने जाना होता है, वापस में बैठ के ईएमआई पे, सबकी ईएमआई से टेंशन नहीं,
1: बिल्कुल
0: बट ये जो चूज़ हमने किया है ना मीडियम, वो मीडियम आपको कहीं ना कहीं धैर्य दे देता है, आपको शांत कर देता है, आप शांति से बैठते हैं कि कल देखेंगे।
1: क्या
0: उस रैट
1: बात
0: रेस का पार्ट नहीं फिर आप,
1: हाँ
0: ये
1: जी।
0: आप जान लीजिए, ये आपकी चॉइस है, मेरी भी वही चॉइस है।
1: अनूप जी, खाने में क्या पसंद है फैजल भाई को? क्या कुछ विशेष खाने की बात अभी उन्होंने करी थी?
2: नहीं, फैसल भाई को जो है मेरे घर की कचौड़ी बहुत पसंद है।
1: क्या बात है
2: हाँ, ये उसको बहुत मिस करते हैं और इलाहाबाद आते हैं
1: जी।
2: तो हम लोगों की कोशिश रहती है कि एक दिन मेरे घर पे इनको खस्ता कचौड़ी और दमालू और रसेदार सब इनको देसी खाना खिलाया जाए।
0: हम लोग खाने के चक्कर है,
2: हाँ
0: आपने मुझे
2: तो
0: सेहत देख के लगा
1: नहीं नहीं
0: होगा,
1: वो
0: मैं एक टाइम का खाना खाता हूँ दूसरे के सोचता रहता
1: जी
0: हूँ। आपको पता है मैं खाने के बारे में सोचते थे, हम लोग का ग्रुप भी है, सब लोग आपस में बात भी करते हैं,
1: अच्छा
0: अभी खाना खाएंगे और शाम के 2 घंटे के बाद क्या खाना खाना उसका डिस्कशन हो जाएगा अब तक।
1: फैजल भाई, बहुत सारे जो युवा हैं, भारत विश्व का सबसे युवा देश है,
0: जी
1: इस वक्त आपको हमारे माध्यम से सुन रहे होंगे, और उनके मन में भी, उनकी आंखों में कुछ सपने होंगे कि हम भी कहीं जाएं, कुछ बने, कोई मुकाम हासिल करें, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे ज़रूरी क्या है कोई ऐसे मुकाम पर पहुंचने के लिए कि दुनिया आपको जाने और आपके साथ खड़े होने की चेष्टा करे, सपना हो उसका?
0: मेरी भाई अपनी अभी लर्निंग है, सब किसी को शायद इससे वैरी करे ना करे, आज की डेट में किसी भी चीज़ को, जब चाहे युवा हो चाहे, पेशेंस की बहुत सख्त बड़ी ज़रूरत है।
1: बिल्कुल
0: पेशेंस इसलिए ज़रूरत है क्योंकि इतना इन्फॉर्मेशन उसके फ़ोन पे है कि वो उसको जो है ना, क्या हो गया, हम लोग के पास था नहीं तो हमको स्टेजेस में मिला है, तो हमने उसको अडॉप्ट किया, करते गए अडॉप्ट किया। उनके पास क्या है कि गिरे ही हैं वो गूगल पे, वो गूगल उनका जो है नेक्स्ट भाई बहन है, वो उससे ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं गूगल पे, अपने फैमिली से ट्रस्ट करते हैं, उनके लिए सवाल जवाब वही है। वो क्या कर रहा है कि वो पेशेंस उनका खोए जा रहा है। तो आप चाहे कुछ भी करना चाहें लाइफ में, कुछ भी करें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कुछ भी करें, धैर्य सबसे बड़ी तलवार है, आपके सब पास होनी चाहिए।
2: लेकिन आज के युवा को तो 30 सेकंड का
0: वही
2: वो
0: मैं कह
2: ही
0: रहा हूँ, वो अब
2: उनका
0: वो
2: डोपामाइन
0: उन्होंने
2: बूस्ट कर रहा है।
0: वो वही कह रहे हैं कि वो देखिए बुरी बात नहीं है क्योंकि उनके पास है इतना, हमारे पास
2: जी
0: नहीं था तो हम लोग
2: सही
0: बैठे
2: बात
0: बाहर खेलते थे पार्क में, वो तो गिरे ही, उनके पास टीवी है, इंटरनेट है, 5G चल रहा है, तो उनकी भी नहीं गलती है ना, उनके पास इन्फॉर्मेशन इतना ढेर सारा हो गया है कि वो जज नहीं कर पा रहे हैं हाउ टू डू इट, वो अपना अपना सेंस या अपना प्रैक्टिकलिटी में जाके उसको एक्सपीरियंस नहीं करना।

0: चाह रहे हैं, वो दूसरे के एक्सपीरियंस देखते हैं, वो उससे अपना एक्सपीरियंस बना लेते हैं, फिर वो कन्वर्ट करके उसको साइंस में बता देंगे कि ऐसा नहीं ऐसा होता है। तो मेरा ये कहना है कि नहीं करना चाहिए फिजिकली। और माँ बाप भी आजकल बेचारे ऐसे हो गए कि डरे हुए, मतलब डर के बारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आप देख, हर एक माँ बाप को देखो डरा हुआ है,
1: सही
0: वो
1: बात
0: कहता है ये नहीं होगा वो नहीं होगा, हमारा बच्चा इंग्लिश बोलेगा, हमारा बच्चा
1: जी।
0: यही करेगा, वो नहीं करना चाहिए। माँ बाप ने बहुत बहुत डरा रखा है, वो लाखों रुपए दे के आप क्या कर रहे हो, डरा रहे हो ना उनको।
1: जी रजल भाई, एक बात ये मैं आपसे पूछने भी वाला था, क्योंकि तब मोबाइल नहीं था
0: हाँ
1: जब आप इस 15-20 साल की उम्र में रहे होंगे, या अगर होगा भी तो इक्का दुक्का लोगों के पास रहा होगा। हम मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे। आपको क्या लगता है, इस मोबाइल के आने के बाद से चीज़ें, जो एक सुकून था मन का, जो एक कहीं ना कहीं खो गया है, या उस
0: नहीं,
1: समय
0: देखिए
1: आप कैसे समय
0: क्या,
1: बिताते थे?
0: टेक्नोलॉजी का बड़ा एब्रप्ट रीज़न होता है, वो पॉजिटिव होता है नेगेटिव भी होता है।
1: बिल्कुल
0: तो टेक्नोलॉजी तो हमेशा बढ़ने ही वाली थी ना, आज आज हम इस दुनिया पे, आप देखिए आगे जाके 10 साल बाद 20 साल बाद आपके पास मोबाइल भी नहीं रहेगा, आप कुछ सर्वर बेस्ड कुछ दुनिया में चल रहे होंगे, बहुत से
1: जी
0: वर्ड में काम भी चल रहा है इसके ऊपर। AI नाम की एक शॉर्टकट आपकी दुनिया में आ चुकी है,
1: जी जी
0: ChatGPT आ चुका है, तो आपसे अपना सवाल तो रहा नहीं है ना। आप उससे पूछो, आपका दोस्त बोलेगा ये मत खाओ पेट में दर्द होगा, नहीं मानेगा, गूगल में जाके देख के पढ़ के बताएगा नहीं इस रिटन हेयर।
1: सही
0: तो
1: बात
0: रेफरेंसिंग रॉन्ग हो गई है, आप अपना रेफरेंस अगर करेक्ट करेंगे ना, उसके लिए बेसिक मुझे ऐसा लगता है कि वो जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी किया गया कि इंटरनेट बैन कर दिया गया बच्चों के लिए, कुछ साल के, 16
1: जी
0: साल
1: जी
0: कुछ एज वाइज, उसको वहाँ से निकालना पड़ेगा। वो निकालने के लिए आप मतलब ऐसा तो मतलब बहुत बड़ी बात है कि आप अगर मोबाइल को रोज 4 घंटा बिना रखे चल के दिखा दीजिए ना, वहाँ से शुरू होता है।
1: फजल भाई, बस थोड़ा समय और लेंगे हम,
0: जी
1: एक प्रश्न आपसे और अनूप जी दोनों से पूछना चाहेंगे। उस समय जो परिवार हुआ करते थे, जो फैमिलीज हुआ करती थी, वो जॉइंट होती थी, बहुत सारे लोग घर पे रहते थे। आज का जो समय है, वो कहीं ना कहीं वो एक एकल परिवार, या जिसको हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, उसकी तरफ बढ़ता जा रहा है। आपको क्या लगता है, पहले जब रेडियो चलता था, कोई कार्यक्रम आता था, या दूरदर्शन पर कुछ आता था, तो पूरा परिवार एक साथ बैठ करके देख सकता था। अगर सिनेमा समाज का दर्पण है, तो आपको क्या लगता है, क्या एक जो फैमिली थी, जो उसका बड़ा होना, जो उसका संयुक्त होना, वो फायदा था, या अब जो हम सिनेमा देख रहे हैं, या जो जीवन जी रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छा है?
0: ऐसे सवाल में बड़ा खतरनाक सा जवाब होता है।
1: जी
0: वो
1: बिल्कुल
0: जवाब ये होता है कि हम लोगों ने ना, आपने पहले बताया समाज साथ में देखता था, यही जनता बैठ के ना 20 साल तक साथ भी कभी बहुत ही देखी है, इसमें लोग नागिन सांप बिल्ली चूहा बन
1: जी
0: चुके हैं, और आपने एक्सेप्ट किया है उसे।
1: जी
0: सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी पिक्चर पर नहीं दे देना चाहिए,
1: बिल्कुल
0: पिक्चर अगर देख के लोग सही हो रहे होते तो रंग दे बसंती देखने के बाद हम लोग पायलट बन गए होते हैं कि नहीं।
1: सही बात है।
0: तो नॉर्मली लोग यही सवाल क्या कर देते हैं, डरा देते हैं, आदमी डर जाता है, नहीं हमारे पिक्चर देखिए अच्छा लगा थैंक यू बोलिए, नहीं लगा तो टाटा बाय बाय। सिनेमा सिनेमा समाज की आंख होती है, ये जवाब सवाल बहुत डेंजरस
1: जैसी
0: होता है।
1: कौम होगी, वैसे ही हुक्मरान
0: हाँ
1: मिलेंगे।
0: वही है, क्या करेंगे, देखिए ना आप DD के टाइम पे होता था क्या,
1: सही
0: हम लोग
1: बात
0: इतनी अच्छी अपब्रिंगिंग से आए हुए हैं,
1: जी,
0: हमको तमस दिखाया गया, रिपोर्टर दिखाया गया,
1: बुनियाद
0: स्वाभिमान दिखाया
1: देखी।
0: गया, तो वही है।
1: अनुप जी, ये सवाल संक्षेप में उत्तर चाहेंगे आपसे भी, संयुक्त तो परिवार या एकल परिवार, आपको क्या लगता है, क्या अच्छा है?
2: संयुक्त तो परिवार से अच्छा न कभी कुछ था ना आगे कभी होगा।
0: ये बात
2: मैं खुद 5 भाई हूँ।
1: जी
2: आप ये समझिए कि पहले हम लोग संयुक्त तो रूप से रहते थे, तो कोई भी किसी के बच्चे को देख लेता था, कोई भी किसी के परिवार को देख लेता था। आप घर पे हैं नहीं हैं, आपकी बिटिया सुरक्षित है, आपका लड़का सुरक्षित है। आज के समय में हम लोगों का पार्टीशन हो गया। अब हम घर के बाहर होते हैं तो हमें टेंशन लगी रहती कि घर पे बच्चे अकेले हैं। हमको बाहर जाना है तो दिमाग में रहता है कि 2 दिन के लिए घर पे बच्चे अकेले रहेंगे। ये संयुक्त परिवार से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। एकल परिवार के जो एक कंसेप्ट लेके आए लोग, की आज़ादी,
1: जी
2: कि आज़ादी मिलेगी, सिर्फ एक ही उसका प्लस पॉइंट बताते हैं कि अननेसेसरीली कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा।
0: नहीं, पर पलायन भी तो एक बड़ी बड़ी चीज़ है ना, जॉब
1: बिल्कुल
0: भी तो है ना
1: बिल्कुल,
0: मेरे भाई, कैसे रह पाएंगे, बहुत से लोग इस दुनिया में नौकरी करने जा रहे हैं।
2: ऑप्शन चूज कर लेना एक अलग विषय है।
0: जी
2: परिस्थितियों बस तो आदमी अकेले जी रहा है,
0: हाँ
2: बिल्कुल,
0: बस
2: वो
0: आई
2: तो एक
0: बात
2: अलग विषय हो गया।
0: करेक्ट करेक्ट
2: लेकिन हमारे पास अगर ऑप्शन हो कि हम एकल रहें या संयुक्त रहें, और हम एकल को पसंद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम गलत दिशा में सोच रहे हैं।
1: फैजल भाई, समय पूरा हो चुका है, फिर भी अगर आप हमारे श्रोताओं के लिए कुछ संदेश देना चाहते
0: नहीं
1: हैं।
0: मेरा बस, सारे जितने भी श्रोता लोग हैं जो भी आकाशवाणी को सुन रहे हैं, अपने म्यूज़िक टेस्ट को इसी तरह बरकरार रखिए, सुनिए और अच्छे से रहिए, खूबसूरत रहिए जीवन में, और क्या चाहिए लाइफ में, अगर अच्छे हैं दूसरे से प्यार कीजिए, दोस्त बनाइए।
1: तो श्रोताओं, ये थे फैजल मलिक, जिनको पूरा देश, और देश ही क्यों, पूरा

0: विश्व प्रहलाद चा के नाम से जानता है और इंस्पेक्टर यादव के नाम से जानता है। बहुत अच्छी बातचीत हुई और हम आपको बताएं कि मन तो नहीं हो रहा है कि हम ये बातचीत ख़त्म करें, क्योंकि इतना सहज व्यक्तित्व है इनका, इतना लग ही नहीं रहा है कि हम किसी स्टार के साथ बैठे हुए हैं। और अनूप जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इनको लेकर के आए इतने
1: जी जी
0: व्यस्त शेड्यूल में से। चलते चलते आपको आगे के जीवन के लिए फैजल भाई बहुत सारी शुभकामनाएं और मुबारकबाद, क्योंकि आपको
1: शुक्रिया।
0: सफल होना ही है। आप ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं और जब भी आप प्राकृतिक तरीके से, नेचुरल तरीके से कोई काम करते हैं, तो आपके अंदर का जो आप है वो ऊपर वाला खुद निकालता है, और इस तरीके से निकालता है कि पूरी दुनिया फिर आपको सलाम करती है।
1: अरे शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया
0: ढेर
1: आपने।
0: सारी शुभकामनाएं, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे
1: अरे
0: दोस्त।
1: बहुत बाकी है, बहुत बहुत
0: तो
1: थैंक यू।
0: श्रोताओं, ये थे फैजल मलिक और अनूप कुमार त्रिपाठी, और मेरे साथ में थे हमारे साथी सुंदरम तिवारी। सुनते रहिए आकाशवाणी। आज के आकाशवाणी के 90 वर्ष और यादों के कारवां में बस इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी विशेष हस्ती के साथ। तब तक के लिए मुझे और सुंदरम तिवारी जी को दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: आकाशवाणी के 90 वर्ष और यादों का कारवां श्रृंखला के अंतर्गत अभी आपने सुनी प्रख्यात अभिनेता फैजल खान से अभिनव प्रज्ञा पांडे और सुंदरम तिवारी की बातचीत। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है श्रोताओं की प्रतिक्रियाओं पर आधारित कार्यक्रम चिट्ठी आई है।

0: चिट्ठी आई है कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को वंदना राठौर का नमस्कार। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत प्यारे से संदेश आपके हम तक पहुंच चुके हैं। उन्हीं संदेशों का जवाब देने के लिए कार्यक्रम में उपस्थित हैं कार्यक्रम प्रमुख नेहा गुप्ता जी। नेहा जी नमस्कार।
1: नमस्कार वंदना जी, और सभी सुधीर श्रोताओं को नमस्कार, अभिनंदन आप सभी का।
0: तो देखिए नेहा जी, अभिनंदन करता हुआ सा एक खूबसूरत सा संदेश
1: जी
0: जो हमें मिला है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, और ये भेजा है हमें डेर पाटन गुजरात से धीरज वी रबारी जी ने
1: जी।
0: और धीरज जी का कहना है कि आकाशवाणी के 90 साल की प्रसारण यात्रा के शुभ अवसर पर आकाशवाणी प्रयागराज परिवार की पूरी टीम को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आगे इनका कहना है कि 8 तारीख को गृह लक्ष्मी कार्यक्रम में हेलो गृह लक्ष्मी सुना, पेशकश लाजवाब रही कंचन जी और प्रीति जी की। 12 तारीख को गृह लक्ष्मी कार्यक्रम सर्वोत्तम इसलिए रहा क्योंकि जानकारियों का भंडार था उस दिन। दोनों दीदियों ने बहुत खूबसूरती के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, तो इस उत्तम निर्माण के लिए अभय जी को हृदय से हमारा धन्यवाद। कोई भूल हो तो माफ कर दीजिएगा।
1: धीरज वी रबारी जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने पत्र भेजा, और आपका जो साधुवाद है आपने खुद ही अभय जी को कहा है कि इतने सुंदर कार्यक्रम वो बना रहे हैं और जो टीम मेंबर्स हैं उनका काम तो बहुत सुंदर है। हेलो गृहलक्ष्मी जो आप सभी सुधी श्रोताओं का और हमारा कार्यक्रम है, यकीन मानिए जब आप फोन करते हैं और हमारे टीम के लोग होते हैं तो खुशी से हम लोग झूम उठते हैं कि अरे वाह, अब ये किसका फोन है और किस तरह की फरमाइश करेंगे। उंगलियां फटाफट से कंप्यूटर स्क्रीन पर आती हैं कि अच्छा शायद ये गाना है, तो हम सेलेक्ट करके रखते हैं। तो ये जो प्रोसेस है बहुत रोमांचक होता है। तो शुक्रिया इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए और इतना प्यार देने के लिए। बाकी के कार्यक्रम भी आपको अच्छे लगे इसके लिए भी शुक्रिया। श्रोताओं, वंदना जी अगली चिट्ठी पढ़ें उससे पहले एक बात मैं आप सभी से साझा करना चाहती हूँ, वो ये कि देखिए आज है रविवार और जो आगे आने वाला मंगलवार है यानी 19 तारीख को हमारा जो केंद्र है आकाशवाणी प्रयागराज सांस्कृतिक संध्या का आयोजन कर रहा है। आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में ही हमारे टीम मेंबर्स ने मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम का निर्माण किया है। उम्मीद करती हूँ जो प्रयागराज के आसपास के हमारे लिसनर्स हैं वो जरूर आएं, क्योंकि ये कार्यक्रम आपका, हमारा, हम सभी का है। और जब आप सुनेंगे देखेंगे कार्यक्रम को तो आपका हृदय जो है वो खुशी से भर उठेगा। तो वंदना जी, ये एक छोटी सी जानकारी मैं चाह रही थी कि सुधीर श्रोताओं से साझा करूं ताकि वो आएं। तो अगला खत जो है वो किसका है
0: नेहा जी? ये संदेश जो हमें दिखाई पड़ रहा है
1: जी,
0: वो है बलवंत कुमार वर्मा जी का, और उनके साथ है

0: राजूबाई वर्मा, अतुल कुमार वर्मा जी, जो कि हमें लिख रहे हैं प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से
1: जी।
0: और इनका कहना है कि आकाशवाणी प्रयागराज श्रोताओं के दिल पे करता है राज। आकाशवाणी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, ये हमारी माँ है जिसने 90 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं और हम साष्टांग प्रणाम करते हैं।
1: बहुत शुक्रिया आप सभी का। सच कहूँ तो ये जो भाव आपने शब्द के रूप में लिख भेजा है कि ये जो संस्था है वो हम सभी की माँ है, जननी है, ये बिल्कुल सच बात है क्योंकि जननी से ही सृजन होता है। और देखिए हम सभी लोग कितनी सुंदर भाषा इस संस्था के द्वारा जो कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं उस माध्यम से सुनते हैं। न जाने कितने चित्र हमारे मन मस्तिष्क में उकेरे जाते हैं शब्दों के जरिए। तो बहुत शुक्रिया आपने हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम को पसंद किया है। और जब हम सोशल मीडिया पर भी सुधीर श्रोताओं इस कार्यक्रम को लाइव करेंगे, अगर आप दूर बैठे होंगे तो आप हमारे फेसबुक से और यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लाइव इस कार्यक्रम को सुनेंगे तो अच्छा लगेगा और अपना पत्र भी भेजिएगा।
0: नेहा जी
1: जी,
0: एक संदेश हमें दिखाई पड़ रहा है जो कि इन्होंने बड़े दिल से अपने दिल की बात कही है
1: जी,
0: और ये बहुत ही लंबा पत्र है एक तरह से कहें, लेकिन इसको पढ़ने का जो लोभ है उसका संवरण मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो देखिए ये हमें संदेश भेज रहे हैं सादुल शहर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से,
1: रामकुमार रेवाड़ जी।
0: जी हाँ, रामकुमार रेवाड़ जी और उनके साथ है चंद्रकला रेवाड़ जी। इनका कहना है कि चिट्ठी आई है कार्यक्रम, जब भी हम सुनते हैं तो चेहरे पर आपकी तरह हमारे भी मुस्कुराहट आ जाती है। कहते हैं कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, निश्चित तौर पर ये बात 100% सही है। आपके चेहरे की खुशी देखकर हम भी खुशी से झूम उठते हैं। श्रोताओं के साथ घुल मिलकर चिट्ठियों का जवाब देना मन मोह लेता है। आकाशवाणी के 90 साल का सफर बहुत खूबसूरत रहा। पिछले 50 सालों से हम और आकाशवाणी एक साथ जुड़े हुए हैं। प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि ये आकाशवाणी का जो सफर है निरंतर युगों युगों तक यूं ही चलता रहे। आकाशवाणी में काम करने वाले, चाहे वो स्टेशन डायरेक्टर हों, चाहे अनाउंसर हों, जो पर्दे के पीछे काम करते हैं, जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और इस मेहनत का फल है कि इन तरंगों से आपकी खूबसूरत आवाज हमारे कानों में रस घोलती है। आकाशवाणी प्रयागराज से प्रसारित प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरती के साथ पेश किए जाते हैं। निश्चित तौर पर गीत संगीत के साथ किसानों के लिए और युवाओं के लिए युववाणी कार्यक्रम एक नए कलेवर में पेश किया जाता है। पत्र लंबा हो गया है, अगली बार अपनी प्रतिक्रिया के साथ हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।
1: रामकुमार रेवाड़ जी, मैं सच कहूँ जब मैंने आपका ये पत्र अपने फेसबुक के कमेंट बॉक्स में देखा था, उस वक्त मैं किसी काम में बहुत व्यस्त थी। अचानक से आपका पत्र जो नोटिफिकेशन आता है मैंने देखा और पढ़ा। आप ये कह रहे हैं कि आपके कार्यक्रम हमारे कानों में रस घोलते हैं और मैं ये कह रही हूँ कि आपका ये पत्र हृदय में, कहते हैं ना, वो उत्साह की तरंग ले आना, भर देना, तो ऐसा हुआ। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि कुछ इस तरह से इस दुनिया का निर्माण करें जो बहुत ही खूबसूरत हो और जब बैठें तो बस निहारते ही रह जाएं। तो आपके साथ की जरूरत है, शुक्रिया आपका।
0: नेहा जी हमारे साथ अब जुड़ रही हैं अपने संदेश के साथ नीरा त्रिपाठी जी।
1: जी,
0: अशोकनगर प्रयागराज से हमें ये संदेश अपना भेज रही हैं और इनका कहना है कि पनघट प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, लोक संगीत से जो जुड़े हुए गीत थे वो बहुत अच्छे लगे और प्लास्टिक के बारे में जो बातें बताई गई थी वो बड़े ही काम की बातें थीं और फालसा का जो शरबत बताया गया था वो उसकी रेसिपी सुनकर सचमुच मुंह में पानी आ गया। और हाँ, मैं नमस्कार प्रयागराज को कैसे भूल सकती हूँ क्योंकि इसके साथ मेरा जुड़ाव लगाव दिल से है। और ये कहती हैं आगे कि माँ दिवस पर, मातृत्व दिवस पर नमस्कार प्रयागराज में मोना पांडे जी की पेशकश बहुत अच्छी थी और मुनव्वर राणा जी की जो उनकी शायरी थी वहां से जब उन्होंने बात शुरू की तो मन द्रवित हो गया। और वहीं प्रेमेंद्र जी ने जब नमस्कार प्रयागराज प्रस्तुत किया तो उन्होंने पोखरण दिवस के बारे में जो बातें बताई बड़े विस्तार से जानकारी दी और

0: राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी में जो बहुत सारे अचीवमेंट रहे हैं उसकी भी बात उन्होंने की, बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों का बोलते नख़मे प्रोग्राम सुना क्या बताऊं, जो तरीका आप लोग का होता है पेश करने का वो इतना निराला होता है कि हम लोग प्रोग्राम की शुरुआत में ही बंध जाते हैं ऐसा लगता है। और जिस खूबसूरती से आप लोग गानों के बारे में भावनात्मक जो पहलू होते हैं उस पर चर्चा करती हैं, संगीतकार गीतकार के बारे में बताती हैं, और कुछ अगर उस गीत से जुड़ी हुई विशेष बात होती है तो वो भी हम तक साझा करती हैं, तो कुल मिलाकर ये प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद।
1: बहुत शुक्रिया नीरा जी। मुझे याद है कि उस दिन पनघट में आस्था यादव की ड्यूटी थी और जया जी से बातचीत हो रही थी। प्लास्टिक कितना खतरनाक है हमारी सेहत के लिए। बहुत बढ़िया बढ़िया जानकारी उन दोनों ने दी थी कि हम क्यों नहीं अपनी सेहत का ध्यान पहले रखें। ऐसे बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं। याद करिए, हमारी दादी के पास इतनी तादाद में प्लास्टिक नहीं रहा करती रही होगी ना, उन्होंने भी उसके बिना काम चलाया है। तो क्यों ना हम उन तरीकों पर काम करें, अपनाएं, ताकि हमारी सेहत बहुत ही बढ़िया हो, पुष्ट हो, संतुलित हो, ताकि हम कुछ सुंदर काम कर सकें। आपने कहा नमस्कार प्रयागराज, अच्छा लगा। माँ पर आधारित जो अंक था नमस्कार प्रयागराज का, वो बहुत सुंदर था। आपका जो ये साधुवाद है वो मोना जी तक, और इस कार्यक्रम के जो इंचार्ज हैं सुंदरम तिवारी जी तक, प्रेमेंद्र जी तक जरूर पहुंचा देंगे। बोलते अनगमे आपने कहा कि जैसे ही सुनते हैं तो बंध से जाते हैं। और पता है, शायद उन संगीतकारों ने, सिंगर्स ने, जिन्होंने कैमरे से उस दृश्य को शूट किया, एक्टर एक्टर्स ने, डायरेक्टर्स ने, किस तरह से लोगों को बांधते आए हैं। जब हम लोग भी इस पर काम करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अरे ये कितना करिश्माई सा लगता है। लेकिन हाँ, अगर जहन में वो साफ नजर आए वो बातें, वो कहते हैं ना सितारों से कल्पनाएं होती हैं, तो चीजें हूबहू उतर कर आती हैं। तो नीरा जी, बहुत शुक्रिया आपका पत्र लिखने के लिए।
0: माधुरी कुशवाहा जी कोठा पारचा प्रयागराज से हमें ये संदेश अपना भेज रही हैं। और एक ही कलाकार कार्यक्रम जो प्रस्तुत किया गया था, तौकीर जी ने जिसे प्रस्तुत किया था, और जो केंद्रित था मीना
1: मीना
0: कुमारी
1: कुमारी
0: जी
1: जी,
0: पर,
1: जी।
0: तो इनका कहना है कि इतनी सुंदरता के साथ उन्होंने मीना कुमारी जी के फिल्मी करियर के बारे में और उनके जीवन के बारे में जो बताया, तो वो कहीं ना कहीं मन को उनकी बातें छू गईं। और कितनी विपरीत परिस्थितियों से गुजरी हैं मीना जी, लेकिन अभिनय में उन्होंने कहीं भी कुछ भी वो कमी महसूस नहीं होने दी। उत्कृष्ट अभिनय क्षमता उन्होंने दिखाई जब भी उनकी फिल्में आई हैं, और बहुत ही खूबसूरत शैली में तौकीर जी ने इस प्रोग्राम को पेश किया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारा उन तक पहुंचा दीजिएगा।
1: माधुरी कुशवाहा जी, बहुत शुक्रिया। जितने सारे लोग हैं हमारी फिल्मी दुनिया के, उन पर आधारित हम कार्यक्रम एक ही कलाकार लेकर आते हैं। और सच में इन दिनों जो टीम मेंबर्स हैं उन्होंने काबिले तारीफ काम किया है। और इसका साधुवाद हम कार्यक्रम के इंचार्ज जो दीपक राय जी हैं और जिनका नाम आप कह रही हैं, उनको ज़रूर पहुंचा देंगे। तो इसी तरह आप कार्यक्रम से जुड़े रहिए, आप पत्र लिखिए, अच्छा लगेगा।
0: और नेहा जी, विष्णु मिस्किन, रितिका मिस्किन, वाणी आरव, चंद्रकला गणेश, काशीनाथ, संगीता मिस्किन, आरोही जी हमें लिख रही हैं अपना ये संदेश, दयानंद कॉलेज भवानीपेठ सोलापुर महाराष्ट्र से। और इनका कहना है कि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत शब्दों में नहीं बल्कि व्यवहार में होती है, क्योंकि मीठी बातें हर कोई कर लेता है, लेकिन मुश्किल समय में साथ निभाने वाले लोग ही सच मायने में दिल को जीत लेते हैं। और दिल जीत लेता है हमारा आकाशवाणी प्रयागराज का कार्यक्रम भी। इसकी जो प्रस्तुतियां होती हैं वो हमें बहुत पसंद आती है, चाहे वो पंचायत घर कार्यक्रम हो, पनघट कार्यक्रम हो, या उर्दू प्रोग्राम जो यहाँ से प्रसारित किया जाता है, गृहलक्ष्मी कार्यक्रम है, युवाओं के लिए यूथ एक्सप्रेस जो कार्यक्रम होता है वो भी इनके मन को बहुत भाता है।
1: विष्णु मिस्किन जी, देखिए जो आप कह रहे हैं कि शब्दों से जो ज़्यादा अहमियत है वो व्यवहार का है ना। तो हम कहें कुछ और करें कुछ और, कथनी और करनी में अगर फर्क होता है तो फिर बात नहीं बनती। एकदम सच बात आपने कही है। तो शुक्रिया। आपको हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाला कार्यक्रम यूथ एक्सप्रेस पसंद आता है, युवाणी पसंद आता है, तो आपका साधुवाद जो है भूपेंद्र मिश्र जी तक जरूर पहुंचा दिया जाएगा।

0: है।
1: और नेहा जी, अब उन श्रोताओं के नाम जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए हम तक अपना संदेश और प्यार पहुंचाया है,
0: तो देखिए ये बेनी सिंह जी हमें अपना संदेश भेज रहे हैं और साथ में हमसे जुड़ रहे हैं पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश सागर उर्फ बंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, श्रीमती ओमवती भारती, राजेश कुमार वर्मा जी, अतुल कुमार गुप्ता, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी और वारिस अली खान साहब भी हैं जिन्हें हमारा ये कार्यक्रम बहुत पसंद आता है, चिट्ठी आई है।
2: कितनी खुशी की बात है कि हमसे इतने लोग जुड़ते हैं। ये जो हमारा और आपका रिश्ता है बनाए रखिएगा। और हाँ, जो हम कंसर्ट कर रहे हैं 19 तारीख को, जो भी श्रोतागण आ सकते हैं NCZCC के प्रेक्षा गृह में, वो जरूर आएं। जो लोग थोड़े दूर हैं तो लाइव हमारे YouTube पर और Facebook पर देखें तो बहुत अच्छा लगेगा। और मैं बहुत आभारी हूँ आप सभी की।
0: तो नेहा जी, अब समय आ गया है कि हम अपने दोस्तों को बताएं अपना पता।
2: जी,
0: तो दोस्तों लिखिए, कार्यक्रम चिट्ठी आई है, द्वारा केंद्र निदेशक 7-9 दयानंद मार्ग, आकाशवाणी प्रयागराज। हमारा पिन कोड नंबर है 211001 और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8004926250। तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार और अब दीजिए हमें इजाजत।
2: नमस्कार।
3: अभी आपने सुना श्रोताओं की प्रतिक्रियाओं पर आधारित कार्यक्रम चिट्ठी आई है। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी नेहा गुप्ता और वंदना राठौर। प्रस्तुति नेहा गुप्ता की थी। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में आपको सुनवाते हैं घर फिल्म का गाना, जिसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। गीत गुलजार का है, संगीतकार हैं RD बर्मन।

अब आपको सुनवाने जा रहे हैं एसडी बर्मन के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी की गीत रचना, आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है आराधना।

0: किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाए आराधना फिल्म के इस गाने के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: एहसास की धूप छाओ में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज इतवार है, इसमें सुनिए रेणुका जोशी की लिखी झलकी, स्टोर रूम का चोर।

0: अरे सुनीता, आज शाम जब मैं ऑफिस से आया था तो मुझे स्टोर रूम की ओर से एक चूहा दिखा। ध्यान रखना कोई नुकसान न कर दे चूहा।
1: हाँ, चूहा तो मुझे भी दिखा था। कल आप छुट्टी ले लीजिए, मिलकर स्टोर रूम की सफाई कर लेंगे। सामान इधर उधर करना पड़ेगा ना, अकेले मुझसे नहीं होगा।
0: अच्छा, क्या मैसेज भिजवाऊंगा ऑफिस में कि घर में घुसे चूहे को पकड़ने के लिए छुट्टी चाहिए? अरे क्या बात करती हो यार तू।
1: अच्छा, घर के काम में हेल्प करना कोई बुरी बात है क्या? या चूहों का सफाया करना कोई मजाकिया बात है? ठीक है, तुम्हें जो भी कारण बताना हो छुट्टी के लिए बताओ, पर स्टोर रूम की सफाई मुझसे अकेले नहीं होगी। छुट्टी तो तुम्हें लेनी ही पड़ेगी भाई।
0: मैं छुट्टी नहीं ले सकता, आजकल
1: अरे
0: ऑफिस में बहुत काम है। तुम समझती क्यों नहीं हो भाई? अरे काम वाली बाई से हेल्प ले लो ना।
1: कौन? कमली? वो तो अपने रूटीन काम निपटा ले, वही बहुत है। फालतू के काम में हेल्प करने वाली नहीं है वो।

0: आपको ही लेनी पड़ेगी छुट्टी। हाँ
1: किसी और से हेल्प ले लो। कह दिए ना, मैं छुट्टी नहीं ले सकता, बस।
0: समझ गई, चूहे से डर गए ना। डरपोक कामचोर।
1: अच्छा, मजाक उड़ाती हो मेरा। अब तो छुट्टी लेनी ही पड़ेगी कल। अच्छा, अभी तो चैन से सोने दो।
0: सो
1: सुनीता, दरवाजे चेक कर लेना
0: अच्छा।
1: और सारे लाइट ऑफ कर देना। अच्छा, क्या? अरे, ये आवाज कैसी थी?
0: ये आवाज तो स्टोर रूम की तरफ से आई है।
1: कहीं कोई चोर तो नहीं छुपा स्टोर रूम में?
0: अगर स्टोर रूम में छुपा है तो समझ लो कि वहीं अरेस्ट हो गया। मैं अभी स्टोर रूम में बाहर से कुंडी चढ़ाकर आती हूँ।
1: अरे अरे अरे भाई, खटर पटर मैं कर रहा हूं भाई साहब, मैं चूहा नहीं हूं।
0: सॉरी भाई साहब,
1: अरे
0: हम स्टोर रूम की खटर पटर की बात कर रहे थे।
1: ओ भाभी जी,
0: जी
1: मैं तो आया था।
0: हाँ।
1: अरे, घर में चाय की पत्ती खत्म हो गई थी,
0: ओहो
1: अब सोचा पंसारी की दुकान से ले लूं, पर
0: जी जी
1: हाय रे किस्मत, बंद थी। चाय की तलब लग रही थी। मीना ने कहा अपने रवि भाई साहब हैं ना,
0: ये
1: उन्हीं से ले लो।
2: तो रोज का टंटा है इनका।
1: कुछ कहा भाई साहब?
2: ना, पड़ोसी है तो पड़ोसी के काम तो आना ही चाहिए ना, क्यों सुनीता?
0: समझ गई, दे रही हूं भाई साहब, पर चाय की पत्ती तो वही स्टोर रूम में।
1: कोई बात नहीं, कहीं से और जुगाड़ करता हूँ।
0: क्या रात भर हम लोग चोर के साथ रहेंगे?
2: अरे, रात भर नहीं, बस थोड़ी देर। अभी पकड़वाता हूँ इसे। बेचारे चोर को क्या पता कि किससे पाला पड़ा है। अरे, मेरी ब्रेव इंटेलिजेंट बीवी ने तो आते ही चोर को अरेस्ट कर लिया। थैंक यू डियर, थैंक
0: इंटेलिजेंट भी हूँ। लेकिन अब क्या करोगे इस चोर का?
2: इंटेलिजेंट तो हो ना, बताओ क्या करें इस चोर का। अच्छा, परेशान मत हो, मैं अभी 100 नंबर पर डायल करता हूँ, पुलिस ले जाएगी इसे। अरे, मेरा फोन कहाँ है? यहीं तो रखा था मैंने।
0: वो स्टोर रूम में बल्ब फ्यूज है ना, कई दिनों से मैं उधर सिटकिनी चढ़ाने गई तो तुम्हारा फोन ले गई थी टॉर्च के लिए। अब याद आ रहा है, वही रैक पर छूट गया।
2: अरे अजीब हो तुम भी, मेरा फोन ही रखा ही चोर के पास। अरे, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारे? लाओ लाओ अपना फोन दो, जल्दी से लाओ।
0: तुम्हें पता है ना, परसों से मेरा फोन खराब है। फोन के बिना तो लगता है कि जैसे जैसे बिल्कुल असहाय हो गए। ये वाला फोन तो अब यूज करने की मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है। सुनो, कल हम चलकर एक अच्छा सा नया फोन ले लेंगे, है ना?
2: अरे, कल की कल देखी जाएगी, अभी क्या करें? चोर घुसा हुआ है हमारे घर में और वो कुछ भी कर सकता है हमारे साथ। सुनो, चोर दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। कुछ आवाज सुनी ना तुमने? तुम्हारी तरह बेवकूफ इंसान मैंने देखा नहीं जो घर में घुसे चोर को फोन थमाए।
0: अच्छा, बेवकूफ कहते हो मुझे? मैंने अगर स्टोर रूम का दरवाजा बाहर से न बंद किया होता तो चोर तुम्हारी गर्दन पर चाकू रखकर फोन क्या सब कुछ ले जाता।
2: अरे, लापरवाही की भी हद होती है। एक अनजान आदमी घर में घुस आया और तुम्हें पता तक ही नहीं चला है? बस टीवी पर ध्यान मग्न होकर सास बहू के झगड़े देखती रही होगी तुम।
0: देखो रवि, फालतू के इल्जाम मत लगाओ मुझ पर। जिस दिन टीवी के सामने बैठी रहूंगी ना, सारे काम धरे के धरे रह जाएंगे तुम्हारे घर के।
2: चोर घर में घुसा, मेरा फोन तुम उसको थमाई। अरे, ये जरा सी लापरवाही है। तुमसे तो घर की देखभाल तक नहीं होती है।
0: हाँ, मैं तो बस नालायक हूँ, बेवकूफ हूँ, लापरवाह हूँ।
2: ठीक है सुनीता, ये आंसुओं का नाटक बंद करो। बस बस बस बस, बहुत हो गया। अरे, बात को समझने की कोशिश करो भाई। जिसे तुम जरा सी गलती कह रही हो, उसके कारण हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, कुछ अंदाजा है तुम्हें? अब ये सोचो कि पुलिस को कैसे सूचित करेंगे हम। बोलो।
0: बाहर निकलकर पड़ोसियों की मदद लेते हैं। कोई अपना फोन देने या मदद करने से मना थोड़े ही करेगा, पड़ोसी सब अच्छे हैं हमारे।
2: अरे सुनीता, सुनीता, जरा सा अकल से काम लोगी तुम? अरे, पता है शहर में चोरों का एक गिरोह बहुत सक्रिय है आजकल। एक चोर किसी तरह से अंदर घुस जाता है, फिर गैंग के बाकी लोगों को कांटेक्ट बनाए रखता है वो। फिर आधी रात को वो लोग अब

0: अंजाम देते हैं।
1: मानती हूँ कि मेरे तरफ से लापरवाही हुई है,
0: और क्या?
1: लेकिन अब बाहर निकले बिना कोई चारा भी तो नहीं है। खतरा तो मोल लेना ही पड़ेगा ना, वरना वरना कैसे किसी से मदद मिलेगी? रवि बोलो।
0: अरे इस समय 12 बजे रात को बाहर निकले और बाहर चोर के साथी घात लगाए बैठे हो तो है? सुनो,
1: हाँ, बोलिए।
0: अगर कोई बाहर का दरवाजा खटखटाए तो दौड़ के मत खोलने लगना। अच्छा,
1: अच्छा
0: मैं ही जाऊंगा। सोच समझ कर, देखभाल कर खोलना दरवाजा, ठीक है?
1: तुम कहना क्या चाहते हो, मैं बेवकूफ हूँ क्या? तुम समस्या का समाधान निकालने के बजाय लगातार ताने दे रहे हो। तुमसे तो जैसे कोई गलती होती ही नहीं कभी। एक दिन दूध उबालने के लिए बोला था, मेरी तबीयत खराब हुई थी, याद है ना? और तुम्हारी लापरवाही से सारा दूध बह गया, जल गया। जब धुआं आने लगा, बदबू आने लगी, तब मैं किचन में गई। और उसी शाम को जब तुमसे मैंने पौधों में पानी डालने को कहा था, तुम आखिर में नल ही खुला छोड़ आए थे। पूरा पानी बह गया था पाइप से। कितनी मुसीबत हुई थी, याद है ना रवि?
0: हाँ हाँ सब याद है। तुम तो बीमार थी, बिस्तर पे पड़ी थी ना। मैंने सारा दिन ऑफिस में मेहनत की, फिर घर आकर तुम्हारा किचन संभाला, तुम्हारे पौधों को पानी दिया, फिर चापाकल से बाल्टी भर भर कर पानी लाया था, याद है ना?
1: एक दिन की बीमारी में घर में जरा सी मदद करने पर तो तुम्हारी हालत खराब हो गई, और मुझे ताना देते हो कि मैं टीवी पर सास बहू की लड़ाइयाँ देखती हूँ।
0: तुम्हारे पास तो एक बात के 10 उत्तर तैयार रहते हैं हमेशा। चलो मान ली कि तुम सर्वगुण संपन्न हो।
1: देखो रवि, मुझे गलत मत समझो, मैं अपनी गलती मानती हूँ। देखो, गलती जानबूझकर तो होती नहीं, बस हो जाती है। तुम्हारी गलतियां दिखाई तो तुम कैसे दिल मिला गए?
0: अच्छा अच्छा ठीक है, ये फालतू की झिझक छोड़कर ठंडे दिमाग से सोचो। घर में चोर घुसा बैठा है, पास में फोन भी नहीं है, आधी रात का समय है और बाहर की स्थिति के बारे में कुछ पता है नहीं है?
1: तो क्या करें अब?
0: अरे अब क्या बताएं, सुबह 5 बजे तक इंतजार करते हैं।
1: अच्छा,
0: 5 बजे से पेपर वाला, दूध वाला, काम वाली भाइयाँ सबका आना जाना शुरू हो जाता है।
1: हाँ।
0: रात ठीक ठाक बीती तब तक बाहर बैठे चोर के साथी भी भाग चुके होंगे। हाँ,
1: ठीक।
0: तभी बाहर निकलेंगे और पुलिस से पकड़वाएंगे इस चोर को।
1: मान लो चोर अपने साथियों को फोन करके बुला ले और वो लोग हथियार लेकर घर में घुस आए तो?
0: अरे मुझे तो लगता है कि तुम्हारी भी चोर के साथ कुछ साठगांठ है, तभी तो तुम फोन उसको दे आई।
1: ऐसे ताना मत दो, वो तुम्हारा फोन क्यों लेगा? अपना फोन नहीं लाया होगा क्या? आजकल हर किसी के पास फोन रहता है, समझे रवि?
0: सुनीता, अब इन ताने उलानों से कुछ नहीं होगा। जाओ स्ट्रांग कॉफी बनाकर ले आओ एक बढ़िया सी। हाँ, अब थोड़ा जगा करके ही रात बितानी होगी। अरे सुनीता,
1: हाँ?
0: स्टोर रूम में कोई हथियार तो नहीं रखा है तुमने?
1: हथियार तो कुछ है ही नहीं हमारे घर में, और वहाँ तो केवल बक्से हैं, एक दो टूटी फूटी कुर्सियाँ हैं।
0: अरे बर्तनों में कोई धारदार चीज तो नहीं है दरवाजा काटने लाए?
1: कह तो दिया कोई हथियार नहीं है वहाँ रवि, पर हाँ, चोरों के पास अपने पर्सनल हथियार तो रहते ही होंगे।
2: बाप रे, क्या होगा रवि?
0: होगा क्या, अरे पहले वो दरवाजा काटेगा, फिर बाहर निकलकर हम दोनों की घर
2: हौसला बढ़ाना चाहिए, आप तो उल्टा डरा रहे हो।
0: देखो, अगर वो बाहर आ ही जाएगा तो क्या हम चूड़ी पहनकर बैठे रहेंगे? अरे भाई मुकाबला करेंगे, आखिर हम भी तो 2 लोग हैं, मिलकर हाथ पैर बांध देंगे उसके।
2: एक बज रहा है, चोर के दोस्त भी अंदर आने का जुगाड़ लगा रहे होंगे।
0: अरे रसोई से कुछ चाकू छुरे ले आओ ना, मैं कुछ जब तक डंडे वगैरह का इंतजाम करता हूँ, देखता हूँ।
2: चाकू तो एकदम ब्लंट है,
0: अच्छा अच्छा
2: भी नहीं है।
0: अच्छा ठीक है ठीक है, मैं पर्दे से डंडे निकाल लेता हूँ। हाँ चलो अब ठीक है, बड़ी कस की नींद आ रही है यार।
1: रवि, रवि सो गए हो क्या? रवि,
2: मैं अकेले कैसे करूंगी चोरों का सामना? जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। रवि, रवि, अरे रवि उठो, अरे कल दिन में सो लेना आराम से, अभी तो जागो, मुझे डर लग रहा है, उठो रवि।
0: रो मत, रो मत यार, जरा सी चपकी लग गई थी। अरे टाइम तो देखो,

0: क्योरा है?
1: हे भगवान, चलो खतरे की रात टली, अब तो दरवाजे खोलकर पड़ोसियों से मदद लेते हैं। हाँ चलो चलो।
2: अरे मिश्रा जी, नमस्कार नमस्कार मिश्रा जी। अरे बड़े अच्छे समय से आ गए, जरा अपना फोन दीजिए तो, पुलिस को बुलाना है मुझे।
3: सुबह सुबह पुलिस को बुलाना है?
4: सब खैरियत तो है ना, और आपका फोन कहाँ गया?
2: अरे क्या बताएं मिश्रा जी, हमारे स्टोर रूम में कल रात से क्योर बंद है, गलती से फोन भी वहीं है, वाइफ का फोन खराब है, बड़ी बेचैनी में रात बीती है। लाइए लाइए। हेलो, हाँ पुलिस स्टेशन जी जी हाँ जी, कुछ मदद चाहिए जी? हाँ हाँ जी, हमारा पता हाँ लिखिए लिखिए, 11/65 MG मार्ग। जी जी।
4: अरे तो रात में ही बताना था रवि जी, आखिर पड़ोसी हैं हम आपके।
2: अरे क्या बताएं मिश्रा जी, फोन पास में नहीं होने से मुसीबत और असमंजस में रात बीती है। अरे झिकझिक हुई सो अलग, आधी रात को बाहर निकलने पर डर था कि कहीं चोर की गैंग के बाकी लोग बाहर घात लगाए बैठे होंगे तो क्या होगा।
4: हाँ ये आपने अकलमंदी का काम किया, बाहर निकलने पर पूरी गैंग आपको दबोच लेती और घर पर कब्जा कर लेती। अरे भाई, रवि साहब के घर में रात में चोर घुस बैठा है।
5: अरे हाँ क्या हुआ, क्या हो गया?
6: अरे रवि जी क्या हो गया, कैसे घर में घुस गया चोर?
1: मेरी ही गलती है, पता नहीं कैसे मुझसे ये लापरवाही हो गई, और मेरा फोन भी तभी खराब होना था।
7: ओहो ये तो बहुत बुरा हुआ, और हम सब बेखबर सो रहे थे।
1: स्टोर रूम का बल्ब फ्यूज था, उधर चूहा भी देखा था हमें दिन में। मैं टॉर्च के लिए इनका फोन ले गई और गलती से वही रैक पर फोन छोड़कर बाहर से कुंडी चढ़ा आई।
8: अच्छा ही हुआ सुनीता जी कि आपने वहाँ बाहर से कुंडी चढ़ा दी थी, वरना सोचिए आप लोग के सोते ही बवंडर हो जाता।
5: पुलिस पुलिस।
4: अरे ये तो बिल्ली है, भागी। चोर कहाँ है, यहाँ तो कोई नहीं है। पूरी नौकरी में पहली बार पुलिस चोर नहीं बिल्ली पकड़ने आई है। क्या मजाक बना लिया आप लोगों ने, अच्छा जोक था, पर आइंदा ख्याल रखिएगा, और हाँ ऐसे समय बर्बाद मत किया करिएगा हमारा।
2: चलो बिल्ली ने चूहों का सफाया तो कर ही दिया होगा रात भर में।
9: आज इतवार है, इस कार्यक्रम में अभी आपने सुनी रेणुका जोशी की लिखी झलकी स्टोर रूम का चोर। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन

0: हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित चार लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी वलीशेट्टी ने बाऊजी चाइना मास्टर्स के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स की दो दिन की यात्रा के बाद पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता और द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार, पर्यावरण अनुकूल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती हुई तकनीक, स्टार्टअप्स, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई और आम जनता के आपसी संपर्क में सहयोग के नए अवसर तलाशने की संभावनाओं पर भी विचार करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचे, जहां गोथेनबर्ग लैंडवेटर एयरपोर्ट पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने उनका स्वागत किया। विशेष सम्मान के तौर पर स्वीडिश ग्राइपिन लड़ाकू विमानों ने स्वीडिश हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते समय प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट भी किया। एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। गौरतलब है कि यात्रा का प्रमुख आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री होगा, जिसे दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन के साथ संबोधित करेंगे। इसके अलावा दोनों प्रधानमंत्री यूरोपियन संघ के शीर्ष उद्योगपति और सीईओ के साथ राउंड टेबल बैठक में भी शामिल होंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: इससे पहले गोथेनबर्ग रवाना होने से पूर्व श्री मोदी को नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन ने व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर विदाई दी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस यात्रा ने भारत नीदरलैंड संबंधों को नई गति दी है। रिश्तों को रणनीति साझेदारी से लेकर जाने तक, जल संसाधन, सेमीकंडक्टर, इनोवेशन, रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने तक दोनों देशों ने भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत और नीदरलैंड की दोस्ती आने वाले सालों में और मजबूत होगी। उनकी यात्रा में यह एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक पल था, जब लाइडन यूनिवर्सिटी ने 11वीं शताब्दी की चोल युग की ताम्र पट्टिकाओं को भारत को सौंपा। यह भारत की विरासत और सभ्यता का अनमोल अध्याय है। यात्रा के अंत में 17 अहम नतीजे सामने आए। इसमें शामिल है नवीनीकरण ऊर्जा पर संयुक्त कार्य समूह और ग्रीन हाइड्रोजन रोडमैप, क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग, गुजरात की कल्पसर परियोजना में जल प्रबंधन पर डच सहयोग, त्रिपुरा में फ्लोरिकल्चर और बेंगलुरु में डेयरी प्रशिक्षण के लिए भारत डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नालंदा और ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय के बीच शिक्षा एवं शोध का समझौता और स्वास्थ्य एवं सीमा शुल्क में संस्थागत सहयोग। शुश्रुष शर्मा, आकाशवाणी, द हेग, नीदरलैंड्स।
0: कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में दो तिहाई से अधिक बहुमत हासिल किया। हालांकि राजनीतिक खींचतान और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण गठबंधन मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर फैसला नहीं कर पा रहा था।
3: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन कल सुबह केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री के साथ 20 अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। मनोनीत मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर से मुलाकात की और उन्हें मंत्रियों की सूची सौंपी। समारोह के लिए तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 12,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था सहित व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में 700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राज्य के दो दिवसीय दौरे पर आए श्री शाह ने गांधीनगर निगम की 600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने शहर में 128 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मधुर डेयरी के नवनिर्मित दूध प्रसंस्करण संयंत्र का भी उद्घाटन किया। इससे पहले दिन में श्री शाह ने गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है।
4: एनआईडी एक प्रकार से रचनात्मकता के आधार पर इनोवेशन और उद्यमिता, इन तीनों को जोड़ने वाला एक संस्थान। जब एनआईडी की स्थापना हुई तब मुझे लगता है कि इसके उद्देश्यों को बहुत अच्छा

0: तरीके से सोचा हो।
1: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। श्री जोशी ने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है।
2: आज हमने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की अत्यधिक मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। 256 गीगावाट में से जिसे हमने एक ही दिन में एक खास समय पर अत्यधिक मांग के तौर पर पूरा किया, उसका 33% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आया है।
0: 33% इज फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबे समय से लंबित मांगें अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है।

0: सक्सेसफुली मैनेज्ड।
1: आज हमने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की अत्याधिक मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। 256 गीगावाट में से जिसे हमने एक ही दिन में एक खास समय पर अत्याधिक मांग के तौर पर पूरा किया, उसका 33% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आया है।
0: 33% इज फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी।
2: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबे समय से लंबित मांगें अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने भारत म्यांमार सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। एनसीबी ने दिल्ली से म्यांमार के सरगना थान सितवांग को गिरफ्तार किया है। थान सितवांग एनसीबी और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े कई मामलों में वांछित था। ब्यूरो ने कहा कि वो वर्ष 2024 के एक एनसीबी मामले में मुख्य आरोपी है, जिसमें 14 किलोग्राम मेथमफेटामीन और 2 किलोग्राम से अधिक हेरोइन जब्त की गई थी। वर्ष 2025 के एनसीबी मामले में भी ऐजोल में 49 किलोग्राम से अधिक मेथमफेटामीन जब्त की गई थी। हिमाचल प्रदेश में 51 शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। मतदान 25 नगर परिषदों और 22 नगर पंचायतों के साथ धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडी नगर निगमों में कराया गया था। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार मतदान में 69% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित चार लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानी ने कहा कि रात भर हुए हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया है कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हुए। संयुक्त अरब अमीरात में आज अबूधाबी स्थित बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। अबूधाबी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के बाहर स्थित एक विद्युत जनरेटर में आग लगी। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की विशेष बैठक में कही। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मूज जल डमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरेफ ने कहा कि ईरान ने पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे पोतों को गुजरने की अनुमति दी है जो ईरान के

युद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के केरलम में 26 मई तक पहुंचने की संभावना है, जिससे चार दिनों का अंतर हो सकता है। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी इसी तरह के मौसम रहने की संभावना है। अगले तीन से चार दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। भारत की श्रेयांशी वली शेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांशी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। बेंगलुरु के 223 रन के लक्ष्य के जवाब में पंजाब 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 199 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही बेंगलोर प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। दिन का दूसरा मुकाबला दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना 2027 के चल रहे पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल वीए वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित 4 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के अपने हमनसब उल्फ स्टर्सन से वफ्त की सतह की बातचीत कर रहे हैं, जिसका मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा है कि नीदरलैंड्स के उनके दौरे से दो तरफा ताल्लुकात को एक नई रफ्तार मिली है। कांग्रेस रहनुमा वी डी सतेसन को कल केरलम के नए वज़ीर-ए-आला का हलफ दिलाया जाएगा। मास्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर समेत चार अफराद हलाक हो गए। भारत के महकमे मौसमियात ने शुमाली भारत में कल शदीद गर्मी की पेशगोई की है। और बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी

राष्ट्रपति भवन में मुनक़िद होने वाली पहली शहरी एजाज से मुतअल्लिक तकरीब के दौरान पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री अवार्ड्स अता करेंगी। इस साल भारत सरकार ने मजमूई तौर पर 131 पद्म अवार्ड्स का ऐलान किया है। रेलवे की वजारत ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के पीछे के दो डिब्बों में आग लगने के वाकये की आला सतह पर तहकीकात का हुक्म दिया है। आज सुबह तकरीबन 5:15 बजे कोटा डिवीजन के नागदा जंक्शन के करीब त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के पीछे के दो डिब्बों में आग लग गई। इन डिब्बों में एक गार्ड कोच और एक AC 3-tier coach शामिल था। वजारत के मुताबिक कोच में नस्ब हिफाजती निज़ाम फौरी तौर पर मुतहर्रिक हो गया और ट्रेन खुद ब खुद रुक गई। ट्रेन के अमले ने फौरन आग से मुतासिर दोनों डिब्बों को अलग किया, जिसकी वजह से किसी भी मुसाफिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। रेलवे के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने आज बेंगलुरु और मुंबई के दरमियान एक नई एक्सप्रेस ट्रेन को वर्चुअल वसीले से झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन से कर्नाटक और महाराष्ट्र के दरमियान रेल कनेक्टिविटी में इजाफा हुआ है। जनाब वैष्णव ने इस मौके पर कहा कि जनूबी और मशरकी कर्नाटक के लोगों का एक देरीना मुतालबा पूरा किया जा रहा है। उन्होंने ये ऐलान भी किया कि उम्मीद है कि बेंगलुरु और मुंबई के दरमियान वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जल्द ही शुरू हो जाएगी। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने आज दिल्ली सरकार की जानिब से हवाई जहाज़ों के ईंधन ATF पर वैल्यू एडेड टैक्स को 25% से कम करके 7% करने के फैसले की तारीफ़ की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में जब हवाबाजी का शोबा आलमी सतह पर ऑपरेशनल और माली दबाव का सामना कर रहा है, रियासती हुकूमतों के इस किस्म के सरगर्म इकदाम एयरलाइंस को ज़रूरी सहारा फराहम करते हैं और मुसाफिरों के लिए फ़जाई सफ़र को सस्ता रखने में मदद फराहम करते हैं। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि महाराष्ट्र के विदर्भ ज़िले में किसानों की खुदकुशी की एक बड़ी वजह पानी की किल्लत है। उन्होंने ये भी कहा कि पानी की बचत इस बुहरान का मुअस्सर तरीन हल है। नागपुर में कौमी कॉन्फ्रेंस नागपुर जल संवाद से खिताब करते हुए जनाब गडकरी ने कहा कि पानी के तहफ़ से मुतअल्लिक कोशिशों की कामयाबी के लिए लोगों का इनमें हिस्सा लेना लाजमी है। उन्होंने ग्राम पंचायतों से कानून साज अरकान तक तालमेल के साथ उठाए गए इकदाम पर जोर दिया ताकि गांवों और किसानों की खुशहाली को यकीनी बनाया जा सके। नशीली अशिया पर काबू पाने वाले ब्यूरो NCB ने मुल्कों के माबैन नशीली अशिया की नाजायज तिजारत के उन नेटवर्क्स के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल की है जो भारत म्यांमार सरहद पर अपनी कार्रवाइयाँ अंजाम देते हैं। ब्यूरो ने म्यांमार में मुकीम सरगना थांकिंग तुआंग को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। NCB ने एक बयान में कहा है कि यह गिरफ्तारी वसी तौर पर निगरानी, खुफिया मालूमात में इजाफे, तालमेल के साथ किए जाने वाले बैन रियासती तालमेल और लगातार पीछा करने की कार्रवाइयों की बदौलत की गई है। थांकिंग तुआंग कई तरह की मनशियात और नशीले मादों के कानून के तहत मतलूब था। ये केस NCB और मनशियात से मुतअल्लिक कानून नाफिज करने वाली कई एजेंसियों ने दर्ज की थी, जिसमें से NCB ने दो केस दर्ज किए थे। नई और काबिले तजदीद तवानाई के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने एक ही दिन में 256.4 GW की बिजली की मांग को पूरा करने में, जो अब तक की सबसे बड़ी मांग है, कामयाबी हासिल की है। एक प्राइवेट अंग्रेजी रोजनामे के साथ बातचीत में जनाब जोशी ने कहा कि बिजली की 33% मांग काबिले तजदीद तवानाई के वसायल से पूरी की गई है। वजीर मौसूफ ने यह भी कहा कि इस बड़ी तब्दीली से तवानाई की सलाहियत में बड़ी तेजी से इजाफे, ग्रिड को मुस्तहकम बनाने और मुल्क की तरक्की के सफर को तकवीत देने में माहौल के लिए साजगार तवानाई के बढ़ते हुए हिस्से का अंदाजा होता है। रूस में मास्को और आसपास के इलाकों पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में 4 अफराद की मौत हो गई है, जिनमें एक भारतीय मजदूर भी शामिल है। मास्को के मेयर सरगेई सुबियानिन ने बताया कि रात भर हुए इन ड्रोन हमलों में कम से कम 12 अफराद जख्मी भी हुए हैं। रूस के हुक्काम के मुताबिक मास्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को तबाह भी किया गया है।
यूक्रेन के सदर विलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इन हमलों की तस्दीक करते हुए इन्हें दुरुस्त कार्रवाई करार दिया। इस दौरान रूस में भारतीय सफारतखाने ने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में बताया कि मास्को को

जिंदगी की कितनी अजीब दास्तान है। कभी खुशियों की महक हमारे आसपास होती है, फिर भी दिल के किसी कोने में उदासी ठहरी रह जाती है। रिश्तों, हालात और एहसासों की यही उलझन अक्सर शायरी का रूप ले लेती है। सुनवाते हैं आपको ऐसी ही सोच में डूबी हुई खूबसूरत गजल, जिसके अशार दिल को देर तक छूते रहते हैं। फूलों के आसपास रहते हैं, फिर भी कांटे उदास रहते हैं। जिंदगी की तल्ख सच्चाइयों और नर्म जज्बातों को बयां करती इस गजल को गाया है हरिहरन ने।

इश्क में गैरते जज्बात ने रोने न दिया, वरना क्या बात थी किस बात ने रोने न दिया। दिल के जज्बातों को बड़ी खूबसूरती से बयान करती इस गजल को सुनिए श्रोताओं, और महसूस कीजिए बेगम अख्तर की गायकी का वो जादू जो बरसों बाद भी ताज़ा है।

रेत पर लिखकर मेरा नाम मिटाया न करो, आंखें सच बोलती हैं प्यार छुपाया न करो। यह है मोहसिन नकवी का कलाम, फनकार गुलाम अली।

कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो शब्दों में बंधते नहीं, सिर्फ दिल की धड़कनों में महसूस किए जाते हैं। मोहब्बत की यही सादगी और मासूमियत जब शायरी का रूप ले लेती है तो हर लफ्ज एक कहानी कहने लगता है। अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दें, हम उनके लिए जिंदगानी लुटा दें। श्रोताओं, ये गजल इश्क की उस पाकीजा कैफियत को बयान करती है जहां एक मुस्कान पूरी दुनिया का सुकून बन जाती है और एक नज़र पूरी जिंदगी का मकसद। फनकार हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह।

जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की गाई इस गज़ल के साथ ही कहकशा कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

अखिल भारतीय संगीत सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज की सभा में प्रस्तुत हैं सुविख्यात बांसुरी वादक श्री विवेक सोनार का बांसुरी वादन। आप महाराष्ट्र के 40 गांव में जन्मे और पले बढ़े। आप अपने पिता श्री रामचंद्र सोनार से प्रेरित थे। आपके पिता वारकरी संप्रदाय के एक जाने माने गायक रहे। आपने बहुत कम उम्र से ही बांसुरी बजाना शुरू किया। आपने अपने पिता से शुरुआती प्रशिक्षण लेने के बाद अपने पहले गुरु पंडित पुरुषोत्तम अंतापुरकर से औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। 1997 में मुंबई आए ताकि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के सानिध्य में पेशेवर प्रशिक्षण ले सके। इस तरह आपने पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के मार्गदर्शन में अपनी संगीत यात्रा शुरू की, जिन्होंने आपको संगीत की खोज और अभिव्यक्ति की गहरी दुनिया से परिचित कराया। आप एक बेहतरीन बांसुरी वादक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत परंपरा के वाहक हैं। आप न केवल अनगिनत शिष्यों के गुरु हैं बल्कि एक संगीतकार भी हैं। आप भारत के अग्रणी बांसुरी वादकों में से एक हैं। आप तंत्रकारी तथा लयकारी शैलियों पर अपनी जबरदस्त पकड़ के लिए जाने जाते हैं। बांसुरी वादन में अपनी बेजोड़ महारत के लिए आपको जाना जाता है। आप अपने कुछ अनूठे पहलुओं के लिए भी जाने जाते हैं, जैसे आपका भव्य बांसुरी उत्सव और फ्लूट सिंफनी एक शानदार संगीत समारोह है जिसमें 111 बांसुरियां एक साथ बजती हैं। आपने भारत के कई प्रतिष्ठित संगीत समारोह में संतूर, सितार, वायोलिन और कर्नाटक शैली के वाद्य संगीत के अग्रणी कलाकारों के साथ एकल और जुगल

0: अभी आप बांसुरी पर सुन रहे थे राग चंद्र कौंस, प्रस्तुत कर रहे थे श्री विवेक सोनार। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे श्री ओजस अधिया। इसी के साथ आज का रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण आकाशवाणी मुंबई में किया गया और इसे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: यू आर लिस्निंग टू राग चंद्र कौंस बाय रिनाउंड फ्लॉटिस्ट श्री विवेक सोनार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों पक्षों ने व्यापार, हरित बदलाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई के अलावा द्विपक्षीय संबंधों में सहयोग के नए तरीकों पर भी चर्चा की। इस बीच स्वीडन के प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्वीडिश समकक्ष यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ मिलकर एक प्रमुख अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को भी संयुक्त रूप से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा के सहयोग में बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी आज शाम अपने पांच राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे। गोथेनबर्ग हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। गोथेनबर्ग के लिए रवाना होने से पहले नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जटन व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी को विदाई देने आए। नीदरलैंड की अपनी दो दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने डच समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नीदरलैंड की उनकी यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान की है। इस दौरे को गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत और नीदरलैंड के

0: बीच तकनीकी सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और उनके डच समकक्ष ने ऊर्जा, बंदरगाह, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, व्यापार और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों की प्रमुख डच कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद शुक्रवार को 2 दिन की यात्रा पर द हेग पहुंचे थे। कांग्रेस नेता वी डी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वी डी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। श्री जोशी ने बताया कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आज हुई आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। ये आग ट्रेन के एक यात्री कोच और एक लगेज ब्रेक तथा जनरेटर कोच में लगी थी। घटना लूनी रिक्शा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच हुई। भारतीय रेलवे ने कहा कि समिति को निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि भारत के पास केवल 2 दिन का तेल भंडारण बचा है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये दावा फर्जी है। इकाई ने कहा है कि भारत के पास 60 दिन का कच्चे तेल का भंडारण मौजूद है। भारत के श्रेयांसी वलीशेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांसी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi held delegation-level talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg. The two sides also explored new avenues of cooperation in trade, green transition, artificial intelligence, emerging technologies, startups, resilient supply chains, defense, space, climate action, and people-to-people ties. Meanwhile, Sweden conferred the Royal Order of Polar Star, Commander Grand Cross, upon Prime Minister Modi. Sweden's Royal Order of Polar Star, Commander Grand Cross, is the utmost recognition and honor that can be conferred upon a head of government. This is the 31st global honor for Prime Minister Modi. Mr. Modi reached Gothenburg this evening on the third leg of his five-nation tour after concluding his visit to the Netherlands. Upon arrival at Gothenburg Airport, Prime Minister Modi was accorded a warm welcome and was personally received by the Swedish Prime Minister. During his two-day visit to the Netherlands, Prime Minister Modi held bilateral talks with his Dutch counterpart. The two countries signed 17 agreements to strengthen cooperation in defense, critical minerals, and other key sectors. In a social media post, Mr. Modi said his visit to the Netherlands has added new momentum to bilateral ties. He said the two countries have charted an ambitious roadmap for the future by elevating ties to a strategic partnership and expanding cooperation in water resources, semiconductors, innovation, defense, sustainability and mobility. He expressed confidence that the friendship between India and the Netherlands will continue to grow stronger in the years to come. He also thanked Prime Minister Jetten for the warm hospitality and for personally coming to the airport to bid him farewell. The new Keralam government led by Congress leader V.D. Satheesan will be sworn in tomorrow in Thiruvananthapuram. Congress had announced Satheesan as the next chief minister of Keralam on the 14th of this month, putting an end to the high drama and suspense that lasted for